मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 50 सेकेंड्स हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे,

0: भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और

0: आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242। सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रातःकालीन ईशवंदन मन में असीम ऊर्जा, उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास का संचार कर देता है। तो आइए करते हैं सभा का आरंभ रोज की ही तरह भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना से। सबसे पहले सुनते हैं हरिहरन के स्वर में ये भक्ति रचना।

ईश्वर को हम अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अनेक रूपों में पूजते हैं, उन्हें भजते हैं। किसी के लिए वो राम है, किसी के लिए कृष्ण, किसी के लिए शिव, तो किसी के लिए माँ दुर्गा और किसी के लिए निराकार परम सत्ता। रूप भले ही अलग हों श्रोताओं, लेकिन मंजिल एक ही है। ईश्वर को हमारे दिखावे से अधिक हमारी भावना प्रिय है। पूजा की विधि अलग हो सकती है, प्रार्थना के शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि हृदय में प्रेम, विश्वास और समर्पण सच्चा है, तो वही सच्ची भक्ति है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हे गणनायक, आप बुद्धि के प्रकाश हैं, आप मंगल के आधार हैं। आपके स्मरण मात्र से मन में विश्वास और जीवन में शुभता का संचार होता है। हे प्रथम पूज्य श्री गणेश, हम आपको अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अनेक रूपों में पूजते हैं, पर हमारी प्रार्थना एक ही है। हमारे मन से अहंकार और अज्ञान दूर करें, हमें सद्बुद्धि, विवेक, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए सुनते हैं शंकर महादेवन के स्वर में ये भक्ति रचना।

भक्ति में आसक्ति और विरह दोनों का बहुत ही गहरा स्थान आया है। यहाँ आसक्ति का अर्थ संसार के प्रति मोह नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण लगाव से है। आसक्ति में भक्त का मन ईश्वर में रमने लगता है, उनका स्मरण, नाम, रूप और गुण उसे प्रिय लगने लगते हैं। विरह में भक्त को ईश्वर की अनुपस्थिति का अनुभव होता है और उनकी प्राप्ति की तीव्र लालसा जगने लगती है। यही विरह प्रेम और को गहरा कर देता है। भक्ति परंपरा में इसे बहुत ही सुंदर ढंग से कहा जा सकता है कि मिलन में भक्ति आनंद देती है और विरह में भक्ति की गहराई प्रकट होती है। मीरा की कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण की विरह भावना और भक्त कवियों की रचनाओं में ये भाव बार बार देखा जा सकता है। श्रोताओं, अर्थात आसक्ति भक्ति को बांधती है और विरह उसे भीतर से तीव्र करता है। लेकिन सच्ची भक्ति का अंतिम भाव केवल पाने की इच्छा नहीं बल्कि समर्पण है। प्रभु, आप जैसे रखें हमें वही स्वीकार है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, आखिरी भक्ति रचना अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ऋग्वेद से पाठ।

वह। हे अग्नि जात वेदस, आप स्वर्ण की कांति के समान वर्ण वाली हरित वर्णा, स्वर्ण रजत पुष्पों की माला को धारण करने वाली, चंद्रमा के समान प्रकाश से युक्त हिरण्य स्वरूपा लक्ष्मी को मेरे पास लाएं।

हे जातवेदस अग्नि, आप कभी छोड़कर न जाने वाली स्थिर लक्ष्मी को मेरे पास लाएं, जिससे मैं स्वर्ण, गाय, अश्व और पुत्र, पौत्र, मित्र, दास रूप पुरुषों को प्राप्त करूं।

मृणोमि। चंद्रमा के समान कांतिमती, यश से दीप्त, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवताओं से सेवित, उदार पद्मिनी रूप उस लक्ष्मी की मैं शरण में आया हूँ। मेरी अलक्ष्मी का विनाश हो, मैं आपका वरण करता हूँ। आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव

लक्ष्मी हे सूर्य के समान वर्ण वाली, आपके तप से बिल्व नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व के फल आपके तप रूप अनुग्रह से मेरे अंतः इंद्रिय संबंधिनी माया या अज्ञान को और बाह्य इंद्रियों से संबंधित अलक्ष्मी को दूर करें। उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च

0: हे लक्ष्मी, देव सखा कुबेर कीर्ति और मणि के साथ आए। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, वे मुझे यश और समृद्धि प्रदान करें। क्षुत पिपासा मला ज्येष्ठा मलक्ष्मी नाशयाम्यहम् अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्णुद मे गृहात्। भूख प्यास रूप मलिन एवं ज्येष्ठा अलक्ष्मी का मैं नाश करता हूँ, सभी प्रकार की अभूति एवं असमृद्धि को मेरे घर से दूर कीजिए। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूताराम तामिहोपव्ययेश्वयम्। प्राण से ग्राह्य गंध लक्षण वाली दुराधर्ष, सस्यादि से नित्य पुष्ट, प्रचुर गोमयादि अर्थात विविध पशुओं से समृद्ध सभी प्राणियों की अधिष्ठात्री उस लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इसमें आपने सुना ऋग्वेद से पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई आज सुने फूलों की खेती में जैब्रेलिक अम्ल का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर मुकेश पी मसीह से दुर्गेश कुमार मिश्र की बातचीत।
1: किसान भैया, अरे देखा अपन सभी खेती किसानी करी थी और खेती किसानी के साथे देखा चार पैसा आमदनी के लिए भाई बागवानी भी कैलिन और तमाम तरह के जैसे कुक्कुट पालन बाटे, तो कुछ किसान भैया अरे फूलों की भी खेती करते हैं जैसे कि जो उनके चार पैसा के आमदनी हो। तो फूल के खेती कैसे में आजकल जो आधुनिक तकनीक आ गई बाटे और ओका जो विधि बा अगर अच्छे तरीके से ओका अपनाई के कीन जाई तो निश्चित बा कि कुछ पैदावार भाई ज़्यादा से ज़्यादा मिली और चार पैसा के भाई आमदनी ज़्यादा हुई। तो फूल के खेती में एक बात आवत है जेब्रेलिक अम्ल के प्रयोग के, तो एक देखा आज पंचायती में जानकार मने आई बाटे डॉक्टर मुकेश पीएम जी, पीएम प्रसार निदेशालय सीआरएस में आएँ। डॉक्टर साहब आपके कार्यक्रम में स्वागत बा। सबसे पहले किसान भैया अरे हमरे ई जाना चाहिए कि फूल के खेती में जेब्रेलिक अम्ल जौन उपयोग की जाते ई आ का
2: जेब्रेलिक अम्ल एक वृद्धि नियामक रेगुलेटर है जिसे हिंदी में पौधों की वृद्धि नियामक कहते हैं। फूलों की खेती में इसका प्रयोग स्प्रे द्वारा 8 दिन के उपरांत छटाई करने के बाद किया जाता है।
1: मतलब काहे का मतलब कि ये जौन अपन फूल हैं एक का वृद्धि करे के लिए कैसे हाँ, किस कौन तरीके के वृद्धि करे के?
2: हाँ, ये जब हम लोग फूलों की कटाई छटाई कर देते हैं उनके पौधों की, तब हम उसमें अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वो जल्दी फूल देना शुरू
1: जल्दी बढ़प शुरू हो जाता है।
2: जी हाँ, जी हाँ।
1: और एक बात आवत है कि एका कब करे चाहिए, मतलब एक कहा जाते कि भाई जैसे फूल के भाई हम तैयार बाटे या फिर शुरुआती दौर में बा, तो कब कौने अवस्था में ये अम्ल के हम प्रयोग करी?
2: देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। हम लोग कभी कभी देर कर देते हैं फसल उगाने के लिए और हम लोग बगल वाले पड़ोसी किसान से हम लोग पीछे हो जाते हैं, तो उस इस अवस्था में जब हम पौध लगा रहे हैं अपने फूलों को लगा रहे हैं उस समय हम इसका प्रयोग जब करेंगे तो हम उसके पड़ोसी वाले जो खेत के हमारी भी फसल

0: बराबर आ जाती है कम समय में, तो इसको इसकी वृद्धि के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा, एक चीज़ जौन जिब्रेलिक अम्ल बा, ये हर प्रकार के जैसे फूल के लिए प्रयोग में लावा जा सकते हैं? कुछ जैसे फूल के खेती जैसे गेंदा बा, गुलाब बा, या सभी प्रकार के फूल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं?
0: बहुत अच्छी बात आपने पूछी है किसान भाइयों, ये जानकारी बहुत ही अच्छी है कि ये जिब्रेलिक अम्ल एक पौधों को वृद्धि के लिए हम लोग फूल चाहे किसी भी प्रकार के फूल हो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो गेंदा हो, चाहे वो जरबेरा हो, चाहे रजनीगंधा हो, चाहे वो गुलाब का फूल हो,
1: कौनो तरह के
0: किसी भी प्रकार का। हमने कहा कि जब हम किसी भी कारणवश खेती करने में लेट हो जाते हैं या पौध लगाने में हमें देरी होती है उस समय हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, या फिर जब हमें फूल जल्दी प्राप्त करने होते हैं तब हम लोग इस अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं।
1: तो जैसे डॉक्टर साहब की अल फूल के जौन प्रकृति होता है, सब फूल के अलग अलग अपन प्रकृति होते हैं, तो ओके कोनो विधि बा कि एकरे लिए भाई इतना प्रयोग करे या फिर ना प्रयोग करे, तो ऐसे कोनो मतलब कि नियम बात है कि जैसे सब पे करी भाई एक साथ है ना, ऐसे सब प्रयोग कर दी?
0: हाँ, एक ग्राम लेकर के 1000 ml में इसको मिलाते हैं
1: अच्छा
0: और उसको प्रयोग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पौधा बड़ा होता है, बहुत दिन वाला होता है, तो उसी की हिसाब से हम उसकी मात्रा भी बढ़ा लिया करते हैं, लेकिन इसकी पहले मानक है 1 ग्राम में 1000 ml में इसकी छिड़काव करने के लिए।
1: अच्छा एक डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि ये जो अम्ल होते हैं ये फल पके में बहुत तेज मदद करते हैं। और एक बात और आवत है कि ये जो जिनसे हम बातें मात्रा तो बता ही दें, एका कितनी बार कब प्रयोग करें?
0: हाँ, बहुत सही बात पूछे हैं आप। 40 से 55 दिन और 60 दिन के बाद रोपण के हम लोग इसकी छिड़काव कर देते हैं। इसका प्रयोग करने से देखिए सबसे अच्छी बात हम आपको बता दे रहे हैं, ये फूलों के किसानों के लिए भी लागू होती है और भी सब्जी के भी किसानों के लिए ये लागू हो जाती है कि मार्केट में हमें समय से पहले अगर हम अपनी फसल को ले जाना चाहते हैं तब हम इसको प्रयोग कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: और अगर हम लेट हो गए हैं तो लेट वाले भी जो हैं इसकी सहायता से सही समय पे
1: सही
0: अपना
1: समय,
0: फसल को
1: ये तो
0: पहुंचा
1: बहुत
0: सकते
1: अच्छी
0: हैं।
1: बात बा कि भाई
0: जी
1: जैसे कि वो घबराए गए भैया हम तो भाई देखा पीछे हो गए, लेकिन एका प्रयोग करे से भाई समय से पहले हमारा माल तैयार हो गया और हम
0: जी
1: बाजार में उका साथे
0: जी
1: साथे बेच दी, ये
0: जी
1: तो बहुत बढ़िया बात है एकर
0: जी
1: विधि। और एक चीज आता आवत है कि भैया एका हम इस्तेमाल तो करते थे, का एक कोनो दुष्परिणामों व प्रतिकूल असर पड़ा थे पे?
0: नहीं, देखिए हर चीज़ का इस्तेमाल करने पर कुछ ना कुछ तो ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर तो पड़ता ही है
1: मतलब
0: हर एक
1: जितनी
0: चीज़ का।
1: मात्रा बताएं ना
0: हाँ,
1: आप, 1,000 लीटर में
0: जितनी 1 ग्राम जो
1: एक
0: है,
1: ग्राम
0: हाँ इतनी मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके पौधे को और आपके फूलों को
1: नुकसान
0: नुकसान
1: पहुंचे,
0: होगा।
1: नुकसान
0: अगर
1: पहुंचे।
0: आप सही मात्रा में उसका प्रयोग करेंगे तो उसकी पंखुड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक होंगी, जिसमें कि मार्केट में आपको अच्छा प्राइस मिलता है।
1: अच्छा एक एक बात और आवत है कि एका जैसे आप कहें कि स्प्रे कहीं या छिड़काव कीन जाता है, तो एका प्रयोग में लावे के लिए का सावधानी बरते किसान भैया रे?
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों से हमें इसको दूर रखना है और अपने हाथ और अपने मुंह और अपने आँखों को इससे बचा के रखना है। इसकी सावधानी हमें बहुत ध्यान पूर्वक देना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितना बताया जाता है मात्रा उतनी ही मात्रा का प्रयोग करें, अन्यथा हमारी फसलों को तो नुकसान होगा ही होगा और उसके आने वाले प्रोडक्ट का भी नुकसान पहुंचेगा।
1: एक बात और आवत है कि जैसे अपने किसान भैया अरे एक साथे साथे कुछ रसायन के भी उर्वरक के भी इस्तेमाल करत, तो उर्वरक बा कुछ कीटनाशक भी बाटे और ये अम्ल बा, तो इसमें कैसे कितना तालमेल हो चाहिए?
0: हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अगर हम उर्वरक डाल रहे हैं और अगर हम इसका जिब्रेलिक एसिड का हम अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसके और इसके अंतराल में कम से कम एक सप्ताह का अंतर रखना अनिवार्य है, नहीं तो पौधे जलने की संभावना हो जाती है।
1: तो मतलब कीटनाशक अगर डाले हैं तो उसके एक हफ्ते बाद एक प्रयोग में लावें। तो मतलब का कुछ ऐसी विधि बा या फिर ऐसा कुछ जैसे

0: मान लें कि अगर एक प्रकृति की तरीके से मान लें वो अपने से बढ़त बाटे कि या जिसे उन्हीं पे प्रयोग करे जो उन पौधा भाई बढ़त नहीं ने छोटा बाटे या फिर ओकर कहूँ जहाँ वृद्धि रुक गई बा तबई इस्तेमाल करें कि एक नियम बाकी भैया एक डाल दे तो एक बहुत तेजी के साथ बढ़ी ऐसा कुछ।
1: हाँ, किसान भाइयों, बहुत अच्छी बात है ये। आप सबों को जानकारी इसके बारे में रखनी चाहिए और इसका प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जबकि जितना कि वैज्ञानिकों की तकनीकी का द्वारा दिया गया है।
0: देखे भैया कितनी बढ़िया आप डॉक्टर साहब जानकारी दें और किसान भैया रे निश्चित बात कि डॉक्टर साहब जत्ता बताएं अगर उही हिसाब से ये अम्ल के प्रयोग में लई हैं तो निश्चित बात कि फसल के पैदावार तो बढ़बे करी और 4 पैसा के आमदनी हो। डॉक्टर साहब आप पंचायती में आए अपने हमरे किसान भैया रे के इतनी बढ़िया जानकारी दें आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर मुकेश पी मसीह से दुर्गेश कुमार मिश्र की बातचीत। बातचीत का विषय था फूलों की खेती में जिब्रेलिक अम्ल का महत्व। ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें लीजिए सुनिए डॉक्टर वीबी निघोसकर की वार्ता, कलर ब्लाइंडनेस कारण लक्षण और उपचार।
1: कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है। यह पुरुषों में ज्यादा होता है, पर महिलाएं इसकी द्योतक यानी कैरियर होती हैं। यह एक्स क्रोमोजोम लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम होता है। अगर एक्स क्रोमोजोम पर कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन है तो उस पुरुष को यह रोग हो जाएगा। महिलाओं में दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं। यदि एक पर रोग की जीन है और दूसरा सामान्य है तो उस महिला को यह रोग नहीं होगा, लेकिन उस महिला को होने वाले कुछ लड़कों में यह रोग निश्चित ही हो सकता है। अतः महिला कैरियर हो जाती है। लाल हरे कलर ब्लाइंडनेस इसी कारण से होते हैं। नीला पीला कलर ब्लाइंडनेस और पूर्ण कलर ब्लाइंडनेस अन्य क्रोमोसोम्स पर पारित होते हैं, इसलिए यह पुरुष और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ नेत्र रोग जैसे ग्लोकोमा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, दिमाग की बीमारियां जैसे अल्जाइमर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कुछ केमिकल्स तथा दवाओं के दुष्प्रभाव से भी व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो सकता है। कलर ब्लाइंड व्यक्ति लाल हरे रंगों में ठीक से भेद नहीं कर पाता। ट्रैफिक सिग्नल पहचानने में दिक्कत हो सकती है। कलर ब्लाइंड व्यक्ति सोचता है कि जैसा उसे दिख रहा है वैसा ही बाकी लोगों को भी दिख रहा है। आंशिक कलर ब्लाइंडनेस में लक्षण कम होते हैं तथा ज़्यादातर सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस आदि के मेडिकल चेकअप में इस बीमारी को पकड़ा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस की जाँच के लिए प्रयुक्त होने वाले इशिहारा चार्ट में अलग अलग रंगों से लिखे नंबर कलर ब्लाइंड मरीज या तो पहचान नहीं पाता या कोई दूसरा नंबर दिखता है। इसके लिए और भी जांचें होती हैं जिससे किस प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस है और किस रंग का कलर ब्लाइंडनेस है ये सुनिश्चित किया जाता है। अनुवांशिक बीमारी होने के कारण कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार नहीं होता। रंगों को पहचानने के लिए कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे के ऊपर फिल्टर आदि दे सकते हैं, पर यह ज़्यादा कारगर नहीं होते। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पता चलते ही ग्रसित व्यक्ति को कैसे पेशा चुनना चाहिए इसकी सलाह जरूर दी जाती है। जिस पेशे में रंगों का ज़्यादा काम न हो वह कलर ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। यूजेनिक्स के अंतर्गत कलर ब्लाइंड व्यक्ति के परिवार में आगे की पीढ़ियों में भी यह रोग लड़कों को हो सकता है तथा इसके लिए बच्चे कम रखना या गोद लेने की सलाह भी दी जाती है। लड़कियाँ कैरियर हो सकती हैं और उनके बच्चों को, खासकर लड़कों को, यह बीमारी हो सकती है। अगर किसी केमिकल या दवा के दुष्प्रभाव से व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो रहा है तो उसे बंद किया जाता है या बदला जाता है। भविष्य में जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ही इसका एक

0: इलाज है जिस पर अभी शोध कार्य चल रहा है।
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वीबी निघोसकर की वार्ता, कलर ब्लाइंडनेस, कारण, लक्षण और उपचार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 MHz पर। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा। कार्यक्रम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे से। फिल्मों से भजन सुनवाएंगे सुबह 7:10 से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सुबह 7:30 पर किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन और दोपहर 12:15 पर पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम का समय होगा रोज की ही तरह 8:45 पर। प्रस्तुति होगी अभयकांत तिवारी की। आज की प्रस्तुता मोना पांडे। विषय है वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस। फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनेगा सुबह 9 बजे, 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर, शाम 7:30 पर और रात 8:15 पर।

सुबह 9:50 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे और इसमें सुनिएगा सचिन कुमार से गीत और भजन। शाम 7:45 पर भी आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे सचिन कुमार। लोकगीतों में कार्यक्रम लोकमाधुरी में 10:05 पर कलाकार होंगे शोभालाल शैल सिंह और दोपहर 2:30 पर ब्रजभान यादव, सुशीला देवी, सुभाष चंद्र यादव और साथी। दिन में 11:15 पर बालसंग कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे रूपक डाकिया डाक लाया। दोपहर 1:15 अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनेगा कार्यक्रम हेलो अनुरोध में।

प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। शाम 5 बजे बाल गोपाल कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे नीता श्रीवास्तव की वार्ता। बच्चों में कलात्मक अभिरुचि के विकास द्वारा व्यक्तित्व का संवर्धन। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अंकित पटेल की वार्ता, जल संरक्षण की आवश्यकता।

पंचायत घर कार्यक्रम में ही हम आपको सुनवाएंगे मिट्टी की जांच क्यों और कैसे, इस विषय पर मनोज कुमार सिंह से जयकृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत। साथ ही आनंद लीजिएगा फूलचंद्र और साथियों से लोकगीतों का। रात 8 बजे श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता से वंदना राठौर ने बातचीत की है। रात 8:30 पर कार्यक्रम आज इतवार होगा, इसमें सुनवाएंगे राजेंद्र कुमार की लिखी झलकी, जादुई चिराग का डुप्लीकेट जिन्न और फिल्मी गजलों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम कहकशा में रात 9:30 पर। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: सिंहः रक्षा समित्याः, राजीव प्रताप रूढ़ी जल संसाधन समित्याः, सप्तगिरी उल्का ग्रामीण विकास पंचायती राज समित्याः, निशिकांत दुबे च संचार सूचना प्रौद्योगिकी समित्याः अध्यक्ष पदम अलंकरिष्यन्ति। अद्य नवदेहल्यां पंचम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं संबोधयन्ती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन न्यगादीत यत् गत दशके वित्तीय संयमस्य आधारभूत संरचना निवेशस्य बैंकिंग परिष्काराणां वस्तु सेवा करस्य अथ श्रम संहितानां सुदृढ़ क्रियान्वयनेन भारतस्य आर्थिक स्थैर्यं अतीव सुदृढ़ं अभवत्। वित्तमंत्री अब्रवीत यत् विगत चतुर्षु वर्षेषु वैश्विक संकटेषु सत्सु अपि भारतस्य आर्थिक मूल तत्वानि सर्वथा अक्षुण्णानि सन्ति। इजराइल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू वर्येण आगामि स्वातन्त्र्य महोत्सवे मंगलदीप प्रज्वालयितुं भारतीय वैमानिकः कैप्टन स्मिथ मच्छारः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सगौरवम् आहूतौ। दूरवाणी संभाषण वेलायां नेतन्याहू महोदयेन कैप्टन मच्छारस्य वीरतायाः भूरिशः प्रशंसा विहिता। स च भारत इजराइल देशयोः धीरनायकत्वेन उद्घोषितः। परंपरागत रूपेण एतत् मंगल ज्वाला प्रज्वालनस्य गौरवं केवलं इजराइल नागरिकेभ्यः एव आरक्षितं भवति, येन एतत् आमन्त्रणम् अतीव दुर्लभं विशिष्टं च मन्यते। जापान देशस्य नागोया नगरस्य क्रीडांगणे अद्य सायंकाले षड्वादने आईची नागोया एशियाई क्रीडायाः भव्यं समापनं भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

वाणी जयराम के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्मों से भजन।

फिल्मों से भजन कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुबह फिल्म से ये भजन, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा ने और धुन तैयार की है सुधीर फड़के ने।

इस खूबसूरत से फिल्मी भजन के बाद हम आपको सुनवा रहे हैं आदि पुरुष फिल्म से ये भजन। सचेत टंडन और परंपरा के स्वर हैं, लिखा है मनोज मुंतशिर ने और सचेत परंपरा ने धुन तैयार की है। आइए आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्मों से भजन का। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी में 7:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4,60,000 विद्यार्थियों के खाते में 148 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की हस्तांतरित। कहा, हर पात्र बच्चे तक पहुंचाएंगे छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री ने वाराणसी के नमो घाट पर 24 से 26 अक्टूबर तक प्रस्तावित एयर शो की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, क्राउड मैनेजमेंट, सुगम यातायात और पार्किंग की व्यवस्था पहले करें सुनिश्चित। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान, उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष भी रहा अग्रणी। और एशियाई खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक किए हासिल। पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्व दशम, नौ दश तथा दशमोत्तर कक्षाओं के 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में 148 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने 11 विद्यार्थियों को अपने हाथ से छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर श्री योगी ने आश्वस्त किया कि छात्रों के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हर पात्र बच्चे तक छात्रवृत्ति पहुंचाएंगे। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप जब 36-37 साल के होंगे तब 2047 तक आपको खुशहाल व समृद्ध भारत मिलेगा, इसके लिए आपको भी योगदान देना होगा।
1: आप इस यूपी के सारथी हैं। यूपी का भविष्य कैसे होना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 यानी 15 से 18 वर्ष के जो छात्र आज हैं, अगले 21 वर्ष में आपकी आयु क्या होगी, 36 से लेके 38-39 के बीच जब आपकी उम्र होगी, तब भारत 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के बढ़ रहा होगा, उसको पूरा कर रहा होगा, और उसके लिए आपका प्रयास भी होना चाहिए, आपको भी लग करके काम करना होगा।
0: श्री योगी ने कहा कि गत वर्ष 69 लाख बच्चों को 62,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई। 9 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आगामी 24 से 26 अक्टूबर तक वाराणसी के नमो घाट पर प्रस्तावित भव्य एयर शो की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। 25 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति संभावित है। एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों, वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष एयर शो की तैयारियों और संपूर्ण कार्ययोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयर शो को लेकर आम नागरिकों में भी उत्सुकता है और बड़ी संख्या में लोग भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। इसे देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, सुगम यातायात, पार्किंग और जोनवार स्थल चिन्हांकन की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने कल नामांकन दाखिल किया। उनके साथ 6 अन्य प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया। नामांकन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

0: थे। जांच के बाद ही प्रत्याशियों और प्रस्तावकों को प्रवेश दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए डॉक्टर शरदेन्दु कुमार त्रिपाठी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने कल 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी 3 अक्टूबर वर्ष 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। पिछले 12 वर्षों में मन की बात ने देश भर में हो रहे सकारात्मक बदलावों को सामने लाने और नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अनूठा मंच प्रदान किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश ने अभियान के प्रमुख घटकों में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरे वर्ष अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा ने अभियान की सफलता पर अभियान से जुड़े लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया। मंच
1: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
2: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए वाराणसी के अमित कुमार ने कहा कि DBT के माध्यम से सरकार सीधे जनता के खातों में पैसा हस्तांतरित कर योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
3: मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की भी और केंद्र के ही पैरामीटर पर राज्य सरकारों ने भी, DBT के जरिए ही अब ज्यादातर जो सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत अब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जो लाभ है वो पहुंचाते हैं।
1: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
0: जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
4: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ

0: बाद चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कल पीलीभीत के पूरनपुर में आयोजित युवा सम्मेलन और अन्य गांवों में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि युवाओं को सरकार स्वरोजगार योजनाओं के तहत आत्मनिर्भर बना रही है। रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4,60,000 विद्यार्थियों के खाते में 148 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की हस्तांतरित। कहा, हर पात्र बच्चे तक पहुंचाएंगे छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री ने वाराणसी के नमो घाट पर 24 से 26 अक्टूबर तक प्रस्तावित एयर शो के तैयारियों की समीक्षा की। कहा, क्राउड मैनेजमेंट, सुगम यातायात और पार्किंग की व्यवस्था पहले करें सुनिश्चित। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष भी रहा अग्रणी। और एशियाई खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक किए हासिल। पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन, राग है देशकर, मध्यालय और द्रुत तीन ताल में निपत हैं। और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं बालकृष्ण अय्यर। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए किशोरी अमोनकर का राग देशकर में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किशोरी अमोनकर का राग देशकार में ख्याल गायन, मध्यालय और द्रुत तीन ताल में निबद्ध थे और आपके साथ तबले पर संगत की थी बालकृष्ण अय्यर ने। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
4: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और

0: नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
3: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ

के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पिज़िशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले

0: रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हड़ोती।
0: धन्यवाद वैष्णवी।

0: Bharatiya Divas convention to be held from the 7th to 9th of January next year in Kolkata. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu describes Indian pilot Smit Machar, hero of Israel, India and entire world, invites him and Prime Minister Narendra Modi to Israel's Independence Day ceremony. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan, trap shooter Neeru Dhanda to be India's flag bearer for closing ceremony. For details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and newsonair app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक पार्लियामानी कमेटियों की असर-ए-नौ तश्कील की है। मरकजी वजारत तालीम ने क्लासिकी जबानों आसामी बंगाली मराठी पाली और प्राकृत के मुतालियात के लिए 5 नए महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। भारत ने पाकिस्तान के एलची को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाली गैर कानूनी सरहद पार दरअंदाजी में एयानत पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में मुनक़िद होगा। इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर को इसराइल भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। और एशियन गेम 2026 खेल आज जापान के नागोया में अख्ताम पजीर हो रहे हैं। ट्रैप शूटर नीरू ढांडा अख्तितामी तकरीब में भारत की परचम बरदार होंगी। अब खबरें तफसील से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक कई पार्लियामानी कमेटियों की असर-ए-नौ तश्कील की है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट भारतरुहारी महताब को खजाना की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। जनाब बिरला ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर को उमूर खारजा की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। रेलवे की कमेटी के सरबराही बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधीर गुप्ता करेंगे। जनाब बिरला ने लोकसभा की रुकन डॉक्टर काकुली घोष दस्तेदार को केमिकल्स और खादों से मुतालिक कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चरणजीत सिंह चुन्नी जरात मवेशी परवरी और खुराक की डब्बाबंद की कमेटी के चेयरमैन होंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह दिफा से मुतालिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी की आबी वसाइल से मुतालिक कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि देही तरक्यात और पंचायती राज से मुतालिक कमेटी की सरबराही कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सप्तगिरी उलाका करेंगे। इसी तरह बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे को मवासलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इन कमेटियों की मुद्दत कार पिछले महीने की 26 तारीख से नाफिजुल अमल हुई। तालीम की वजारत ने क्लासिकी जबानों के मुतालियात के लिए 5 महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। आला तालीम के महकमे ने क्लासिकी आसामी क्लासिकी बंगाली क्लासिकी मराठी क्लासिकी पाली और क्लासिकी प्राकृत के मुतालियात के लिए 5 महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये महारत के मराकज आसाम की तेजपुर यूनिवर्सिटी, मगरबी बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी, पुणे के दक्कन कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में कायम किए जाएंगे। इस इकदाम के तहत आला सतह की इल्मी तहकीक, लिसानी व अदबी विरसे के तहफ्फुज़ और इसे डिजिटल शक्ल देने, नीज इन क्लासिकी जबानों से मुतालिक इल्मी मालूमात को वसी पैमाने पर आम करने के लिए खसूसी अदाराजाती ताउन फराहम किया जाएगा। इन 5 मराकज का क्याम भारत की क्लासिकी जबानों के मुताले तहकीक और तहफ़ के लिए दारा जाती निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने की समत में एक अहम कदम है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक मगरबी बंगाल

0: مطالعات کے لیے 5 نئے مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے ایلچی کو طلب کر کے پاکستان سے مسلسل ہونے والی غیر قانونی سرحد پار دراندازی میں اعانت پر سخت احتجاج درج کرایا۔ 19واں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن اگلے سال 7 سے 9 جنوری تک کولکتہ میں منعقد ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے بھارتی پائلٹ سمت مچھر کو اسرائیل، بھارت اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے کیپٹن سمت اور وزیر اعظم کو اسرائیل کے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کا پریاگ راج کیندر۔ آپ ہمارے کاریکرم نیوز آن اے آئی آر ایپ کے مادھیم سے بھی سن سکتے ہیں۔
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: सुनो ना।
5: हाँ।
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, आप अपनी भूख नहीं बता सकते, आप अपना दर्द नहीं समझा सकते, अपना डर किसी से कह नहीं सकते, लेकिन अपनी आपकी आंखें सब कुछ कहते हैं। कभी किसी सड़क किनारे बैठे कुत्ते की आंखों में देखिए, किसी घायल पक्षी की बेचैनी देखिए, किसी गाय की शांत आंखों को पढ़िए, शायद वहां एक ही संदेश मिलेगा, मैं भी महसूस करता हूं, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी जीवन प्यारा है। और इसी भावना को आज की दुनिया तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। हर वर्ष 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है।

श्रोताओं, इसका उद्देश्य दुनिया भर में पशुओं के कल्याण और उनके प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना है। 2026 की आधिकारिक थीम है सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज, उनकी आंखों से दुनिया को देखिए। कितना सुंदर संदेश है, क्योंकि हम अक्सर दुनिया को केवल अपनी सुविधा और अपनी आवश्यकताओं की दृष्टि से देखते हैं। हम जंगल देखते हैं, पर किसी वन्य जीव के लिए वही जंगल उसका घर है। हम नदी देखते हैं, पर किसी जलीय जीव के लिए वही नदी उसका जीवन है। हम सड़कें बनाते हैं, लेकिन किसी पशु के लिए वही रास्ता उसके प्राकृतिक आवास तक पहुंचने का मार्ग हो सकता है।

इसीलिए श्रोताओं 2026 की थीम हमसे बस इतना कहती है, एक बार अपना दृष्टिकोण बदलिए और दुनिया को उनकी आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। भारतीय संस्कृति में तो जीव जगत में के प्रति करुणा की भावना सदियों पुरानी है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। और एक अत्यंत सुंदर संस्कृत की उक्ति है, वो भी मैं यहाँ ज़रूर आप सभी से साझा करना चाहूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। जब हम कहते हैं सभी, तो करुणा की ये भावना केवल मनुष्यों तक सीमित क्यों?

हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षी भी तो इसी धरती के जीव हैं। जुबा नहीं है तो क्या आंखों में बात रखते हैं, ये बेजुबा भी दिल में जज्बात रखते हैं। तो श्रोताओं, जरा ठहर कर कभी उनकी आंखों में देखे, वो भी जीने की वही चाहत रखते हैं। विश्व पशु दिवस केवल पालतू पशुओं के प्रति प्रेम की बात नहीं करता, इसमें पालतू पशु, फार्म एनिमल्स, वर्किंग एनिमल्स और वन्य जीव सभी के कल्याण की बात शामिल है। पशु विश्व स्वास्थ्य संगठन WOAH एनिमल वेलफेयर को उस शारीरिक और मानसिक स्थिति से जोड़ता है जिसमें कोई पशु उन परिस्थितियों के संदर्भ में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनिमल वेलफेयर के लिए व्यापक रूप से 5 मूलभूत फ्रीडम्स को मान्यता मिली है। भूख प्यास से मुक्ति, भय और डिस्ट्रेस से मुक्ति, असुविधा से सुरक्षा, दर्द चोट बीमारी से सुरक्षा और अपने सामान्य व्यवहार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता।

यानी श्रोताओं, पशु कल्याण का अर्थ केवल उन्हें खाना खिलाना नहीं, कल्याण का अर्थ है सम्मान, सुरक्षा, उचित देखभाल और उनकी प्राकृतिक आवश्यकताओं को समझना। सोचिए, एक पक्षी के लिए केवल दाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सुरक्षित स्थान भी चाहिए। एक पालतू पशु के लिए केवल भोजन ही पर्याप्त नहीं, उसे देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण भी चाहिए। और जंगली जानवरों के लिए केवल जंगल का नाम पर्याप्त नहीं, उन्हें ऐसा प्राकृतिक हैबिटेट चाहिए जहां वो भोजन, पानी, आश्रय और सुरक्षित आवागमन पा सकें। यही तो है सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज़।

श्रोताओं, हमारे देश में भी पशु पक्षियों के प्रति करुणा की एक समृद्ध परंपरा रही है। भारतीय साहित्य में कबूतर से लेकर हिरण तक, गाय से लेकर हाथी तक, असंख्य जीव हमारी संस्कृति और कथाओं का हिस्सा रहे हैं। लेकिन आज आवश्यकता केवल कहानियां सुनाने की नहीं है, आवश्यकता है उन कहानियों को अपने व्यवहार में उतारने की। गर्मी में किसी पक्षी के लिए पानी रखना, किसी घायल पशु को देखकर मदद के लिए उचित संस्था या पशु चिकित्सक से संपर्क करना, अपने पालतू पशु को जिम्मेदारी से रखना, जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार

मनोरंजन न बनना और वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सम्मान देना, ये छोटे छोटे कदम हैं लेकिन इनका संदेश बहुत बड़ा है, क्योंकि करुणा की शुरुआत हमेशा किसी बड़े मंच से नहीं होती श्रोताओं, कभी कभी वो हमारे घर के बाहर रखे पानी के एक छोटे से कटोरे से भी शुरुआत हो सकती है। जो दर्द किसी की आंखों में पढ़ लेता है वही इंसानियत का अर्थ समझ लेता है। मोहब्बत सिर्फ इंसानों से करना ही नहीं, जो बेजुबान को समझे वही दिल से जीता है।

और आज के दिन हमें एक बात और याद रखनी चाहिए श्रोताओं कि पशुओं की रक्षा केवल पशुओं के लिए नहीं है, पशु मनुष्य और पर्यावरण तीनों का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा है और यही सोच वन हेल्थ जैसी अवधारणाओं में भी दिखाई देती है जो मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संबंध को स्वीकार करती है। और श्रोताओं हम सबको तो पता ही है कि जब हम मिलकर एक साथ रहते हैं पशु पक्षी मनुष्य सभी, तो एक बहुत ही बेहतर इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप होता है। इसीलिए जब हम किसी जंगल को बचाते हैं तो केवल पेड़ नहीं बचाते, हम असंख्य जीवों का घर बचाते हैं। जब हम नदियों को स्वच्छ रखते हैं तो केवल पानी नहीं बचाते, हम जलीय जीवन को बचाते हैं। और जब हम किसी जीव के प्रति दया दिखाते हैं तो केवल उसका जीवन आसान नहीं करते, हम अपने भीतर की इंसानियत को भी जीवित रखते हैं। तो आइए इस वर्ल्ड एनिमल डे पर हम एक ऐसा छोटा सा संकल्प लें कि हम उनकी दुनिया को केवल अपनी आँखों से नहीं देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कभी कभी उसे उनकी आँखों से भी देखें। अगर हम पक्षी होते तो क्या हमें साफ पानी चाहिए होता? अगर हम किसी जंगल के जीव होते तो क्या हमें अपना घर सुरक्षित चाहिए होता? अगर हम सड़क पर रहने वाले कोई पशु होते तो क्या हमें थोड़ी सी दया और सुरक्षा की आवश्यकता होती? उत्तर हम जानते हैं, क्योंकि जीवन की भाषा एक ही है, दर्द की भाषा भी एक ही है, भूख की भाषा भी एक है और जीने की इच्छा भी एक है। तो हम अलग कैसे हुए? हम साथ हैं

इंसान बनिए। और अंत में एक पंक्ति, जब हम किसी बेजुबान के दर्द को समझने लगते हैं तभी हमारी इंसानियत सचमुच बोलने लगती है। इसी उम्मीद के साथ 4 अक्टूबर केवल कैलेंडर की एक तारीख बनकर ना रह जाए श्रोताओं, तो अपने व्यवहार में करुणा की एक नई शुरुआत दिखाइए। सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, उनकी आंखों से दुनिया को देखिए। शायद दुनिया हमें पहले से कहीं और अधिक सुंदर दिखाई दे। और मैं मोना पांडे आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई सोच और एक नई

श्रोताओं, धरती सिर्फ हमारी नहीं है, उनका भी अधिकार है, पशु पक्षियों का भी पूरा अधिकार है। इस पर हर सांस में इस सृष्टि का साझा संसार है। जो आंखें बोल नहीं सकती, उनकी आवाज़ बनिए पशु पक्षियों के लिए भी थोड़ा सा।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में मैं हमारी एक नियमित श्रोता हैं नीरा त्रिपाठी जी, उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा संदेश पढ़ना चाहूंगी। हृदय पवित्र रखो इंसान, तो क्या भगवान भी तुम्हारे दिल में रहने लगेंगे। जहां मन में कपट नहीं होता, वहां कृपा और अपने आप उतर आती है। साफ दिल वाले इंसान को दुनिया भले ही देर से समझे, ऊपर वाला हमेशा उसे सबसे ऊपर और अपने करीब रखता है। बहुत धन्यवाद नीरा जी और हमारे सभी श्रोताओं जो बहुत ही मन से हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमें सराहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
4: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
3: अरे क्यों?
4: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
3: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
5: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
3: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
4: दे रे भाई,
6: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
0: श्रोताओं आप सभी का स्वागत है फिल्म संग

संगीत के सफर पर आपको लिए चलते हैं और पहला गाना हमने लिया है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। लता मंगेशकर को लीजिए सुनिए, शैलेंद्र की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और ये अगला गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म मेट्रो से।

जी हाँ श्रोताओं, ये आपका और हमारा प्यार ही तो है जो एक दूसरे को इतना करीब बनाए हुए है। और आप हमारे प्रोग्राम्स इतने चाव से, इतनी खुशी और प्रसन्नता के साथ सुनते हैं। तो आइए अब कार्यक्रम का आखिरी नगमा आपके नज़र पेश करते हैं फिल्म ब्लैकमेल से। किशोर कुमार की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

जी हाँ श्रोताओं, पल पल आप भी हमारे दिल के पास रहते हैं और हम सब भी इतनी कोशिशें करते हैं कि हम भी आप सबके दिल के करीब ऐसे ही बने रहें। तो कार्यक्रम का आखिरी नगमा यही था और हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सामयिक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला जनसेवा से राष्ट्र सेवा में आज आप सुनेंगे सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों पर लखनऊ विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के सीनियर प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं तनवीर फातिमा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम जल जीवन मिशन के माध्यम से लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह जी। सर, आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर, जिस तरह से हम जल जीवन मिशन पर आज बात करने जा रहे हैं, 2019 में ये मिशन शुरू हुआ था, इसके शुरू होने के बाद से अब तक आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का बदलाव आया है?
2: देखिए, निश्चित रूप से हम इस मिशन की तारीफ करना चाहेंगे, जल जीवन मिशन की, जो 2019 में लॉन्च किया गया था कि हर घर जल पहुंचाया जाए। ये बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि बातचीत में हम लोग ये बात किया करते थे कि शहर में तो लोग जान जाते हैं कि हमारा पानी जो है ये पीने योग्य है कि नहीं, क्योंकि वो पानी की गुणवत्ता की जांच भी करा लिया करते थे। उनको TDS पता था, उनको हार्डनेस पता थी, उनको सॉफ्ट वाटर pH वैल्यू पता थी, उनको कंडक्टिविटी पता थी, लेकिन ग्रामीण परिवेश में लोगों को पता नहीं। शहरी परिवेश में लोग हर घर में एक्वागार्ड या RO भी लगा लिया करते थे, लेकिन ग्रामीण परिवेश में ऐसी भी कोई योजना नहीं थी। तो निश्चित रूप से अगर हर घर को जल मिले, 2019 में ये अगर योजना लाई गई कि हर घर में हम सुरक्षित पानी पहुंचाएं, हर घर में हम एक ऐसा पानी पहुंचाएं जिसको पीने के बाद व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही काबिले तारीफ योजना है भारत सरकार की। क्योंकि इसके पहले जो व्यक्ति गांव में पानी पीते थे वो हैंडपंप का पीते थे, और निश्चित रूप से हैंडपंप से वो उतनी गहराई तक पानी की बोरिंग नहीं करा सकते थे, क्योंकि उसमें उनकी लागत, उनका खर्च ज्यादा आता था। तो वो एक ऐसी जहां पे ही पानी मिल जाता था उसको रोक लेते थे और उसी को वो पीते थे। उसमें बहुत सी ऐसी पानी की खराबियां रहती थी जिसको कि वो जानते भी नहीं थे और उसको यूज करते रहते। तो निश्चित रूप से हर घर को जल योजना जो जल जीवन मिशन में आया, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम।
1: सर, जिस तरह से ये मिशन आगे बढ़ा है और लगभग 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल पहुंचाया गया है जिसके जरिए उन्हें शुद्ध साफ जल मिल रहा है जिसका वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत किल्लत है, खास करके अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, तो ऐसे इलाकों में ये मिशन क्या बदलाव लेकर आ रहा है?
2: देखिए, बहुत सही आपने बात की कि इस समय काफी लोग सुरक्षित पानी पा रहे हैं। जिसमें 2019 में ये योजना शुरू की गई थी, अपने देश की आबादी के करीब 16% लोगों के पास ये पानी मिल रहा था। करीब 3.5 करोड़ लोग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में वो टैप का पानी पा रहे हैं। आज 2026 में 16 करोड़ लोग अब टैप से पानी पा रहे हैं। इसीलिए 2019 में जो इसका थीम रखा गया था वो था सेफ एंड रिलायबल वाटर, हर व्यक्ति को एक सुरक्षित और भरोसेमंद पानी मिल जाए। लेकिन अब इसकी योजना थोड़ा सा परिवर्तित की गई है और अब ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को क्वालिटी वाटर और ये वाटर की सस्टेनेबिलिटी भी रहे। जैसा आपने बताया कि जो बुंदेलखंड का इलाका है, निश्चित बुंदेलखंड के इलाके में सिर्फ पानी नहीं पहुंचाना है, वहां पे हमको पानी सस्टेन भी करना है, पानी कंजर्व भी करना है, क्योंकि सबको पता है कि जो बुंदेलखंड का हिस्सा है वहां पे पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। इस तरीके से पानी का प्रबंधन किया जाए कि बुंदेलखंड के इलाकों में भी लोगों को पानी मिल सके। और इसीलिए 2019 में ये योजना प्रारंभ की गई और करीब करीब 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां के गांवों में 100% लोगों के पास इस समय टैप वाटर है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बुंदेलखंड के लोगों को भी ये पानी बहुत ही आराम से पहुंच जाएगा।
1: सर, जिस तरह से आपने कहा, महिलाओं की बात करी, महिलाओं की भूमिका की, इस मिशन में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है। सरकार की तरफ से जो समितियां गठित की गई हैं इसको लेकर, जो इसकी देखरेख कर,

0: रखी हैं पूरे मिशन की। इसमें करीब 50% महिला सदस्य रखी गई हैं और इसमें से कई लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको पानी की गुणवत्ता जानने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। तो आपको क्यों लगता है कि महिलाओं की भागीदारी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है इस पूरे मिशन में?
1: देखिए, महिलाओं की भागीदारी को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है कि वो जगहें जहाँ पे की पानी की दिक्कतें हुआ करती थी, जैसे बुंदेलखंड का इलाका या राजस्थान का अगर इलाका, अगर आप पूरे देश की बात करें तो वहां पे आप देखेंगे कि पुरुष पानी नहीं ढोता था, पानी ढो के महिलाएं ही लाती। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को ही उसकी दिक्कत मालूम थी कि कितनी दिक्कत से हम इस पानी को ढो के लाते हैं और कितनी दिक्कत होती है जिस समय कि हमको ये पानी नहीं मिलता है, क्योंकि वहां लाइन में भी वही लगा करती थी। निश्चित रूप से इसीलिए जो पानी की समितियां बनी है, इस समय करीब 5 लाख पानी की समितियां हैं, उसमें 50% भागीदारी इसीलिए महिलाओं के सुनिश्चित की गई, क्योंकि ये महिलाएं अगर पानी लेकर आएंगी और पानी की समिति में रहेंगी तो निश्चित रूप से वो पानी के सस्टेनेबिलिटी के लिए, पानी के कंजर्वेशन के लिए और पानी का दुरुपयोग ना हो इसके लिए वो ज्यादा जागरूक रहेंगी एज कम्पेयर टू मेल।
0: जिस तरह से आपने सर कंजर्वेशन की बात करी, तो ये मिशन सिर्फ पाइप बिछाने तक सीमित नहीं है, इसमें जो आपके वाटर रिसोर्सेज हैं इनको दोबारा से, जो मर चुके हैं लगभग उनको दोबारा से जीवित करना, या जो बारिश का पानी है उसका संचयन करना, या ग्रे वाटर का मैनेजमेंट करना, इस तरह के काफी पहलू शामिल हैं। तो ये सारे कदम जो है वो कितने महत्वपूर्ण है इस मिशन में, और इनसे जो एक कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी वाली जो बात आपने कही, कितना सस्टेनेबल रहेंगे वाटर रिसोर्सेज और आगे कितना प्रभावशाली होगा ये मिशन?
1: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर हम इस पूरे पृथ्वी पे बात करें तो 97% पानी जो है वो खारा पानी है, सिर्फ 3% पानी मीठा पानी। उस 3% मीठे पानी का भी सिर्फ 1% है जो कि ग्राउंड वाटर है, और हम लोग पीने के लिए इसी ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि इस 1% ग्राउंड वाटर पे जिसपे कि हम डिपेंडेंट हैं पीने के पानी के लिए, तो अगर हम इसको रिचार्ज नहीं करेंगे, अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे, अगर हम जल के सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, तो कैसे ये आने वाले दिनों में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको ये पानी दे पाएगा, क्योंकि पानी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। इसीलिए जो बरसात होती है, इस बरसात के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए ग्राउंड वाटर के रिचार्ज की बात कही जाती है, और इसीलिए इस जल जीवन मिशन में ये भी हिस्सा बनाया गया है कि हम किसी भी तरीके से वाटर टैंक वगैरह बना के जो हमारे वाटर रिसोर्सेज, जो नदियां मृतप्राय हो गई हैं, उनको हम जीवित करने का प्रयास करें, और जो हमारा वाटर टेबल लगातार नीचे होता जा रहा है, इस वाटर टेबल को हम किस तरीके से ऊपर करें ताकि हर घर जल पहुंचने में कोई दिक्कत न हो।
0: सर, ये जो मिशन है इसमें लोकल लोगों की पूरी मदद दी जा रही है, ग्राम पंचायतों में जो ग्रामीण है, ग्राम प्रधान है, सरे के जो भी लोग हैं, इन सब की अहम भूमिका है। तो ये जो जन भागीदारी से मिशन चलाया जा रहा है, ये ओवरऑल एक जो ये नेटवर्क बनाया गया है, इसका क्या रोल है इस मिशन में?
1: देखिए, कोई भी सरकारी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन जन की भागीदारी न हो, और निश्चित रूप से अगर ग्रामीण परिवेश इसका शिकार हो रहा है, वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, तो समस्या उनकी अगर हो रही है, तो अगर जब तक हम जन जन की भागीदारी इसमें सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक ये जल जीवन मिशन भी सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जल जीवन मिशन में जन जन की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए और जो भी कमेटी बनाई गई है, जो भी पानी समिति बनाई गई है, उसमें लोकल लोगों को ज्यादा रखा गया है ताकि वो जल के संरक्षण के लिए और जल के सस्टेनेबिलिटी के लिए या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या हर घर में जल पहुंचने में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके।
0: सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 तक ये संकल्प लिया गया है कि 2047 तक एक विकसित भारत का सपना साकार होगा, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये जो मिशन है जल मिशन, इसकी क्या भूमिका होगी?
1: देखिए, अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं कि हमारे आजादी के 100 साल जब पूरे हों तो हमारा देश विकसित रहे, विकसित होने की दिशा में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमें लगता है कि अगर हम शहरी परिवेश को देखें तो हम लोग काफी चीजों में, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, रिसर्च के मामले में, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में, मेडिसिन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो उन्होंने कहा है कि आपको 2030 तक 2035 तक पूरा करना है, हमें लगता है कि उसमें हम काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पानी की भी बात कही गई है, उसमें क्लाइमेट चेंज की भी बात कही गई है, उसमें इन्वायरमेंट की भी बात कही गई है, हम सब में काफी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के साथ साथ ही अगर हमारे ग्रामीण परिवेश के हर व्यक्ति को टैप के जरिए पानी मिल जा रहा है तो निश्चित रूप से बड़ा ही सराहनीय कदम है, बड़ा ही प्रशंसनीय कदम है, और पूरी उम्मीद है जो अभी प्रोग्रेस दिख रहा है कि हर घर में टैप का पानी पहुंच चुका होगा।
0: प्रोफेसर ध्रुव, हमारे साथ जुड़ने के लिए

0: अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष श्रृंखला जनसेवा से राष्ट्र सेवा में आज आपने सुना सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों पर लखनऊ विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के सीनियर प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थी तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए देश गान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के उर्दू प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे एक तकरीर उस्ताद की फजीलत, और हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका एक मकाला, अमीर मीनाई की गज़लिया शायरी। और कलाम शायर में आज के शायर हैं डॉक्टर सरफराज नवाज। हर तालीम याफ्ता इंसान की ज़िंदगी में एक उस्ताद की बड़ी कदर मंजिलत होती है। समात फरमाइए इस हवाले से एक तकरीर उस्ताद की फजीलत। पेश कर रहा हूँ मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल। उस्ताद महज इल्म देने वाला नहीं, इंसान बनाने वाला एक उस्ताद होता है। वो जहन को मालूमात, फिक्र को सिमत, किरदार को इस्तेहकाम और ज़िंदगी को मकसद अता करता है। एक अच्छा उस्ताद तालिब इल्म के अंदर छिपी हुई सलाहियत को पहचान कर उसे तराशता है, जिस तरह एक माहिर जौहरी खाम पत्थर में छिपे हुए नगीने को पहचान लेता है। इस हकीकत को अल्लामा इकबाल ने इस शेर में नहायत बलीग अंदाज में पेश किया है। मकसद अगर हो तरबियत लाल बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतव। यानी अगर मकसद किसी कीमती शख्सियत की तरबियत और परदाख्त है तो महज रोशनी काफ़ी नहीं, उसे तरबियत, रहनुमाई और सिमत देने वाले हाथ की ज़रूरत है। यही उस्ताद का असल मनसब है। चिराग़े इल्म जलाया तो ये ख़बर भी हुई कि रोशनी का सफ़र सिर्फ रोशनी तक नहीं। उस्ताद वो चिराग है जो खुद जलकर सिर्फ एक फ़र्द को नहीं पूरी नस्ल को रोशनी अता करता है। उसका पढ़ाया हुआ सबक कभी किताब के आखिरी सफ़े पर ख़त्म नहीं होता। वो शागिर्द के किरदार, फिक्र और अमल में ज़िंदगी भर सफ़र करता रहता है। यौम असाज़ा दरअसल उस्ताद को खराज तहसीन पेश करने का दिन नहीं, बल्कि उस अजीम ज़िम्मेदारी को याद करने का दिन है जो एक उस्ताद के कंधों पर आयद होती है। उस्ताद सिर्फ किताब के सफ़हात नहीं खोलता, वो जहन के दरीचों को खोलता है। सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, वो ज़िंदगी के सवालात से नबरदाजमा होने का हौसला पैदा करता है। वो तालिब इल्म को महज रोज़गार के काबिल नहीं बनाता, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान, ज़िम्मेदार शहरी और साहिब किरदार फ़र्द बनाने की कोशिश करता है। वो हरूफ जो उस्ताद ने सिखाया था तमाम उम्र वही ज़िंदगी में काम आया। इसीलिए उस्ताद को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीक़ा सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि उसकी दी हुई तालीम को अपने किरदार में ज़िंदा रखना है। 5 अक्टूबर को आलमी योम असाज़ा के मौके पर आलमी सतह पर लोग अपने असाज़ा को सलाम पेश करते हैं। वो असाज़ा जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि जीना, सोचना, सवरना और इंसान बनना सिखाया। सलाम है उन हस्तियों को जो नस्लों की तकदीर संवारती हैं। सलाम उस ज़ात को जिसने हमें इंसान किया, हर सिखलाए हमें साहेब इरफान किया। समय नबी आप आलमी योम असाज़ा के मौके पर ये तकरीर समात फरमा रहे थे। अमीर मीनाई उर्दू के मायानाज क्लासिकी शायर और लगत नवीस थे, जिनकी गज़ल गोई दबिस्तान लखनऊ और दिल्ली का हसीन इम्तिजाज समझी जाती है। उनके कलाम में सादगी, रवानी और वालेहानापन पाया जाता है। अमीर मीनाई की गज़लिया शायरी अपने गन्नाइत, रवानी, ज़बान की सफाई और आशिकाना नज़ाकत की वजह से जानी और पहचानी जाती है।

0: वाह, तू ही तो शेरों का शेर है। कसूरे नफ्स लाई से खुदा रहा नाराज, गुनाह गैर पे हम मुर्दे इताब रहे। इसके अलावा सनम खान इश्क के नाम से दो दीवान, नूरे तजल्ली और अबरे करम दो मतनविया, कई मुसद्दस कसाइद और वासोख्त छोड़े। और अमीरुल लुगात तो वाकई अजीम शाहकार है। अल मुख्तसर ये कि अमीर मिनाई ने उर्दू शेर व अदब की बेलौस व काबिल कदर खिदमत अंजाम दी है। अमीर मिनाई को लखनऊ के ऐश परिस्ताना माहौल ने इनकी तबीयत पर गहरा नक्श छोड़ा था। कैसर बाग के ऐशो इशरत, सैर व तफरीह व तमाशे लखनऊ छोड़ने के बरसों बाद तक इनको याद आते रहे। मसलन फरमाते हैं, अमीर अफसुरदा होकर गुंचे दिल सूख जाता है, वो मेले हमको कैसर बाग के जब याद आते हैं। अमीर मिनाई ने मुख्तलिफ नौ असनाफे सुखन में तब आजमाई की, लेकिन इनका असल मैदान गजल ही था। अमीर की शायरी में हुस्न इश्क के जज्बात का लखनऊ की इल्मी जबान में बड़ी खूबी से बयान हुआ है। इनके कलाम में तखयल की गहराई के साथ रंगीनी और नुदरत भी है। इसके अलावा हुस्न इश्क की छेड़छाड़ और आशवा तराजियां भी हैं। इनका इब्तदाई कलाम नासिख के रंग में है, लेकिन आगे चलकर दिल्ली की सादगी, सफाई, सलासत व रवानी, रंगीनी व रानाई, रियायत लफ्जी, तशबीहात व इस्तियारात और बेतकल्लुफी का भरपूर अक्स भी नजर आता है। आइए जरा नमूने कलाम पर तवज्जो फरमाते हैं। जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का, अंगूर में थी ये मैं पानी की चार बूंदें, जिस दिन से खींच गई है तलवार हो गई है। उम्र बरको शरार है दुनिया, कितनी नापायदार है दुनिया। अमीर जमा हैं अहबाब हाले दिल कहले, फिर इल्तिफाते दिल दोस्तान रहे ना रहे। सनम खाने इश्क के अखीर में गौहरे इंतखाब और जवाहर इंतखाब के नाम से दो जमीमें शामिल किए, जिनकी निस्बत उनका दावा है कि वो मीर और दर्द के रंग में कहे गए।
1: अमीर मीनाई की गजलिया शायरी, ये मकाला पेश कर रहे थे डॉक्टर शरीफुद्दीन, और अब हम सुनवा रहे हैं आपको डॉक्टर सरफराज नवाज से उनका कलाम।
2: उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, जो भी उसकी छांव में बैठा परिंदा हो गया। धड़धड़ाती रेलगाड़ी आई उसको ले गई, मैं खड़ा गुमसुम सा स्टेशन का हिस्सा हो गया। एक मतलब एक शेर और देखें कि लबों पे मेरे तबस्सुम ने यूं मलाल किया, लबों पे मेरे तबस्सुम ने यूं मलाल किया कि अश्क हार गए हार कर सवाल किया। तुम्हें गिला है कि पुरखों ने कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हें गिला है कि पुरखों ने कुछ नहीं छोड़ा, हमें तो उनकी शराफत ने मालामाल किया। तुम्हें गिला है कि पुरखों ने कुछ नहीं छोड़ा, हमें तो उनकी शराफत ने मालामाल किया। एक मतला और एक शेर समाप्त फरमाए कि बला से नाम वो मेरा उछाल देता है, बला से नाम वो मेरा उछाल देता है, मगर वो जहर तो दिल का निकाल देता है, मगर वो जहर तो दिल का निकाल देता है। मैं सोया रहता हूं और जाने कब खुदा मेरा अधेरी रात को सूरज में ढाल देता है। मैं सोया रहता हूं और जाने कब खुदा मेरा अधेरी रात को सूरज में ढाल देता है। अब एक गजल के चंद अशआर समाअत फरमाए। मतला यूं अर्ज किया है कि पलक झपकते ही रूपोश होने वाला हूं, पलक झपकते ही रूपोश होने वाला हूं, मैं झील आंखों में खुद को डुबोने वाला हूं, मैं झील आंखों में खुद को डुबोने वाला हूं। तेरी हंसी में हजारों शरीक होते हैं, तेरी हंसी में हजारों शरीक होते हैं, मैं चुपके चुपके तेरे साथ रोने वाला हूं, मैं चुपके चुपके तेरे साथ रोने वाला हूं। और इस

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

0: बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं सचिन कुमार। सबसे पहले सुनिए कबीर दास रचित ये भजन इनके स्वर में।

सचिन कुमार के स्वर में आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। अभी आपने सुना था कबीर दास रचित भजन सचिन के स्वर में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के कलाकार थे सचिन कुमार। आपने सुने इनके स्वर में भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करा है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाला युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सैकड़ों की याद में आयोजित की जा रही है। एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माथुरी। आज के कलाकार हैं शोभा लाल और साथी और शैल सिंह। आप सुनेंगे इनके स्वर में सबसे पहले देवी गीत,

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, और अभी आप सुन रहे थे शोभा लाल और साथियों के स्वर में लोकगीत, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शैल सिंह के स्वर में लोकगीत। पहले सुनते हैं इनके स्वर में देवी गीत।

शैल सिंह के सुर में आपने सुना देवी गीत, और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, ये दादरा स्वर शैल सिंह।

लोक गीतों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शोभालाल और साथी और शैल सिंह के गाए लोक गीत। कार्यक्रम था लोक माथुरी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ज्ञान की ज्योति जलाएं, निरक्षरता दूर भगाएं।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। एहसासों की बात करें तो कुछ एहसास श्रोताओं ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, बस दिल में एक हल्की सी दस्तक होती है और सुबह और सुहानी हो जाती है। पहली मोहब्बत का एहसास भी कुछ ऐसा ही होता है। न दिल उसे पूरी तरह समझ पाता है, न उसे दूर रह पाता है।

जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजें हैं, मजरूह की शब्द रचना, जतिन ललित का संगीत।

कहते हैं जब मोहब्बत दिल में उतरती है तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, आँखें बहुत कुछ कहती हैं और खामोशी भी गुनगुनाने लगती है।

कुछ लोगों के ज़िंदगी में आते ही ज़िंदगी का अर्थ बदल जाता है और उनकी याद में दिन में उजाला और रात में चांदनी नज़र आती है। मोहम्मद का सबसे खूबसूरत रूप शायद यही है, जब किसी शख्स की सिर्फ मौजूदगी से पूरी दुनिया हसीन लगने लगे।

दो नजरों की चुपचाप मिलने से होती है और कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। दिल एक दूसरे की खामोशी पढ़ लेते हैं और फिर कहानी बिना कहे ही बहुत कुछ कहने लगती है, आगे बढ़ने लगती है।

परदेश फिल्म का गाना अभी आपने सुना, कुमार सानू की आवाज़ में आनंद बख्शी की शब्द रचना थी, नदीम श्रवण का संगीत था। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है, शब्द रचना है जावेद अख्तर की, आर डी बर्मन का संगीत है।

श्रोताओं, कभी कभी खामोशी सबसे खूबसूरत बातचीत होती है, जहां होंठ चुप रहते हैं और आंखें पूरी दास्तां बयां कर देती हैं। जब हर बात कहना जरूरी नहीं होता, बस महसूस किया जाता है और बस वो पल उम्र भर के लिए दिल में ठहर सा जाता है।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का गाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, इंदिवर की शब्द रचना एम एम करीम का।

ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए श्रोताओं, कभी किसी अपने का साथ ही काफ़ी होता है। और हवा में एक अनकही सी खुशी और आँखों में नए सपने उतर आते हैं और फिर दिल कह उठता है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए।

दिल भी कितना अजीब मुसाफिर है ना श्रोताओं, जिसे अपना मान ले उसे भुलाना उसके बस में ही नहीं होता। और कभी कोई दूर रहकर भी हर पल पास रहता है, कभी किसी की तलाश में पूरी दुनिया छोटी पड़ जाती है और बस दिल यही चाहता है कि कोई उसे ढूंढ कर वापस ले आए।

अंजाम फिल्म के इस गाने के बाद श्रोताओं कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गाना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं, फैज अनवर की शब्द रचना है, नदीम श्रवण का संगीत है। अक्सर समझदारियां दिल के सामने हार जाती हैं, लाख समझाओ इसे फिर भी ये अपनी ही जिद पर चलता है। मोहब्बत में रास्ते मुश्किल हों, दिल तो बस उसकी एक झलक की दरकार में रहता है।

श्रोताओं, कुछ रिश्ते गीतों की तरह होते हैं, ख़त्म हो जाएं तो भी दिल में बचते रहते हैं, है ना। और कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिनका कोई अंत नहीं, बस एक खूबसूरत याद होती है जो उम्र भर साथ चलती है। तो श्रोताओं, आप भी सुनते रहिए संगीत, सजोते रहिए यादें और मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलेंगे किसी खूबसूरत संगीत यात्रा पर, किसी और एहसास और किसी और संगीत यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगली उद्घोषणा के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल संग।

0: ने हमें एक सुंदर संसार दिया है जिसमें मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधे पशु पक्षी और भी बहुत से लोग, जैसे कि हमने कहा कि हर तरह के प्राणी इसमें रहते हैं।
1: और पर्यावरण तो इतना सुंदर कि जहाँ भी देखिए तो ग्रीनरी यानी हरा भरा, और ये हमारा संसार बहुत प्यारा लगता है।
0: बिल्कुल दीदी, और ये सभी हमारे पर्यावरण और जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल भैया, और जानते हैं हम जब बात कर रहे हैं पर्यावरण की, प्रकृति की, पशुओं की, पक्षियों की, तो हम आपको बता दें कि आज है क्या तारीख है?
0: आज है 4 अक्टूबर।
1: हाँ, तो 4 अक्टूबर को क्या होता है भैया? आज है विश्व पशु दिवस, है ना? हम जब कोई भी दिवस मनाते हैं तो उसका मनाने का एक जो है पर्याय है, एक कारण ये है कि हम उसे अच्छी तरीके से समझें, सोचें उसके विषय में, क्योंकि हर दिन तो हम सबका भागम भाग वाला है और हम एक दिन मनाते हैं उनके सम्मान के लिए। जानते हैं भैया, हर अक्टूबर 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। बच्चों, इस दिन का उद्देश्य पशुओं के प्रति प्रेम, है ना, दया और संवेदनशीलता की भावना को बढ़ाना है तथा उनके कल्याण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
0: बिल्कुल दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और हम सबको मालूम ही है कि ये जो पशु पक्षी हैं बेचारे बोल तो सकते नहीं हैं, लेकिन वो भी हमारी तरह दर्द, भूख और खुशी महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: इसलिए हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम उनके साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें।
1: बिल्कुल, देखिए कभी कभी लगता है, जब कभी आप घर से बाहर निकलिए तो गलियों में या रास्ते में कभी ऐसा लगता है कोई जो कोई भी पशु को जो टहलते रहते हैं, जानवरों को जो परेशान करते हैं, कोई हमने देखा एक बच्चा है कि अक्सर ही मैं देखती थी उस बच्चे को कि जब मैं बाहर निकलती थी तो स्ट्रीट डॉग्स है ना, तो कभी कभी होता था कि अगर वो आ जाते हैं दरवाजे के पास तो कोई रोटी दे देता है, कोई कुछ देता था, इसी में इसी लालच पर वो सब आते थे। लेकिन वो बच्चा इतना शैतान था भैया कि जब वो आ जाए तो उसको ये तो डंडे से पिटाई करी या तो उसकी पूंछ पकड़ के खींचता था। तो वो क्या करता था, उसको जब वो नहीं कुछ कर पाता तो काटने की कोशिश करता था, तो लोग कहते थे अरे ये काटने वाला है, इसको जो है यहाँ भेज दो वहाँ भेज दो। तो सब फिर मोहल्ले वालों ने मिल के क्या किया कि भाई ये गलत बात है, आपका बच्चा खुद ही गलत है, है ना, और आप अपने बच्चे को समझाइए, किसी को सताएंगे परेशान करेंगे, अगर आपके बच्चे को कोई सताए हाँ। परेशान करे तो आप नहीं एक्शन लेंगे, तो उसी तरीके से वो तो जानवर है, बेजुबान है, वो हमारी भाषा ऐसी समझता, प्यार की भाषा समझता है भाई, हम हमारे मोहल्ले से लोग उसको देते हैं खिलाते हैं तो इसलिए वो आ जाता
0: हाँ,
1: है,
0: तो
1: है ना
0: भैया? दीदी आपने सही कहा कि और हम तो बच्चों से यही कहेंगे कि बच्चों भाई पशुओं को बिना कारण परेशान हाँ, नहीं करना चाहिए। और जैसा कि दीदी ने कहा कि जब गर्मी के दिन हो या वैसे भी उनको भी प्यास लगती है, भूख लगती है, तो उनके लिए पानी रखिए, खाना रखिए, और उन्हें जो ज़रूरतमंद पशु पक्षी हैं उनको भोजन देना और उन्हें सुरक्षित रखना, ये सब चीज़, ये छोटे छोटे काम बहुत ही अच्छे हैं।
1: हाँ, बिल्कुल, और जानते हैं बच्चों इससे क्या होता है कि जब आप ऐसी सेवा करने की भावना मन में लाएंगे ना तो आपके अंदर एक अच्छा संस्कार आएगा। और जैसा कि हमने बताया आपको कि भैया हमारे जो विनय भैया हैं, इन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है और कई बार मैं उससे मिली हूँ और वो रेडियो में आए भी हैं, तो मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप क्या कर रहे थे, आपकी मतलब गर्मियों की बात है शायद विनय भैया, तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने घर में एक गत्ते से मैंने घोंसला बनाया है और मैं कटोरी में पानी ऊपर छत पर रख देता हूँ, बाहर भी घड़े में पापा से पानी रखवा देता हूँ, और जब कोई ऐसे जानवर आते हैं तो मैं उनको रोटी भी खिला देता हूँ। तो कितनी अच्छी बात है कि वो इतना छोटा सा बच्चा जब ये काम कर सकता है तो हाँ आप सब भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल दीदी, ये तो हम सभी को सोचना होगा कि हम जानवरों के प्रति दया का भाव रखें, हाँ। प्रेम का व्यवहार करें, और ये जानवर हमसे कहीं ज्यादा वो उसका प्रति उत्तर देंगे, यानी कि वो हमसे भी उतना ही ज़्यादा प्यार करेंगे।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे। एक बचपन की बात याद आ रही है विनय भैया, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारे दरवाजे पर एक काले रंग का डॉगी आता था हमेशा, और रात में पापा, चूंकि रात में पापा की नाइट ड्यूटी होती थी तो पापा रात में आते थे, मैं हम सब बच्चे इंतज़ार करते रहते थे कि पापा आ जाएं, और वो डॉगी वहीं बैठा रहता, जब पापा आ जाते थे घर में तब वो जाके एक साइड में सो जाता था, और हम लोग सोच रहे थे कि भगवान ऐसा क्यों वो करता है, क्योंकि वो पापा का इंतजार करता था, पापा बाहर निकलकर उसे रोटी खिलाते थे, जो भी खाना होता था वो खिलाते थे। एक बार बाढ़ आ गई तो हम लोगों का एरिया ऐसा था कि नया नया

0: बच्चों जय हिंद।
1: और प्यारे बच्चों, आज के इस बाल संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ विनय भैया।
0: और मैं हूँ हेम दीदी।
1: और बच्चों, जानते हो कि

0: घर बना था और थोड़ा ढलान पे था, तो बाढ़ का पानी जो है आने लगा पास में। और उस समय मेरे बाबा जी बहुत बीमार थे, मेरे दादाजी जो थे वो बहुत बीमार थे, और हम लोग परेशान उसी में थे। वो डॉगी पूरे टाइम वहीं पर पहरा देता रहता था कि कोई भी अगर मेम्बर हॉस्पिटल जा रहा है, घर खाली है, तो वहीं पूरे टाइम रहता था वो डॉगी। तो सोची कितना वफादार था
1: बिल्कुल
0: उसने, उसने जो है ये निभाया, अपना पूरा कर्तव्य निभाया कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बाहर बड़े लोग लेके चले जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो हमें भी होना चाहिए। हमारे घर में उस समय आसपास एरिया में कोई घर नहीं था, एक दो ही घर था, बना था जब घर, तो ऐसे एरिया में सोचिए कि वो सामने बैठा रहता और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हम लोग के दरवाजे पर कोई खड़ा हो जाए।
1: बिल्कुल। तो दीदी, कुल मिला के कहने का
0: हाँ
1: मतलब ये है कि जो भी जानवर हैं, पशु
0: हाँ
1: पक्षी हैं,
0: हाँ
1: और इस तरह के, खासकर जो बेजुबान ही
0: बिल्कुल,
1: हैं, और ये
0: वो आपके
1: हमें
0: प्यार की भाषा समझते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: अगर हम
0: हाँ
1: उनसे प्यार
0: हाँ
1: से बात करेंगे, व्यवहार
0: बिल्कुल
1: करेंगे,
0: बिल्कुल
1: तो निश्चित है कि वो हमारी प्यार की भाषा को समझते हैं, और
0: हाँ।
1: वैसे ही वफादारी से वो अपने कर्तव्य भी
0: तो
1: निभाते
0: भाई
1: हैं।
0: बच्चों, आज हम सभी ये संकल्प ले लें कि
1: जी
0: हम सब बेजुबान जानवर जो हैं वो आपकी प्यार की भाषा समझते हैं, धिक्कार की भाषा समझते हैं, तो आप ऐसा उनके साथ कोई व्यवहार ना करें कि जिससे वो परेशान हो, उनके मन में दुख हो। उनके भी आंसू निकलते हैं, अगर आप महसूस कीजिए, देखिए, तो
1: बिल्कुल।
0: हमेशा दया और प्यार की भावना उनके लिए रखिए।
1: तो दीदी, बच्चों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी,
0: हाँ
1: और अब इतनी अच्छी जानकारी के बाद मुझे लगता है कि बच्चों को एक प्यारा सा गीत भी सुनवा दिया
0: जी
1: जाए।
0: भैया जी,

0: भाई बच्चों, ये गीत तो ज़रूर अच्छा लगा होगा।
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल।
0: दीदी
1: हाँ
0: देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि आज 4 अक्टूबर को है विश्व पशु दिवस,
1: जी
0: तो ऐसे ही यानी अभी
1: हाँ
0: 9 अक्टूबर को जो आने वाला है, इस दिन जानती है क्या है?
1: उस दिन भैया है शायद विश्व डाक दिवस।
0: बिल्कुल, यानी
1: हाँ
0: कि जो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ
0: और बच्चों, हम सबको बहुत ही उत्सुकता होती है इस जो डाक व्यवस्था है इसके बारे में। तो हम बच्चों आपको बता दें कि जो 1969 में टोक्यो, जो
1: हाँ
0: जापान में
1: हाँ
0: आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान विश्व डाक दिवस जो इसे घोषित किया गया था,
1: हाँ भैया
0: और भारत में माई स्टैम्प सुविधा के तहत अपनी तस्वीर वाला आधिकारिक डाक टिकट जो है, हम इसे बनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और जानते हैं जब ये टिकट, हमें याद आता है कि इस टिकट को लगाकर हम लोगों ने कितने खत लिखे होंगे। और दिमाग जब खत लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ अंतर्देशीय भी आता है भैया, लिफाफा आता है। और एक जब हम लोग रेडियो में जो प्रस्तुत कार्यक्रम करते हैं और अभी भी मैसेज से, तो उस पर आता है ना भैया, क्या बोलते हैं उसको जो जिस पे लिख के आता है उसको क्या बोलते हैं बताइए हमारे बच्चों को,
0: बताइए।
1: जैसे अंतर्देशीय है, पोस्टल क्या बोलते हैं उसको,
0: नहीं, पोस्ट कार्ड होता
1: पोस्ट
0: है
1: कार्ड।
0: या अंतर्देशीय पत्र होते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: अब इसका चलन बहुत कम हो
1: कम
0: गया
1: हो गया
0: है।
1: है।
0: और एक समय था दीदी, कि हम लोग के समय जब हम लोग बच्चे थे, तो उस समय जो पत्र व्यवहार का बहुत ही ज़्यादा चलन था। किसी के सुख दुख की जो खबर है एक दूसरे
1: हाँ
0: तक पहुंचाना,
1: बिल्कुल
0: दूसरे दूसरे शहरों में हमारे रिश्तेदार हैं उन तक चिट्ठी भेजना, और उसका जो एक आकर्षण था, उसका जो आनंद था, वो अलग ही था। बहुत
1: इंतजार
0: इंतज़ार
1: रहता
0: रहता था कि
1: था।
0: अब उनका पत्र आने वाला है, कब आएगा, या हर 10 दिन पे एक बार ज़रूर आ जाता है। या दोस्तों को भी हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे।
1: हाँ
0: तो बच्चों जानते हो, ये जो पत्रों का जो डाक व्यवस्था की जो शुरुआत थी, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें बच्चों कि ये भारत में 1,55,000 से भी अधिक डाकघर हैं।
1: अरे बाबा 1,55,000।
0: और दुनिया के ये सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है।
1: अरे वाह क्या कहने, बहुत अच्छी बात है
0: बिल्कुल।
1: तो।
0: और जैसे कि अभी आपने बताया कि इसके कई तरीके से, इसमें जैसे पोस्ट कार्ड के जरिए
1: हाँ
0: चिट्ठी लिखी जाती थी,
1: हाँ
0: अंतर्देशीय एक पत्र होता था, इसी
1: वो
0: तरह।
1: लाइट ब्लू टाइप का रहता
0: हाँ
1: था या
0: हाँ
1: ना।
0: अभी भी है,
1: हाँ अभी
0: लेकिन उसका
1: हाँ
0: चलन, जैसा कि हमने बताया, कि
1: जी
0: बहुत कम हो गया है।
1: बहुत कम
0: चूंकि
1: हो गया।
0: अब आज हम लोग मोबाइल की दुनिया में जी रहे हैं, तो यानी कि सारे मैसेज वगैरह हमारे
1: सब
0: मोबाइल
1: मोबाइल से ही
0: के
1: चले
0: जरिए
1: जाते हैं। हाँ
0: फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, इनको आपको ये ज़रूर समझना होगा। और होते देखिए, बहुत से लोगों को दीदी डाक टिकट जो होता है, उस पर एक टिकट लगता है ना, हर अलग अलग उसका उसका रुपये या पैसे के उसके
1: वो
0: दाम का
1: अलग अलग
0: रहता
1: रहता
0: है,
1: है। हाँ
0: वो दूरी के हिसाब से और कहीं कहीं उसके उसके वजन के हिसाब से होता है।
1: हाँ जैसे
0: तो
1: स्पीड
0: ये
1: पोस्ट करना हुआ है या कुछ।
0: बहुत से लोगों का इसका भी शौक है,
1: बिल्कुल।
0: डाक टिकट एकत्र करने का भी शौक है।
1: आपने भी तो कर रखा है।
0: जी बिल्कुल दीदी। और देखिए, उसकी उसका जो शौक है, वो एक अलग ही उसका रोमांच है।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बच्चों को इसी तरह का एक रूपक है, जो कि हम पहले भी बच्चों को सुनवा चुके हैं, तो क्यों ना उसको सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल सुनवा दिया जाए
0: और
1: भैया।
0: ये रूपक है डाकिया डाक लाया। स्वर हैं हेम श्रीवास्तव और शैल श्रीवास्तव दीदी के।

0: डाकिया डाक लाया।
1: देखो देखो डाकिया डाक लाया, खाकी वर्दी पहन के आया, कंधे पर एक झोला लटकाया, बच्चों ने तब शोर मचाया, देखो डाकिया डाक लाया।
2: जब भी डाकिया दरवाजे पर आता, संग अपने कुछ संदेशा लाता, हर खबर को घर घर पहुंचाता और एक कागज के टुकड़े में लिखे सब हाल सुनाता, भाई देखो डाकिया डाक लाया।
1: जब भी कोई विदेश देश जाता, चिट्ठियों के जरिए अपना हाल बताता,
2: बिल्कुल
1: अपना सुख दुख कागज पर लिखता, अपने पराए की हर खबर सुनता और सुनाता, भाई देखो डाकिया डाक लाया।

0: पर खाकी वर्दी पहने और हाथों पर झोला टांगे जब भी डाकिया घरों के पास से गुजरता था ना, तो हर किसी की आंखें उम्मीदों से मुस्कुरा उठती थी। बूढ़ी आंखों में बेटे के आने की खबर, तो नन्हे कदमों को पिता के आने की आहट, तो वहीं दूर ससुराल में बैठी बेटी को मायके की खबर के लिए दिल में बेचैनी हो उठती थी। और बस दिल दिमाग में एक ही बात दौड़ती थी कि डाकिया बाबू मेरे लिए भी खत लेकर आए हैं कि नहीं।
1: सच कितना सुहाना दौर हुआ करता था जब खत लिखे पढ़े और भेजे जाते थे। हमने पढ़े लिखे और भेजे इसलिए कहा क्योंकि ये तीनों ही कार्य बहुत दुष्कर लेकिन अनंत सुख देने वाले होते थे।
0: बच्चों, जब दूर संचार डाक संचार नहीं हुआ करता था तो उस समय संदेश लिखकर प्रशिक्षित कबूतरों के पंजों पर बांध दिया जाता था और फिर वो निर्धारित स्थान पर पहुंचकर पत्र का जवाब लेकर भी आ जाता था। और भाई कालांतर में तो कबूतरों का काम डाक विभाग ने आरम्भ कर दिया। और संचार के साधनों में डाक एक महत्वपूर्ण साधन है। बच्चों, डाक का इतिहास वैसे तो सदियों पुराना है मगर आधुनिक डाक का स्वरूप भारत में अंग्रेजों की देन है। 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने खुफिया तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डाकघर का उपयोग शुरू किया और देश में पहली बार 1688 यानी 1688 में मुंबई में देश का पहला डाकघर अंग्रेजों ने खोला।
1: कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने डाकघर को सिविल सेवाओं के लिए खोल दिया। देश भर में अलग अलग महत्व के स्थानों पर पोस्ट ऑफिस भी खोला गया। 1 अक्टूबर 1854 को आधिकारिक रूप से डाक विभाग को मान्यता देकर विधिवत रूप से भारत में शुरू किया गया। अपने शुरुआती दौर में डाकघर सूचना के आदान प्रदान के माध्यम थे। एक जगह से दूसरे स्थान पर डाकिये द्वारा पोस्ट कार्ड बांटे जाते थे।

0: खत लिखना और उसे डाकघर में जमा करना कोई सामान्य कार्य नहीं होता था बच्चों। खत लिखने का क्रेज तो हम सबके सर चढ़कर बोलता था। और बच्चों बताओ, जब कक्षा 6 में हम सब थे ना, तो हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में भी ये लागू कर दिया गया था। मगर आज के इस भागते दौर में तो शायद पत्र की प्रासंगिकता ही खत्म होने को है। मुझे याद है वो समय जब पोस्ट कार्ड लिखने से पहले ये अच्छी तरह से सोच लेना पड़ता था कि क्या लिखना है, क्योंकि उसमें लिखने की सीमित जगह होती थी और एक अंतरदेशीय के तो बंटवारे होते थे जिसमें सबके लिखने का स्थान निश्चित किया जाता था। तब शायद पर्सनल और प्राइवेट जैसे शब्द हमारी जिंदगी में शामिल नहीं हुए थे। तभी तो पूरा परिवार एक ही खत में अपनी अपनी बातें लिख देता था। आज तो मोबाइल पर बात करते समय भी हम पर्सनल स्पेस ढूंढते हैं।
1: और हाँ बच्चों, पत्र लिखने के हफ्ते 10 दिन बाद से शुरू होता था इंतजार जवाब के आने का। जब डाकिया बाबूजी को घर की गली में आते देखते ही बस भगवान से मनाना शुरू कर देते थे कि ये मेरे घर जल्दी से आ जाएं। और 2-4 दिन बीतने पर तो सब्र का बांध ही टूट जाता था। और दूर से डाकियों को देखते ही पूछा जाता, चाचा हमारी कोई चिट्ठी आई है क्या? और फिर चिट्ठी आते ही एक प्यारे से झगड़े का दौर शुरू होता था कि कौन पहले पढ़ेगा। कभी कभी तो भाई बहन के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता कि खत फटने तक की नौबत आ जाती। तब माँ आकर सुलह कराती। अब तो वो सारे झगड़े डायनासोर की तरह विलुप्त होते जा रहे हैं।
0: हाँ, और आज के दौर में हमें सबके हाल खबर सूचनाएं मोबाइल ईमेल पर सरलता पूर्वक मिल जाते हैं। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता बच्चों, लेकिन वो खत वाली आत्मीयता महसूस नहीं हो पाती। शायद खत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। तभी तो न जाने कितने गाने बन गए थे, चाहे वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, या मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, या चाहे खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, या आएगी जरूर चिट्ठी। आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा जरूर बन गई है, मगर हमारी यादों की किताब में उनका एक भी अध्याय नहीं। शायद तभी आज तक एक भी गीत इन ईमेल्स के हिस्से नहीं आया।

0: बच्चों, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। वो दिन दूर नहीं जब बच्चों ये गाना सुन अपने बड़ों से आप ही पूछेंगे कि चिट्ठी क्या होती है।
1: यदि आपको जानकारी है इस विषय में तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप अपने छोटे भाई बहन, आसपास पड़ोस में जो आपके मित्र हैं, आपके स्कूल में जो भी मित्र हैं, उनको ये जानकारी दीजिए। सभी विषयों की जानकारी होनी आप सबके लिए बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना कि परिवर्तन ही जीवन है। बिल्कुल, जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन बीते समय की जो अच्छी बातें हैं उसे अपने जहन में रखना भी जरूरी है, है ना बच्चों। 1 अक्टूबर 2004 तक के सफर को 150 वर्ष के रूप में मनाया गया। डाक विभाग की स्थापना इसी समय से मानी जाती है। और बच्चों, डाक टिकटों का प्रचलन सन 1842 से शुरू किया गया। महारानी विक्टोरिया का चित्र युक्त डाक टिकट सन 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। और एक बात और भी आपसे कहना चाहूंगी कि आपने पोस्ट ऑफिस के बाहर लाल बॉक्स तो देखा ही होगा, जो आपके हमारे रिश्तों की जमा पूंजी रही है। आपके दादाजी ने बड़े यकीन से अपने मित्र को पत्र लिखा होगा और उस पत्र पेटिका में डाला भी होगा, इस भाव से कि उन शब्दों की आत्मीयता और भाव अपने मित्र तक पहुंच जाए, और डाकिया उस पत्र को पहुंचा भी देता था। इस तरह आप भी हमारी यादों को संजो सकते हैं। एक प्यारा सा खत लिखिए, देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। वो बॉक्स जो दादा परदादा की यादों से जुड़ा है, जो बीता हुआ कल है वो आज से जुड़ जाएगा।

0: डाकिया डाक लाया।
1: तो बच्चों ये था रूपक डाकिया डाक लाया, और हमने आपको इसको एक बार फिर से सुनवाया जो कि हम पहले भी आपको सुनवा चुके थे, और इसमें वाचन स्वर था हेम श्रीवास्तव और शैल श्रीवास्तव दीदी का, और प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की।
2: तो भैया इतनी सारी जानकारी हम सब के पास हो गई है, है ना। अब जो है बात कर लेते हैं हम सब कि बच्चों जो भी जानकारी आपको दी जाती है उसे हमेशा संजो कर रखिए। जैसा कि हम लोग पहले भी कहते हैं कि कुछ भी जो यहाँ से आप सुनते हैं तो आप अपने मित्रों के बीच में, अपने बड़ों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए, और उस और भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज है इस समय, और जितनी जानकारी आप इकट्ठा कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।
1: तो बिल्कुल, यानी कि हम आपका इशारा समझ रहे हैं दीदी कि अब हम अगले सेगमेंट की ओर अपने बढ़ते हैं, और वो है शब्द ज्ञान बच्चों को, जिसमें हम शब्दों के बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि उन उन शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है, किस तरह होता है, दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं, जिसमें कि पहला जो है वो है इंग्लिश का शब्द है,
2: हाँ, तो वो है हेल्पलेस, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा कि अभागा या भाग्यहीन। इसको दयनीय स्थिति भी कह सकते हैं, बहुत दुखी भी कह सकते हैं, नाखुश भी कह सकते हैं, उदास भी कह सकते हैं,
1: मतलब बहुत सारे कई तरह से इसके प्रयोग हो सकते हैं,
2: प्रयोग हो सकते हैं।
1: और इसी तरह जो बच्चों जो आज का हिंदी का शब्द है शब्द ज्ञान के अंतर्गत, इसमें ये है उन्मेष, इसका अर्थ होता है खुलना, खिलना, विकास होना, या किसी भावना और विचार का प्रकट होना। अब जैसे कि हमें उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं कि सुबह सूर्य की किरणों से फूलों का उन्मेष होने
2: बहुत
1: लगा,
2: बहुत सुंदर,
1: ये हम इस तरह कह सकते हैं,
2: एग्जांपल दे सकते हैं
1: कि उन्मेष का हम ये प्रयोग कर सकते हैं। तो या दूसरा हो सकता है कि नई प्रतिभा का उन्मेष उसकी कला में।

0: दिखाई
1: कला
0: देता
1: में
0: है,
1: दिखाई देता है
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये हो गया कि कहाँ हम
1: हाँ
0: उन्मेष शब्द का प्रयोग
1: भाई,
0: कर सकते
1: जैसे
0: हैं।
1: विकास के क्षेत्र में हम कहीं भी कोई भी कार्य करते हैं और कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका हम इस शब्द का प्रयोग अच्छी तरीके से कर
0: कर
1: सकते हैं
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो बच्चों आप नई नई जानकारियां लीजिए और हो सके जैसा कि दीदी ने बताया कि उसको संजो के रखिए। और हम तो दीदी ये भी कहेंगे
1: क्या भैया?
0: कि प्रतिदिन का एक बच्चों आप टाइम टेबल बना लीजिए
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: आप पेपर पढ़िए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पेपर में आपको लगे कुछ खास शब्द है, यानी कि आपका शब्द ज्ञान का जो भंडार है
1: हाँ
0: ना वो
1: वो
0: धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। या आप
1: बिल्कुल
0: डायरी में नोट करिए
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: जब भी आपको समय मिले उसको दोहराइए, उसको उसको चिंतन कीजिए, उसको मनन कीजिए और उसको कोशिश करिए कि ये पता करिए कि कहाँ प्रयोग होता है।
1: प्रयोग होता
0: क्योंकि
1: है।
0: देखिए दीदी, बोलचाल की भाषा तो है ही,
1: हाँ
0: हम लोग
1: हाँ
0: रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन कुछ उसमें ऐसे बहुत से शब्द हैं जो खास, जैसे हिंदी की ही बात करें या
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: ऐसे विशेष शब्द हैं जो हर जगह नहीं प्रयोग होते हैं,
1: नहीं
0: लेकिन फिर भी हमें उसकी जानकारी होनी
1: होनी
0: चाहिए।
1: चाहिए। देखिए ठीक है, सब चीज़ आनी चाहिए। देखिए अंग्रेज़ी तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी भाई लैंग्वेज है, तो हमारी हिंदी जो है मातृभाषा है। अपनी मातृभाषा को सीखने का क्रेज़ आपके अंदर होना चाहिए। और आम बोलचाल की भाषा में तो हम लोग सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आपके पास कितना शब्द ज्ञान है, आपने कितना अपना भंडार भरा है, आपकी वोकैबुलरी कितनी ज़्यादा फुल हो गई है। और क्योंकि जानते, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, आप हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं और अच्छा सीखते हैं।
0: और
1: जो
0: ये
1: सीखिए
0: दीदी, ये
1: हाँ
0: जो हमने बताया कि डायरी नोट
1: हाँ
0: में नोट
1: बिल्कुल।
0: करना या कहीं भी आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छी आदत है।
1: आदत है।
0: इससे क्या है, आपका जो हमने बताया कि जो शब्द ज्ञान का जो भंडार है वो तो भर रही है, और आप कहीं भी जब बोलने लगेंगे या कहीं भी आपको लिखने की बात आएगी तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं
1: कमी नहीं
0: रहेगी।
1: होगी। देखिए हमेशा जो है स्कूल कॉलेज हमेशा एक डिबेट होता है, तो आपका क्या है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास क्योंकि लिखने की क्षमता है, आपके पास शब्दकोश है, उसका भंडार है, तो
0: क्योंकि
1: आप
0: जब
1: बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक लिख
0: आपके
1: सकते
0: लिखने
1: हैं।
0: का या आपके बोलने का जो
1: हाँ
0: आंकलन किया जाता है, यानी कि कोई भी आपका टीचर है या कोई भी जज है जहाँ बोल रहे हैं, तो वो जब आपका आंकलन करेगा तो वो आपके जो शब्दों का चयन है
1: हाँ वो
0: ये बहुत निर्भर
1: बहुत
0: करता
1: ज़रूरी
0: है,
1: है,
0: इस पर
1: बहुत बिल्कुल
0: बहुत निर्भर करता है कि आपने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो और साथ साथ अगर बच्चों आप ग्रामर की हम बात करें, यानी कि व्याकरण, व्याकरण पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत
1: व्याकरण को
0: है।
1: तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर सब्जेक्ट है, कोई भी आपका विषय है, वो बिना ग्रामर बिना व्याकरण के है ही
0: हाँ,
1: नहीं कुछ
0: यदि आप कहीं परीक्षा दे रहे हैं
1: बिल्कुल
0: तो बोल रहे हैं तो भाषण दे रहे हैं तो
1: हाँ
0: किसी भी तरीके का यदि आप संचालन भी कर रहे हैं, अगर आपके बोलचाल में जब तक वो चीज़ शामिल नहीं रहेगा, व्याकरण का जो अभ्यास है, तो आपकी जो व्याकरण की गलती होगी उसका कहीं ना कहीं की जो इमेज है उसका, यानी निगेटिव पक्ष उभर कर सामने
1: अब
0: आएगा,
1: भैया
0: है
1: मैं
0: ना।
1: तो देखती हूँ कि हर हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि मैं टीचिंग करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो अक्सर ही मैं देखती हूँ बच्चों को, देखती हूँ कि कोई भी अगर उनको टॉपिक दीजिए तो वो सिंपल एकदम सरल भाषा में बोलने लगेंगे, उसमें कुछ भी लिखने की उनको जो वो कोशिश ही नहीं करते कि हाँ हम कुछ ऐसा लिखें कि हमसे सामने वाला जो है खुश हो जाए
0: यही तो दीदी,
1: हाँ, और हमारी तारीफ करे ऐसा, क्योंकि सब जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी कर लेने की होड़ में सब
0: लेकिन
1: शामिल हो
0: जैसा कि अभी
1: जाते
0: हमने
1: हैं।
0: बताया ना
1: हाँ
0: कि जब भी इसके जो आंकलन की बात आएगी, जब उसके परिणाम
1: हाँ
0: की
1: बिल्कुल
0: या कॉपी जांचने या
1: हाँ
0: वैसे भी जज करने की बात आएगी, तो ये जो सामान्य है
1: जी
0: इससे हटकर अगर किसी ने कुछ लिखा है या बोला है तो निश्चित ही है कि उसको कहीं ना उससे ज्यादा अंक मिलेंगे।
1: बिल्कुल। और
0: या
1: एक बात और भी कहना चाहूंगी बच्चों आपसे, कि जो आप लिखते हैं उसको जब पढ़ते हैं आप, तो उसी भावना उसी फील के अकॉर्डिंग पढ़िए। आपने पढ़ लिया एक किताबी भाषा की तरीके से, आपने लिख लिया, आजकल तो जानते हैं सब मोबाइल सोशल मीडिया और मोबाइल से सब मिल जाता है, लेकिन सारी अच्छी बात है कि आप अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं और आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन आप उसमें भी अपने कुछ शब्द लिखिए और उसको बोलचाल की भाषा में ऐसा प्रस्तुत कीजिए कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए आपसे, है
0: यही
1: ना,
0: इसी
1: आपके शब्दों के चयन से और आपकी प्रस्तुति से।
0: बिल्कुल मैं अपनी बात को वही आगे ही
1: हाँ
0: बढ़ाने जा रहा था दीदी,
1: जी
0: कि ये जो सोशल मीडिया पर हमें सुविधाएं मिल गई हैं
1: हाँ हाँ
0: ये अच्छी बात है, ठीक
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: आप उसका

0: लीजिए, लेकिन अपनी जो लिखने बोलने और खुद से
1: हाँ
0: समझने की
1: जी
0: क्षमता
1: भाई
0: है
1: जी जी
0: वो कहीं ना खो दीजिए, इस
1: हाँ
0: बात का जरूर ध्यान रखिए।
1: ध्यान
0: यानी
1: रखिए।
0: कि कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है दीदी कि आप किताबें पढ़िए, पेपर पढ़िए
1: बिल्कुल
0: और लिखने का अभ्यास करिए,
1: अभ्यास कीजिए।
0: क्योंकि आप जैसे कि हम लोगों के समय दीदी इतना, जब हम लोग छोटे थे तो शायद आपको भी मालूम ही
1: हाँ
0: होगा
1: हाँ
0: कि
1: बिल्कुल
0: इतना सुविधा नहीं थी, तो
1: नहीं
0: हम लोगों को कुछ भी लिखना होता, चाहे वो निबंध हो चाहे वो पत्र लिखना हो, या तो हम लोग और भी किताबें खरीद कर
1: हाँ
0: लाते
1: लाते
0: थे,
1: थे
0: ग्रामर की किताबें व्याकरण
1: बिल्कुल
0: की किताबें अलग से, तो उस समय चीज़ों को देखकर तब लिखते थे और इस तरह हम लोग परीक्षा देते थे।
1: भैया। हम जानते हैं माँ क्या करती थी हमारी, कि वो हमेशा 1 घंटे शाम को, जब हम लोग स्कूल से लौट के आते थे, खाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट करते थे, उसके बाद माँ क्या करती, 1 घंटे हम लोगों को क्या करती, राइटिंग लिखने के लिए, यानी लिखे सुलेख लिखो, और शुद्ध शब्दों में सुलेख लिखो और श्रुत लेख लिखो, यानी इमला यानी डिक्टेशन। वो बोलती थी, पूरा वर्ड नहीं बोलती थी, पूरा सेंटेंस यानी पूरा वाक्य बोलती थी लिखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में
0: इससे क्या
1: हो।
0: होता है दीदी, ये
1: हाँ
0: हमारा ही अभ्यास होता है,
1: बिल्कुल
0: हमारी बेहतरी के लिए
1: हाँ
0: है। यानी कि
1: हाँ
0: बच्चों आप सुन रहे हैं ना, दीदी ने क्या बातें बताई
1: हाँ
0: हैं कि भाई अगर हो सके समय निकालिए,
1: हाँ
0: जैसा कि मैंने एक बार कहा कि आप किताबें पढ़िए,
1: बिल्कुल
0: उसमें से शब्दों को ढूंढ
1: हाँ
0: कर
1: ढूंढ के
0: अपनी डायरी में
1: लिखिए।
0: लिखिए और व्याकरण का अभ्यास करिए,
1: हाँ
0: पेपर पढ़िए और यहाँ तक कि अपना रेडियो सुनिए, रेडियो
1: हाँ
0: में भी आपको बहुत कुछ
1: बहुत
0: सीखने
1: सारी,
0: को मिल सकता है, अपना
1: और
0: कार्यक्रम
1: भैया ने
0: सुनिए।
1: एक टाइम मैनेजमेंट की बात की है, तो टाइम टेबल ज़रूर बनाइए, है
0: बिल्कुल दीदी,
1: ना।
0: इस तरह देखेंगे
1: हाँ
0: जब बच्चे अपना सब निर्धारित कर लेंगे, और निश्चित ही है जब उस तरह का वाक्य का प्रयोग करेंगे, उस तरह की भाषा का चयन करके लिखेंगे, परीक्षा देंगे या कहीं बोलेंगे, तो उसका प्रभाव अधिक
1: अधिक
0: पड़ेगा।
1: पड़ेगा
0: तो
1: बिल्कुल।
0: दीदी ये बातें तो बहुत हो गई और बच्चे अब सोच रहे होंगे कि अब कुछ संगीत की भी
1: बिल्कुल
0: बात हो जाए, गीत की
1: हो
0: बात हो जाए,
1: जाए।
0: तो एक
1: हाँ
0: प्यारा
1: हाँ
0: सा गीत बच्चों को सुना देते हैं।
1: जी।

0: तो भाई बच्चों, ये गाना था छुट्टी है, लेकिन भाई अभी दीदी बहुत से बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे
1: हाँ
0: हैं और
1: बिल्कुल
0: बहुतों के खत्म हो चुके
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: हाँ
0: तो उनके लिए थोड़ी बहुत छुट्टी तो ठीक है, खासकर संडे की आज की
1: संडे की
0: छुट्टी हो सकती है, क्योंकि किताबों से छुट्टी
1: कभी
0: उसे
1: नहीं
0: कुट्टी कभी नहीं करनी है। थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए आप कर
1: हाँ
0: सकते हैं
1: कर सकते
0: खेलिए।
1: हैं।
0: हम तो
1: हाँ
0: कहते हैं दीदी, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद
1: खेलना
0: भी
1: भी बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: है,
1: है बिल्कुल।
0: और इसके साथ साथ जो अभी हम लोगों ने बातें बताई, जैसे कि अभी देखिए अब तो त्योहारों का मौसम आ रहा है, यानी कि अभी कुछ दिनों बाद दशहरे शुरू हो जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: फिर उसके बाद दीपावली आ जाएगी,
1: हाँ
0: नवरात्र
1: हाँ
0: भी है इसी बीच, तो
1: हाँ
0: बच्चे एंजॉय करें
1: हाँ
0: लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि छुट्टी का जो आनंद है वो तो
1: वो
0: लेते रहें। ठीक
1: बिल्कुल,
0: है
1: क्योंकि देखिए जब वही बात फिर आती है दौड़ धूप के कि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। टाइम
0: जी।
1: टेबल के अनुसार निर्धारित कीजिए कि कब पढ़ाई करना है, कब इंजॉय करना है, कब थोड़ी सी टीवी देखनी है,
0: बिल्कुल,
1: कब
0: क्योंकि
1: फैमिली के
0: दीदी
1: बीच में बैठ के
0: अगर
1: थोड़ा बातचीत
0: किताबों से
1: करनी
0: पूरी
1: है।
0: तरह से छुट्टी हो
1: हाँ
0: जाएगी तो
1: हाँ
0: जब स्कूल खुलेगा या
1: हाँ
0: जाएंगे जब पढ़ाई, तब तो फिर आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं थी, अगर काश हम अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते तो
1: हाँ
0: हमें इतनी प्रॉब्लम ना
1: ना
0: होती या कठिनाई
1: होती
0: ना होती। तो भाई
1: बिल्कुल
0: बच्चे अच्छी तरह से बात समझ गए होंगे, और दीदी
1: हाँ
0: घड़ी इशारा कर रही है कि अपने कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हम बच्चों से अगले रविवार को बाल संघ कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संघ, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन संपन्न समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी,

0: और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैंखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैंखो की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर 4th स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartruhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from Lower House and 10 from Upper House, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. The Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of the 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali and classical

कलाकार होंगे ब्रजभान यादव और साथी सुशीला देवी। इसके अलावा सुभाष चंद्र यादव और साथियों के गाय लोकगीत भी श्रोता सुन सकेंगे। सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे ग्रामीण बच्चों के अपने कार्यक्रम बाल गोपाल से, जिसके अंतर्गत आज बच्चों में कलात्मक अभिरुचि के विकास द्वारा व्यक्तित्व का संवर्धन विषय पर नीता श्रीवास्तव की वार्ता सुनवाई जाएगी। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा। 6:30 ग्रामीण भाई अपने कार्यक्रम पंचायत घर में आज सुनेंगे जल संरक्षण की आवश्यकता विषय पर अंकित पटेल की वार्ता, साथ ही मिट्टी की जांच क्यों और कैसे इस विषय पर मनोज कुमार सिंह से जयकृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत भी ग्रामीण भाई सुन सकेंगे। साथ ही आनंद लेंगे फूलचंद और साथियों के गाए लोकगीतों का। सचिन कुमार के स्वर में भक्ति रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में।

और मनोज कुमार सिंह से जयकृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत भी ग्रामीण भाई सुन सकेंगे। साथ ही आनंद लेंगे फूलचंद और साथियों के गाए लोकगीतों का। सचिन कुमार के स्वर में भक्ति रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में 7:45 पर। श्रोताओं के पत्रों के उत्तर लेकर आएगा प्रोग्राम चिट्ठी आई है, जिसमें नेहा गुप्ता और वंदना राठौर श्रोताओं के पत्रों के उत्तर देंगी। रात 8:15 का समय होगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम का। 8:30 आज इतवार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे राजेंद्र कुमार की लिखी झलकी जादुई चिराग का डुप्लीकेट जिन। प्रस्तुति गजाला शहनाज की होगी। और रात 9:30 फिल्मी गजलों पर आधारित प्रोग्राम कहकशा सुनना मत भूलिएगा। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में आपको सूचना दे दें। सबसे पहली सूचना इस प्रकार है, चंचल चौहान उम्र 24 वर्ष, रंग सांवला, इकारा शरीर और चेहरा लंबा है। ये 11 मई 2026 को बरना थाना सराय ममरे से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। कमला शंकर चौहान पुत्र रामानंद, ग्राम बरना थाना सराय ममरीज, जनपद प्रतापगढ़। अगली सूचना इस प्रकार है, नाम संगीता, उम्र 37 वर्ष, कद 5 फीट के आसपास, इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। ये थाना नवाबगंज से लापता हो गई हैं, जैसी कि सूचना प्राप्त हुई है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। राम अभिलाष निवासी ब्रह्मरोली, साथ ही फोन नंबर जो दिया गया है उसे भी आप नोट कर लें, 9161976446। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9161976446। और इस वक्त की जो आखिरी सूचना है वो इस प्रकार है, बबीता पुत्री नींबूलाल सरोज, उम्र 18 वर्ष 7 माह के आसपास, कद 5 फीट 1 इंच, इकारा शरीर, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। ये 11 जुलाई 2026 को रात्रि 12 बजे के आसपास ग्राम महेवा मोहनपुर थाना हथिकवा जनपद प्रतापगढ़ से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। श्रीमती निर्मला देवी पत्नी नींबूलाल सरोज निवासी ग्राम महेवा मोहनपुर थाना हथिकवा जनपद प्रतापगढ़। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का राग भीम पलासी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का राग भीम पलासी में ख्याल गायन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। विशेष खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत। तो नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि हम गाने सुनते हैं सफर में या फिर कोई काम करते वक्त या फिर यूं ही बस मूड सही करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफर खत्म, गाने का असर ख़त्म, काम ख़त्म, भूल जाते हैं उस गाने को, मूड अच्छा हो गया उसके बाद हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या सुना और क्या नहीं सुना। लेकिन कुछ गीत, कुछ संगीत ऐसे होते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। कभी कोई धुन हमें आसमान की सैर करा देती है, तो कभी कोई गीत बीते हुए कल की खिड़की खोल देता है, और कभी कोई आवाज़ बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। आज का ये संगीत सफ़र भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ मोहब्बत है, मौसम है, यादें हैं, सपने हैं और जिंदगी को थोड़ा खुलकर जी लेने की एक खूबसूरत वजह भी है। तो आइए आज के इस संगीत में सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ख्वाब से जिसमें पंख तो नहीं मगर उड़ने की तमन्ना जरूर है। सेहरा फिल्म का गाना है, हसरत जयपुरी का गीत है, रामलाल का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की।

बड़ा ही खूबसूरत मैसेज दिया इस गाने ने, बिल्कुल परीलोक में जाने के जैसे महसूस होता है। काश ख्वाहिशों के भी पंख होते, फिर शायद दूरियां कोई मायने नहीं रखती, जिसे दिल चाहता उसके पास उड़कर चले जाते। लेकिन जिंदगी की एक खूबी ये भी है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोकना तो चाहते हैं मगर रोक नहीं पाते। वक्त हाथ से रेत की तरह फिसलता रहता है। आज जो पल हमारे पास है, कल वो एक खूबसूरत याद बन सकता है। इसी एहसास को आवाज देता है ये अगला गीत, एक ऐसा गीत जिसे सुनते हुए लगता है जैसे जिंदगी खुद हमसे कह रही हो कि जो पल है उसे जी लो, क्योंकि आने वाला पल क्या कुछ कह जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल गोलमाल फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गुलजार का गीत है, आर डी बर्मन का संगीत, आवाज किशोर कुमार की।

बिल्कुल श्रोताओं, यही तो जिंदगी है। एक पल ख्वाब, दूसरे पल याद। कभी कोई चेहरा सामने आता है तो दिल में बस जाता है, और कभी किसी की एक नजर दिल का पूरा चैन सुकून छीन लेती है। और जब आसमान पर बादल हो, हवा में ठंडक हो और दिल में किसी के प्यार की दस्तक, तो फिर कोई दीवाना क्यों ना हो जाए। चलिए अब चलते हैं कश्मीर की वादियों की तरफ, जहां बादल भी जैसे इश्क की भाषा बोलते हैं और दिल भी जरा बेखबर सा हो जाता है। ओपी नैयर का गीत और संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम कश्मीर की गली।

कश्मीर की उन वादियों से निकली यह धुन जैसे आज भी अपने साथ एक पुराना खत लेकर आती है, जिसमें मौसम का जिक्र कम और मोहब्बत का जिक्र ज्यादा है। मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज है ना, कभी इंसान को दीवाना बना देती है, कभी शायर, और कभी बस इतना कहने पर मजबूर कर देती है कि तुम सामने हो तो दुनिया की या किसी भी चीज की जरूरत ही आखिर क्या है। अब अगली पेशकश में जरा ठहरिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मोहब्बत नहीं है, इसमें एक नजाकत है।

क्या कहने उस अंदाज के, क्या कहने उन गीतों के, और क्या बात उन धुनों की जिनमें वो ताजगी रहती है कि हर नई पीढ़ी उसे अपने तरीके से अपना लेती है। और संगीत की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जमाना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लोगों का नजरिया बदल जाता है, उठना बैठना बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, लेकिन दिल की पसंद बहुत कम बदलती है। और अब आज के इस खूबसूरत सफर को थोड़ा और रंगीन, थोड़ा चुलबुला, क्योंकि इस जिंदगी में अगर थोड़ा इश्क है, थोड़ी शरारत है, तो थोड़ा देसी ठाट भी होना चाहिए। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे गीत के लिए जिसमें अंदाज भी है, मस्ती भी है, और देसी रंग की अपनी एक अलग चमक भी है। जी हाँ, धर्मकांटा फिल्म का गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत, नौशाद का संगीत, आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

तो श्रोताओं, आज के इस सफर में हमने ख्वाबों के पंख लगाए, आने वाले पल को महसूस किया, कश्मीर के बादलों के साथ झूला झूला, मोहब्बत के अंदाज पर मुस्कुराए और आखिर में देसी रंग में थोड़ा झूम भी लिए। शायद संगीत की ही खूबसूरती है कि वो हमें हमारी उम्र से निकालकर हमारी यादों में पहुंचा देता है। जी हाँ, इन्हीं खूबसूरत धुनों और यादों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ये सफर आपने तय किया अतुल यादव के साथ। फिर मिलेंगे किसी और गीत, किसी और कहानी और किसी और खूबसूरत संगीत सफर के साथ। नमस्कार।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर

0: जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार आज का अंतिम दिन है। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the journey of Viksit Bharat will be built on the strength of India's institutes, MSMEs and startups. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India, that is ICSI, in New Delhi today, Mr. Radhakrishnan emphasized that the nation cannot progress without gaining the trust and confidence of the investors. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world, while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements. Talking about ICSI, Mr. Radhakrishnan lauded the Institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met United States Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. In a social media post, Dr. Jayashankar said they discussed ways to further strengthen the security partnership and maritime cooperation between India and the United States in the Indo-Pacific region. Delhi police has transferred complaints of alleged sexual harassment made by 3 female journalists against police personnel to the crime branch for a fair and impartial inquiry. The alleged incidents took place yesterday during a protest in the New Delhi area where police personnel were deployed to maintain law and order. According to Delhi police, the New Delhi district received the complaints and handed them over to the crime branch for further investigation. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October.

0: में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं, जो उनकी गैर मुतजलजल लगन और अवामी खिदमत के ज़रिए कौम की खिदमत के मंत्र से वाबस्तगी से मुमकिन हुआ है। खिदमत और गुड गवर्नेंस के इस विज़न के चलते हुए हुकूमत 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत कर रही है। आज हमारी खसूसी सीरीज़ में हम इस बात पर बात करेंगे कि बराह रास्त फ़ायदे की मुंतकली के ज़रिए इस अज़्म को हकीकत में कैसे तब्दील किया गया है।
1: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
2: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
1: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
0: वाराणसी ब्लॉक टीचर्स हलके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने कल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके साथ 6 दीगर उम्मीदवारों ने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। नामजदगी की जगह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस दरमियान डॉक्टर शारदेंदु कुमार त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल के गोरखपुर फैजाबाद ब्लॉक टीचर्स हलके इंतखाब से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने कागजात दाखिल किए। भारत ने कल जापान एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 5 तिलाई, 2 चांदी और 2 कांस्य के तमगे जीते। मजीद तफसीलात हमारे नामा निगार से।
3: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के अनुरोध पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो अनुरोध।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: जिंदगी में किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, निभा सको तो निभाना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। नमस्कार मैम, हम बचन्या सरोज बोल रहे हैं, ग्राम सिलगढ़ टूरी पोस्ट मचेया हरदोपट्टी जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी बचन्या जी, बताइए गीत कौन सा सुनेंगे?
1: जी मैम, मूवी का नाम है अलग अलग, गाने के बोल हैं, कभी बेकसी ने मारा कभी बेखुदी ने मारा।
0: जी जी, किशोर कुमार की आवाज़ में अलग अलग फिल्म के गीत की फरमाइश की है बचन्या सरोज जी ने, तो सुनवाएं आपको गीत।
1: जी मैम, हम अपने दोस्त के लिए सुनना चाहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है आदरणीय सुनील कुमार यादव, और हमारी वाइफ हैं, इनका नाम है

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: हम राकेश सिंह भैया मेजर प्रयागराज से।
0: जी राकेश सिंह जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: प्यार झुकता फिल्म का कोई सा गाना सुनेंगे?
0: प्यार झुकता नहीं फिल्म का कोई भी गाना। तो कोई गाना आपको याद आ रहा है ऐसा कि जिसे आप बार बार सुनना चाहते हो?
1: हाँ, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में है।
0: हाँ हाँ, इसमें कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में भी गाना है, टाइटल सॉन्ग भी है इसमें। तो आपने जो गीत पसंद किया है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, वो हम आपको सुनवाते हैं। आपको नाम तो नहीं लेने हैं?
1: जी मैडम, शारदा प्रसाद जी हैं
0: जी,
1: अशोक कुमार जी
0: जी,
1: और सभी से काम करेंगे।
0: तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। तुम

0: नमस्कार
1: जी अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनेंगे
0: आप? कैसी है आकाशवाणी प्रयागराज के सदस्य
1: जी? बिल्कुल ठीक है, और इस समय आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके लिए। तो बताइए कौन सा फरमाइश है आपकी?
0: फिल्म प्रेम कहानी का टाइटल है, प्रेम कहानी में एक लड़का
1: जी जी
0: होता
1: जी
0: है।
1: जी, तो आपकी इस पसंद को हम सुनवाते हैं अशोक जी, लीजिए सुनिए।
2: सुनो

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते
0: नमस्कार जी।
1: मैम, रोशनी बोल रहे हैं, राम भोपिया मॉल दिया तेरे प्रताप।
0: जी, रोशनी जी बताइए, कौन सा गीत चुना है आज आपने?
1: मैम, चाल जाए
0: चालबाज फिल्म का। ये श्रीदेवी की फिल्म थी जिसमें इन्होंने डबल रोल किया था जी। इसका कौन सा गाना है?
1: तेरा बीमार मेरा दिल।
0: सही बात है, जब बीमार हो जाए तो जीना मुश्किल हो ही जाता है।
1: जी,
0: स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आजकल बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो रहा है और सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, वरना सर्दी जुकाम जो हो रहा है आजकल वो काफ़ी दिनों तक ठीक ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वायरल तो हर जगह फैला हुआ है, ये सीज़न ही कुछ ऐसा है। सब लोग ठंडा पानी पी लेते हैं फ्रिज का, इसके बाद गला पकड़ लेता है।
1: सभी लोग ध्यान रखें इस मौसम का,
0: जी
1: ठंडा पानी ना पिए।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रोशनी जी, आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय कार्यक्रम चल रहा है हेलो अनुरोध, और ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को दिन में 1:15 पर प्रसारित किया जाता है। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: गुतने कुंडा प्रतापगढ़ गांव, मेरा राजेंद्र कुमार कहलाता हूँ। करके कार्यक्रम में अपना कर्तव्य अपने ही फरमाइश द्वारा सुनने वाली श्रोताओं को पसंदीदा गीत सुनवाते।
0: तो भाई राजेंद्र जी का कौन सा है पसंदीदा गीत, ये भी बताइए।
1: फिल्म का नाम है अजीत
0: जी,
1: और इसके बोल है डाली है सवेरे वाली गगन रंगे तू मेरे मन का।
0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गाना है।
1: जी जी मैम जी।
0: तो राजेंद्र जी नाम तो नहीं लेना चाहते किसी के?
1: हाँ मैम, हमारे प्रसाद प्रजापति विकास सड़क ड्राइवर जो है नितेश आर्या और प्रभाकर तिवारी और भी जितने भी श्रोता है सुनने वाले कार्यक्रम को सभी को ये गीत दे देती है हमारी तरफ से।
0: जी तो अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है अभी तो जी ले, लीजिए सुनिए।

0: गांव दुर्गापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति प्रयागराज से निवासी हूं और वर्तमान में बात कर रहा हूं गोवर्धन रोड मथुरा से परम आदरणीय मधु दीदी को करता हूं सादर नमस्कार।
1: नमस्कार शारदा प्रसाद प्रजापति जी, मथुरा से हमारे साथ हैं। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी गीत की फरमाइश करूंगा और अपनी पसंद भी सुनूंगा, लेकिन हमारे जो रेडियो श्रोता है बहुत ही हमें स्नेह प्रेम और करते हैं और हमें प्राय प्राय याद करते हैं। मैं उन्हें याद करते हुए करना चाहता हूँ जिसमें कि प्रेमचंद यादव हंडिया से हैं, प्रभाकर जी हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं और हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बेटी है शिवानी, जो हमें प्राय प्राय याद करती है, अपने बड़े अच्छे शब्दों में मेरी तारीफ करती है, उसे मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर,
1: जी
0: गीत के बोल हैं, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले। ये गीत सुना दीजिए इन सभी दोस्तों के लिए।
1: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: सुरेंद्र यादव, माता जलालपुर
0: मऊ आईमा से सुरेंद्र जी ने कॉल की है। तो सुरेंद्र जी कौन सा गीत सुनेंगे?
1: नदिया के पार।
0: नदिया के पार।
1: और जी, और कोई दिशा में लेके चली गई
0: बटोहिया।
1: जी
0: तो ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है नदिया के पार फिल्म का।
1: जी मैम।
0: तो चलिए सुरेंद्र जी आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: proudly signs off from Aichi Nagoya 2026, etching another glorious chapter into its sporting history. Komati Parikh, Akashwani News, Delhi.
1: Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today released two male great Indian bustards into the wild at Sam in the desert national park at Jaisalmer in Rajasthan. In a social media post, the Union Minister said that this landmark success has been made possible by the nearly decade-long unwavering dedication of India's scientists, researchers and ground staff. He added the release marks an important transition in India's Great Indian Bustards Conservation Programme. Mr. Yadav also thanked Prime Minister Narendra Modi for his support in enabling the scientific community to work towards the conservation. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President C.P. Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Rajinagar Assembly by-elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sada. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
3: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
2: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत ITI में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए

0: जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
2: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
3: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
2: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी।

0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के बियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ 4th स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु

0: पुदुचेरी और कराईकाल में अगले दो दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्रिजभान यादव और साथियों के स्वर में ये लचारी।

सुभाष चंद यादव और साथियों के सुर में अभी आप दादरा सुन रहे थे। इसी के साथ लोकगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं, ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवाओं में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: ललन भैया।
2: हाँ बजू भैया।
1: हम कहे देखा अपन चुन्नू मुन्नू हरे ना,
2: हाँ।
1: इस समय भैया पढ़ाई लिखाई में लगा बाटे ना, और साथे साथे खेल कूद में हा?
2: लगा है।
1: कहे से देखा 2-3 दिन से छुट्टी भी रही जवन बा,
2: हाँ, हाँ,
1: तो भैया हो खेल कूद में लगा बाटे ना, और पढ़ाई लिखाई भी जरूरी बा, कहे से आवे वाले अर्ध वार्षिक परीक्षा भी उनकर होए जवन छमाही बोला जात भैया, तो ओकर तैयारी भी करत बाटे। एक बात भैया ललन की पढ़ाई लिखाई जवन तभी अच्छा रहे जब लड़कियाँ स्वस्थ रही हैं।
2: एकदम सही बात।
1: स्वास्थ्य का संबंध कहूँ न कहूँ साफ सफाई से जरूर बाह भैया।
2: तो बहुत ही अच्छी बात कहे हो बजू भैया कि अगर साफ सफाई बढ़िया रहे, लड़कनों अपने आसपास अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से साफ सफाई रखी, और जौन कुछ कूड़ा कचरा बा जैसे कक्षा में ही कोनो पन्ना उन्ना जैसे फट गया, कुछ पेंसिल वेंसिल कुछ टूट गया, तो ओके कूड़ेदान में डल ही,
1: हाँ।
2: और साफ कपड़ा पहन ही, अपने आसपास का वातावरण सब अच्छे से साफ सफाई से रखी, और हाथ अच्छे से धुल के खाई ही, तो स्वस्थ रही, कोनो दिक्कत बिरामी ना हो उनके, और अच्छे से रही
1: भैया। हो साफ सफाई में अपने साथ साथ अपने आसपास का वातावरण का भी साफ सफाई की सब लड़कियन के आदत बनावे चाहे, अपने साफ सफाई में मान लो कपड़ा वड़ा ओढ़ना अगर साफ करे लाए बैठे तो अपन खुद साफ कर लें, नाखून कटा रहा के चाहे, भैया शौच जाए तो जरूर साबुन से हाथ धो,
2: बहुत जरूरी बा, बहुत जरूरी बा। और स्वच्छता भैया लड़कन में कहा था ना कि बचपन से ही अगर आदत में डलही ना तो उनकर जीवन बहुत व्यवस्थित हो।
1: सही कहे भैया,
2: और
1: साफ सफाई करें, साफ सफाई से खाना पीना कहीं था भाई, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे,
2: स्वास्थ्य भी अच्छा
1: रहे, हर चीज आदत बनवाई चाहे, ये नहीं कि रोज टोके के पड़े। अब जैसे सवेरे उठा तहन मुंह को दांत सफाई ना कहे तो सबसे ज्यादा बीमारी वही से आवत बा, ज्यादातर लड़कियन देखे में आवत दांत सफाई में आनाकानी करत हैं भैया, रोज नहाते नहीं सही से, तो इस सब के भी आदत बनाओ बहुत जरूरी,
2: बहुत जरूरी बा, नहाब और साफ सफाई तो बहुत जरूरी बा। अच्छा एक बात और बा कि अगर बच्चा लोग अपने आसपास के जो उनकर दोस्त मित्र यार मित्र मंडली बा,
1: हाँ हाँ,
2: सब में एक तरह का ऐसा वो संदेश दें कि साफ सफाई के प्रति कितना जरूरी बा काम करब, और अगर स्कूल भी जोन है जो विद्यालय हैं अगर साफ सफाई के प्रति एकाक कोनो टीचर लोग प्रेरणा देते हैं अपने लड़कन के,
1: सही
2: कहे, और जो जोन कुछ है लड़का लोग कक्षा में तो वो लोग उसे सीखी, और प्रतियोगिता के द्वारा भी यह तरह का कार्यक्रम किया जा सकता था कि लड़कन के अंदर अभिरुचि पैदा हो।
1: सही कहे, अभिरुचि हो, उनका रुचि हो साफ सफाई से रहा में भाई, स्कूल में जैसे बताया ना कि पन्ना उन्ना लड़कियां फाड़ के फेंक देते हैं या पेंसिल का कहते हैं बनवा थे तो वही कूड़ा गिराए देते हैं, तो वो सब एक जगह इकट्ठा रखे ले जाए कूड़ेदान में डालें तो साफ सफाई रहे भैया हो, और का कहा थीन भैया हो, ये सब सब में आदत बने चाहे, हर जगह पे साफ सफाई, यह ना है कि लिखाई पढ़ाई में भी देखा तो कुछ लड़कियन कर जौन अच्छर ऐसा लिखा थी वही कुल सियाहू चुगाई देते, तो वहूँ भी साफ सफाई,
2: वो भी साफ सफाई, और
1: काफी साफ सुथरी लिखी रहा तो अच्छी लागत,
2: अच्छी लागत था, उनके परीक्षा में नंबर अच्छा मिला था, साफ सुथरा लिखी अच्छे से लिखी था। अच्छा बजू भैया एक वार्ता बा, बच्चों में कलात्मक अभिरुचि के विकास द्वारा व्यक्तित्व संवर्धन,
1: भाई देखा ये बड़ी निक वार्ता बा, कहे से चुन्नू मुन्नू हरे चित्र से ज्यादा समझते, नानन के तो देखा चित्र बनवा ही लागत कुछ न कुछ, चाहे दिवाली पे चाहे जहाँ बैठा रहा था कच्ची माटी में कुछ न कुछ बनवा थे, तो उसे उनका सीख भी मिला
2: निश्चित रूप से, कुछ कलात्मक तरीके से अगर उनके बतावा समझाओ जाए तो उनके
1: दिमाग में बैठा था,
2: जल्दी दिमाग में बैठा था, सही बात कहे आप। तो नीता श्रीवास्तव की वार्ता बा, आ वही अपने चुन्नू मुन्नू के सुनावा जाए।
1: हाँ सुनवाए दे भैया, सुनवाए दे।
3: प्यारे बच्चों जैसा कि तुम जानते हो हमारा जीवन कला से जुड़ा हुआ है, कला हमारे जीवन का

अभिन्न हिस्सा है। अब देखो, जिन घरों में हम रहते हैं उसे बनाने की कला है, जिसे वास्तुकला कहते हैं, और जो भोजन हम करते हैं उसे पाककला कहते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं वो सिलाई कढ़ाई बुनाई कला के अंतर्गत आती है। कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, उसे पॉटरी सेरेमिक और टेराकोटा कला कहते हैं। डलिया डलवों और सूप आदि को बुनने की भी एक विशेष कला होती है। पूजा घर में मूर्तियां तो देखी ही होंगी, वो भी मूर्तिकार ही तो बनाते हैं। शादी ब्याह त्योहारों व्रत पूजन के समय में तुमने देखा होगा कि दीवारों या जमीन पर अल्पना रंगोली कोहबर चौक पूरना आदि की परंपरा रही है, और ये भी कला का ही नमूना है। और फिर तुम्हारे खेल खिलौने, पतंग कागज की नाव उड़ाने वाला जहाज चरकी मुखौटे कठपुतलियाँ, ये सब भी तो कला के ही नमूने हैं। और जो तुम किताबें पढ़ते हो कहानियों की रंग बिरंगी चित्रों वाली, वो चित्र तुम्हें कितना भाते हैं। तुम्हारे विद्यालय में कठिन विषयों को चित्रों के माध्यम से कितना आसानी से समझा दिया जाता है। तो ये रही कला एवं शिल्प की हमारे जीवन में उपयोगिता। घर की सुरुचिपूर्ण साज सजावट के साथ साथ उपयोग में लाने वाली वस्तु में भी हम कला के उत्कृष्ट नमूने देख सकते हैं। समय का सदुपयोग होता है, हस्त कौशल विकसित होता है, तो वहीं जीविकोपार्जन में भी मदद मिलती है। बच्चों, अब हम चित्रकला की बात करेंगे और देखेंगे कि चित्रकला तुम बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक है और इसका खुद का विकास कैसे हुआ, ये भी तुम्हें बताती हूँ। पाषाण युग का नाम तो तुमने सुना ही होगा कि आदिमानव किस प्रकार गुफाओं में रहते थे, कंदमूल फल खा के जीवन यापन करते थे। जंगली जानवरों का भय उन्हें सदा रहता था। इसी भय ने उन्हें आखेट करना सिखाया, पत्थर के नुकीले औजार बनाना सिखाया। तो उस समय के इतिहास की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई होगी, मेरे बच्चों? वहाँ गुफा में बनाए गए चित्रों के द्वारा। तब भाषा का विकास भी नहीं हुआ था। आदि मानव अपने अनुभवों को चित्रों के द्वारा वर्णित करते थे, जिसके वो तमाम उदाहरण आज भी मौजूद हैं। उन चित्रों में आखेट के दृश्य, जंगली जानवरों के चित्र, शहद निकालने की प्रक्रिया के चित्र, उत्सव नृत्य आदि के दृश्य भी मौजूद हैं। जाहिर है कि नुकीले पत्थरों से बनाए गए इन गुहा चित्रों को बनाने के लिए कला की कोई विशेष शिक्षा तो प्रदान की नहीं गई होगी। आदि मानव ने खुद को अभिव्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा लिया, और ना ही इसके पीछे कौशल प्रदर्शन का भाव रहा होगा। तो चित्रकला खुद के भय उल्लास रोमांच आदि भावों अनुभवों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम बनी। कभी छोटे बच्चों को दीवारों पर चौक कोयला ईंटा पेंसिल से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते देखा है? कभी वो रेखाएं कुछ आकार ले लेती हैं और कभी यूं ही उलझी सी दिखती हैं, और यहीं से बच्चों की अभिव्यक्ति की शुरुआत होती है। बच्चे दुनिया देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एहसास भी कर रहे हैं, पर भाषा का ज्ञान तो सीमित है। वो बता ही नहीं सकते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये आड़ी तिरछी रेखाएं ही उनकी अभिव्यक्ति है, और हमें इस स्वाभाविक प्रक्रिया को बाधित नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ये परिष्कृत होने लगती है और सुंदर चित्रकला का उद्गम हो जाता है। और अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, वे चित्रकला को अनुपयोगी और समय की बर्बादी समझने लगते हैं। यहाँ पर बच्चों में बताना चाहूँगी कि मानव मस्तिष्क असीम है। मानव मस्तिष्क का दायां हिस्सा कल्पना का और सृजनात्मकता का होता है, तो बायां हिस्सा तर्क का। हमें दोनों हिस्सों का भली भांति उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी असीम संभावनाएँ हैं। इटली के महान चित्रकार लिनार्डो डा विंची, जिनकी प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा विश्वविख्यात है, वो एक वैज्ञानिक भी थे। भौतिक विज्ञान के अलावा शारीरिक विज्ञान के भी ज्ञाता थे। उन्हें पता था कि यदि एक चित्र में मुस्कुराहट दिखानी हो तो कौन कौन सी मांसपेशियां हरकत में आ जाएंगी। इसी प्रकार से हमारे देश में अजंता की गुफाएं, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हैं और जो विश्वविख्यात हैं अपनी उत्कृष्ट कला के लिए। पर बच्चों, उतनी अंधेरी गुफाओं में इतने सुंदर चित्र कैसे बनाए गए होंगे? इसका मतलब है हमारे पूर्वज प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानते होंगे और उसके प्रयोग से चित्र बनाने में मदद मिली होगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार मानव मस्तिष्क काम कर सकता है और कला किस प्रकार से हमारे मानसिक विकास में सहायक है। चित्रकला के तत्व हैं बच्चों रंग आकार संयोजन निरीक्षण तुलना अनुपात आदि, और ये सब एक बच्चा अपने अनुभवों और प्रयोगों से खोजता है। अपने मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का समुचित प्रयोग करके एक ओर कल्पना करना और एक ओर खोज करना। चित्रकला में कुछ विशेष प्रभाव देने के लिए वह जोखिम उठाता है। तरह तरह के रंगों को मिश्रित करना, रंजन क्रिया के लिए विभिन्न माध्यमों का चुनाव करना, कभी चाकू

कभी डोरी, पत्तियां, टहनियां, टूथब्रश आदि साधनों प्रयोगों द्वारा चित्रकारी करना, ये सब उसकी मानसिक शक्तियों के फलीभूत करती हैं। कभी कभी मनचाहा प्रभाव ना भी आ पाए तो भी वो खुद को गलतियां करने का और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करता है। और इन सब से जो गुण विकसित होता है बच्चों, वो है धैर्य, मनोयोग, सतत प्रयास, साहस और सकारात्मक सोच। तो बच्चों, जिस चित्रकला जिस प्रकार से मानसिक विकास में सहायक है, संवेगात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण है। भाषा पे भली भांति अधिकार होने के बावजूद कुछ बच्चे अपनी भावनाओं को चित्रकारी द्वारा अभिव्यक्त करने की वरीयता देते हैं। उनकी रेखाएं खींचने की गति, लय, गहरापन एवं दबाव से ही जाना जा सकता है कि वो किस भावात्मक दौर से गुजर रहे हैं। हर रेखा की अपनी एक अलग विशेषता होती है। जैसे कोणीय गहरे दबाव से खींची गई रेखाएं तनाव दर्शाती हैं, तो वहीं लयबद्ध गतिशील रेखाएं विकास और प्रसन्नता को दिखाती हैं। इसी प्रकार टूटी फूटी अविकसित हल्की रेखाएं द्वंद और आत्मविश्वास की कमी को दर्शाती हैं। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता, बस वो अपने संवेगों को अभिव्यक्त कर रही होती हैं। अधिकतर अंतर्मुखी बच्चों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का चित्रकला सशक्त माध्यम बनकर आती है। इसी प्रकार रंगों का भी अलग मनोविज्ञान है। लाल, नारंगी, पीले रंग जोश, वीरता, प्रेम, प्रकाश का प्रतीक है, तो नीला हरा रंग शांति, सौम्यता, समृद्धि का प्रतीक है। बच्चा किसी विशेष भाव, विशेष रंगों का चुनाव करता है अपनी व्यक्तिगत रुचि और मौलिकता के साथ। रंग फैलाने का तरीका, विषय का चयन, ये सब भी उसके संवेगों को निर्धारित एवं संतुलित करते हैं। चित्रकला और मनोविज्ञान का गहरा संबंध है। इस प्रकार से चित्रकारी करके बच्चा असीम संतोष, आनंद और आत्मविश्वास से भर उठता है। चित्रकला तनाव मुक्त होने का सशक्त माध्यम है। तो बच्चों, जब आप अपने मन का कर लेंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, तभी तो दूसरे विषयों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। बच्चों, जैसे शिल्प हाथों द्वारा संचालित होने वाला हुनर है, चित्रकला हृदय से संचालित होती है। यह तभी बिना किसी लाभ हानि के स्वप्रेरणा से स्वांतः सुखाय की ओर अग्रसर होती है, परंतु जब रचना तैयार होती है तो सामाजिक रूप से मान सम्मान सराहना दिला ही देती है। तो ये था चित्रकला द्वारा बच्चों का सामाजिक विकास। आप कुछ विशेष माने जाने लगते हो तथा आप में भी ये गुण विकसित होने लगता है कि आप दूसरों की विधाओं की सराहना कर सको। आपको पता चलता है कि संगीत, नृत्य, काव्य, इन सब के लिए भी कितना अभ्यास, साधना की जरूरत होती है। आप कलाओं का आदान प्रदान करने लगते हो, संवेदनशील बन जाते हो। ये सूक्ष्म कलाएं आपको गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आप चित्रों के माध्यम से भी समाज हित में कार्य करने लगते हो, जैसे वृक्ष बचाओ, बेटी बचाओ, बिजली, तेल बचाओ, इन सब विषयों पर संदेशात्मक चित्रों द्वारा आप समाज को जागरूक करते हो। इस प्रकार से आप में अनुशासन के गुण भी विकसित हो जाते हैं और आप सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक बन जाते हो। कई मामलों में देखा गया है, यदि बच्चों में सृजनात्मक गुण विकसित ना हो तो वह विपरीत परिस्थितियों में आत्मघाती या विध्वंसक बन जाता है। वह संवेगों को नियंत्रित ही नहीं कर पाता और समाज में सम्मान भी नहीं पा पाता। तो बच्चों, जब हम चित्रकारी करते हैं तो मस्तिष्क, हृदय, आंखों और हाथों का आपसी तालमेल बैठता है। ये हमारे शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी पराकाष्ठा तो आप तब देख सकते हो जब कोई दिव्यांग अपने पैर और मुंह की मदद से चित्र बनाता है, हाथ के ना होने का अभाव भी नहीं दर्शाता। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो वह कौन सी प्रबल आत्मशक्ति है जो शारीरिक सीमाओं के पार चली जाती है? बच्चों, चित्रकारी बहुत बड़ी चिकित्सा है। वह आपको प्रफुल्लित और स्वस्थ रखती है। आप घंटों एकाग्र होकर साधना में लगे रहते हैं और वो भी बिना थके। और एक बात बता दूं बच्चों, कि कला सृजनात्मकता के अभाव में ही फलीभूत होती है। आवश्यक नहीं कि महंगी महंगी चित्रकला सामग्री खरीदकर ही आप उत्कृष्ट रचना कर सकते हैं। अब देखिए ना, बिहार की मधुबनी कला को विश्व प्रसिद्ध करने के लिए सीता देवी, जगदम्बा देवी जैसी चित्रियों का कितना हाथ रहा है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। और साधन वही रंग बनाने के लिए, फूल, पत्ती, घास का रस निकाल के, बाह्य रेखाओं के लिए काजल का प्रयोग करके। इसी प्रकार से महाराष्ट्र की वर्ली लोक कला, जो मात्र गेरू से बनाई जाती है, उसके आकार इतने प्रचलन में हैं कि वस्त्रों, चाय के प्यालों, गमलों, जूट के बैगों और अन्य वस्तुओं में प्रचुर मात्रा में प्रयोग हो रहे हैं। तो बच्चों, जब आपको बहुत मन कर रहा हो चित्रकारी करने का, तो सामान के अभाव को मन में मत विचारिएगा। कैलेंडर के पीछे का सफ़ेद हिस्सा ले लीजिए, रंग बिरंगी पुरानी पत्रिकाओं के कागज लेके फाड़ फाड़ के कोलाज चित्र बना सकते हैं। खाने वाले लाल पीले सस्ते रंगों से पुराना अखबार रंग के उनसे फूल बनाए जा सकते हैं।

0: सूखी टहनियां, भुट्टे के पत्तों, छोटे छोटे पत्थरों, सीप, इमली के बीजों की मदद से कोई कलाकृति बना सकते हैं। तो बच्चों, कोई वस्तु फेंकने से पहले परख लें कि इससे क्या बन सकता है। और इसी के साथ मैं अनुमति लूंगी, साथ ही आप बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल समुचित और कलात्मक विकास के लिए। आपके अंदर कलात्मक अभिरुचि का विकास हो और व्यक्तित्व का संवर्धन करके आप राष्ट्रहित में संलग्न हो सकें, यही मेरी आपसे प्रार्थना।
1: हाँ भैया लल्लन, आई देखा हो अपने लड़कियन गदेलन सुनत रहे कि बच्चों में कलात्मक अभिरुचि के विकास द्वारा व्यक्तित्व का संवर्धन। तब देखा चले कि भी बेला हो गया, लड़कियन से विदा ले जाए। लड़कियन हो, जय हिंद।
2: अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के

0: अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों. आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो युवाणी. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या द्विवेदी.
1: और मैं हूं पूजा यादव. देखिए, जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त होना ही चाहिए. जैसे किसी अपने से बात करना, प्रकृति को महसूस करना और उन बेजुबान जीवों के लिए थोड़ा सा सोचना जो हमारी दुनिया का उतना ही हिस्सा है जितने हम.
0: बिल्कुल पूजा, वैसे आज हमारी लाइफस्टाइल को देखें ना तो लगता है कि हम लगातार किसी ना किसी चीज़ के पीछे दौड़ ही रहे हैं. सुबह उठते ही मोबाइल आ जाता है हाथों में, तो फिर ऑफिस जाना होता है, कॉलेज, पढ़ाई, ट्रैफिक, मीटिंग्स, असाइनमेंट्स और ना जाने कितने सारे काम. और दिन खत्म होते होते पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कब निकल गया.
1: लेकिन इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की अपनी खूबसूरती भी है. आज हमारे पास दुनिया से जुड़ने के कितने सारे साधन हैं. हम घर बैठे कुछ नया सीख सकते हैं, किसी दूर बैठे दोस्त से बात कर सकते हैं, नई जगह को जान सकते हैं. मतलब कि तकनीक की मदद से कई मुश्किल काम बहुत आसान हो गए हैं.
0: और शायद आज की पीढ़ी की सबसे खूबसूरत बात भी यही है पूजा, कि हम चीज़ों को लेकर सवाल पूछते हैं. हम सिर्फ ये नहीं पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा कुछ क्यों है, हम ये भी पूछते हैं कि इससे बेहतर क्या बनाया जा सकता है.
1: लेकिन दिव्या, इस तेज जिंदगी के बीच एक चुनौती भी है. हम कई बार अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना भूल जाते हैं. जैसे सुबह घर से निकलते वक्त सड़क के किनारे बैठा कोई पपी हो, पेड़ पर बैठी चिड़िया या आसमान में उड़ते पक्षी, ये सब हमारी डेली लाइफ और हमारी ही दुनिया के हिस्सा हैं. लेकिन हम शायद ही कभी रुककर इन्हें देखते हैं.
0: लेकिन पूजा, याद करो, अगर कभी हम इसे मुड़कर देख लेते हैं या हम इन पर कभी ध्यान दे लेते हैं तो वो हमें कितना अच्छा महसूस करवाते हैं ना. कोई छोटा सा पपी अगर आपके पास आकर पूंछ हिलाने लगता है, स्ट्रीट डॉग आपके पास आके आपके से खेलने लगता है तो कितना अच्छा महसूस होता है. कोई बिल्ली आपके पैरों के पास आकर बैठ जाती है या सुबह सुबह किसी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है. ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे जो जीव हैं वो हमारी ज़िंदगी को और कितना बड़ा बना देते हैं, कितना खूबसूरत बना देते हैं ना.
1: यकीनन, देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि जानवर भले ही बोल ना सके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी महसूस नहीं करते या उनके पास भावनाएं नहीं हैं. देखिए, वो भी डरते हैं, खुश होते हैं, अपनापन महसूस करते हैं और अपने तरीके से प्यार भी जताते हैं.
0: और शायद इसी रिश्ते को समझने और जानवरों के प्रति संवेदनशील होने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है. दोस्तों, ये दिन सिर्फ पालतू जानवर या किसी भी जीव को प्यार करने के लिए नहीं बना, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए बना है कि धरती पे जितना हमारा अधिकार है, जितना हम उस पे रहते हैं, जितना हम उससे प्यार करते हैं, उतना ही ये उन जीवों का भी घर है. ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है. जैसे हम हैं वैसे उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है.
1: बिल्कुल. तो आज की हमारी बातचीत सिर्फ क्यूट पेट्स या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले

0: एनिमल वीडियोस तक सीमित नहीं होने वाली है। आज हम बात करेंगे उन जानवरों की भी जो जंगलों में रहते हैं, जिनका घर धीरे धीरे कम हो रहा है और जिनसे कई सारी प्रजातियां आज भी संकट में हैं।
1: साथ ही बात करेंगे कि आखिर हमारी छोटी छोटी आदतें जानवरों को उनकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं, और अपने स्तर पर हम ऐसा क्या करें जिससे इंसान और जानवर दोनों के लिए ये दुनिया थोड़ी बेहतर बन सके।

0: दोस्तों, जिस धरती पर इंसान का अधिकार है, उसी धरती पर हर जीव का भी उतना ही अधिकार है। और पूजा,
1: हाँ
0: सच कहें तो हम इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए धरती को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। शहर बनाए, सड़कें बनाई, जंगल काटे, नई इमारतें बनाई, विकास ज़रूरी है पूजा, लेकिन सवाल ये भी है कि इस विकास की कीमत आखिर चुका कौन रहा है?
1: कई बार जवाब होता है हमारे आसपास रहने वाले जानवर और वन्य जीव। जंगल कम होते हैं तो जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास कम होता है, सड़कें और रेल लाइनें उनके रास्तों को काटती हैं, प्लास्टिक और कचरा कई जानवरों के लिए खतरा बन रहा है, पानी और भोजन के प्राकृतिक स्रोत कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं।
0: और जब उनका प्राकृतिक घर कम होने लगेगा, अगर हमारे घर पे कोई और कब्जा कर लेगा, तो कई बार वो इंसानी बस्तियों के करीब आने लगते हैं, फिर इंसान और वन्य जीव के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए वन्य जीवों को बचाने का मतलब सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं होता, बल्कि उनके हैबिटेट यानी प्राकृतिक घर को भी बचाना होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि किसी जानवर को सिर्फ जंगल में छोड़ देना काफी नहीं है। देखिए, हमें ये भी तय करना होगा कि उनके पास भोजन हो, पानी हो, सुरक्षित रहने की जगह हो, और उनके प्राकृतिक जीवन चक्र के लिए ये सब बहुत जरूरी है, और वातावरण भी हो, और ये सब उनके लिए भी बहुत जरूरी है जैसे हमारे लिए है।
0: और जैसे कुछ प्रजातियां जो आज इतनी कम हो चुकी हैं कि उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, कई पक्षी, समुद्री जीव, जंगल और जंगली जानवर और दूसरे जीव हैबिटेट लॉस, शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन और दूसरे मानवीय दबावों से प्रभावित हो रहे हैं।
1: लेकिन यहाँ एक बात अच्छी है दिव्या, कि बदलाव की शुरुआत सिर्फ सरकार या संगठन से नहीं होती है, बल्कि हम जैसे आम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे शुरुआत बहुत छोटी चीज से हो सकती है, कचरा सड़क पर ना फेंकना
1: और प्लास्टिक को खुले में ना छोड़ना,
0: गर्मियों में अपने घरों के बाहर पक्षियों के लिए, छोटे छोटे जीवों के लिए, जैसे हमारे आसपास स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बिल्लियां होती हैं, या गायें हमारे आसपास टहल रही होती हैं, तो उनके लिए दाना पानी या पानी का बर्तन रख देना,
1: ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि उन्हें गर्मी से बहुत परेशानी होती है, तो वो इधर उधर भटकते हैं। तो अगर हम ये छोटा सा स्टेप ले लें तो उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
0: बिल्कुल, और एक बहुत ज़रूरी बात है पूजा, किसी जानवर को सिर्फ इसलिए घर में ना लाएं क्योंकि वो हमें प्यारा लगता है, कि हम उसे पेट बनाना चाहते हैं। पेट बनाना एक जिम्मेदारी रखने जैसा होता है, उसके खाने, स्वास्थ्य, टीकाकरण, साफ सफाई और सुरक्षित वातावरण की जिम्मेदारी भी हमारी हो जाती है।
1: बिल्कुल, किसी जानवर को घर पर लाना एक फोटो या वीडियोस बनाने का फैसला नहीं है, बल्कि कई सालों की जिम्मेदारी भी है।
0: और इसके साथ हमारे इमोशंस भी जुड़ते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो अपने घरों में जानवरों को लेके आते हैं, चाहे वो कोई छोटी सी बिल्ली हो, चाहे वो कोई छोटा सा तोता हो या कोई कुत्ते का बच्चा हो, हम उससे लेके तो एक जीव के तरह लेके आते हैं कि हम इसे पालेंगे, बड़ा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे फैमिली का हिस्सा हो जाते हैं। वो बोल नहीं सकते, वो बता नहीं सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन शायद हम सब उनके भावों को महसूस करने लगते हैं। सोचिए वो हमको कितना प्यार देते हैं, है ना,
1: और हम बहुत अटैच भी हो जाते हैं दिव्या।
0: अगर कोई व्यक्ति पेट में नहीं रख सकता उसको, मतलब हम कहते हैं ना कि वो हमारे अपने बच्चे तो नहीं होते, लेकिन हम उन्हें जब पालते हैं तो वो हमारे अपने बच्चे हो जाते हैं, हमारे घर के हिस्से हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और तभी वो एनिमल मतलब ऐसे होते हैं ना कि हमें उनके लिए थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे आसपास जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, हम उन्हें देखते हैं, कई बार लोग उन्हें मारते हैं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, है ना। गर्मी में पानी रख सकते हैं, जिम्मेदारी से उन्हें भोजन दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मदद कर सकते हैं। जैसे वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनका टीकाकरण ऑब्वियसली हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब अगर हमारे लोकेलिटी में अगर ऐसे जीव हैं तो हम उन्हें उनका टीकाकरण करवा सकते हैं, इससे वो भी सेफ रहेंगे और हम भी सेफ रहेंगे। इनकेस अगर वो किसी को काट लेते हैं या उनको परेशान कर रहा है कोई, तो नुकसान

0: पहुंचा देते हैं, तो उनसे हमको भी रेबीज जैसे इन्फेक्शन नहीं होंगे।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है जैसा कि दिव्या ने कहा। और अगर कोई जानवर बीमार है या अटैक कर रहा है तो खुद उसके पास ना जाएं, बल्कि विशेषज्ञ से मदद लें आप।
0: और किसी भी एनिमल को खाना खिलाते समय साफ सफाई और आसपास के लोगों की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई जानवर बीमार है, आक्रामक व्यवहार कर रहा है, तो आप जैसे पूजा ने कहा कि आप विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, आप उन लोगों को बता सकते हैं कि हमारे आसपास के जीवों का ऐसा व्यवहार है, वो अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। और क्योंकि जानवर जो होते हैं वो प्यार मांगते हैं, जीवों को प्यार से मतलब होता है पूजा, सिर्फ उन्हें प्यार भी तो करना ही होता है, साथ ही साथ उन्हें समझना भी होता है। और एक और चीज़ हमें ये जाननी होगी, हमें समझनी होगी कि जितना हम एक दूसरे के प्रति, हम बोलते हैं ना हमें मानवता रखनी चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे के प्रति हम्बल होना चाहिए, है ना, ह्यूमैनिटी नहीं भूलनी चाहिए, तो हमें ये चीज़ों को जानवरों के ऊपर भी अप्लाई करना आना चाहिए।
1: और सोशल मीडिया के दौर में ये बात और भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हर वायरल वीडियो मज़ेदार नहीं होता। कभी कभी कैमरे के पीछे किसी जानवर की परेशानी भी छुपी हो सकती है। तो कोई भी वीडियो शेयर करने से पहले आप बहुत बार सोचिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
0: और सिर्फ जानवरों की बात ही क्यों, पेड़ पौधे और प्रकृति भी हमारा, हमारे घर का एक हिस्सा है, इनसे भी हमारा कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। एक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता दोस्तों, वो पक्षियों का घर भी होता है, छोटे छोटे जीवों का आश्रय भी होता है, और पूरे इकोसिस्टम का एक हिस्सा होता है।
1: यानी जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो असल में हम एक पूरी चेन की बात कर रहे होते हैं, जिसमें पेड़, पानी, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर और इंसान सब एक दूसरे से जुड़े होते
0: और
1: हैं।
0: शायद इसी वजह से हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति में कोई भी जीव बेकार नहीं है, हर जीव की अपनी भूमिका है।
1: तो वर्ल्ड एनिमल डे पर हम सिर्फ ये ना सोचें कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, बल्कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनके लिए हम एक सुरक्षित जगह बना सकें और उन्हें सुरक्षित महसूस करा सकें।
0: क्योंकि बदलाव हमेशा किसी बहुत बड़े काम से नहीं होता पूजा, कभी कभी बदलाव बस इतने से होता है कि हम प्लास्टिक सड़क पर नहीं फेंके, हम घायल जानवरों को देखकर उन्हें नज़रअंदाज नहीं करें, उनका इलाज करने की ओर ध्यान दें, और गर्मी अगर हमें दिख रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम उन पक्षियों को दाना पानी दे सकते हैं, सर्दी है तो उन्हें एक शेल्टर दे सकते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, और छोटी छोटी चीज़ें हम ऐसे करके उनके लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान बना सकते हैं, ना कि सिर्फ फ़ोटो क्लिक करने से या सोशल मीडिया पे वायरल होने से कि हम जानवरों के प्रति बहुत हम्बल हैं।
1: और हमें अपने आसपास के लोगों को भी समझाना होगा कि जानवरों के साथ संवेदनशील व्यवहार करें, और ये अपने आप में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इंसानियत ही है हमारी।
0: तो दोस्तों, इस वर्ल्ड एनिमल डे पर एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, अपने आसपास देखिए और सोचिए, मैं आज किसी जीव के लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
1: शायद किसी पक्षी के लिए पानी रखना, किसी जानवर को चोट पहुंचाने के बजाय उसकी मदद करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, या बस इतना तय करना कि बेजुबान को अपनी मस्ती के लिए परेशान न करें हम।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
3: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
2: अरे क्यों?
3: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
4: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
3: दे रे भाई,
5: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
6: श्रोताओं, आज हमने अपने कार्यक्रम में कहानी सम्मिलित की है नुपुर कपूर की आवाज में। आइए सुनते हैं ये कहानी।
7: मिरर के सामने खड़े होकर मैं चेहरे पर बेस कोट, लाइट पिंक लिपस्टिक, कानों में चांद वाली पहनते हुए, खुले बालों पर हाथ फेरते हुए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। हमेशा की तरह समय से पहले, या यूं कहें वेरी पंचुअल। इसी आपाधापी के बीच कैब वाले का कॉल और मैं चल पड़ी कॉफी कैफे की लॉन्चिंग सेरेमनी में।

पेशे से इवेंट एंकर हूँ और सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ 2200 फॉलोअर्स होंगे। इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी की तरह 1 मिलियन तो नहीं है, पर इतना था शहर के आधे लोग मुझे मेरे नाम और काम से पहचानते थे। एंकर शनाया कपूर। काफी सुखद अनुभव था मेरे लिए। पहली बार मुंबई की किसी कॉफी फ्रेंचाइजी ने कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच किया था। कुछ दिन पहले देर रात अचानक से मैंने आज तक किसी जगह का प्रमोशन नहीं किया था, इसलिए 1000 सवाल मन में आना लाजमी था। हाँ बोलूं या नहीं, कैसे रील पोस्ट अपलोड करूंगी, वहां तो और भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर पहले से मौजूद होंगे। करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिंदगी हमें कब कौन से मोड़ पे ले जाए, डेस्टिनी हैज इट्स ओन प्लान। सो मैडम जी ने कॉल किया और मुझसे स्टाइल में पूछा, वुड यू लाइक टू प्रेफर कैपेचिनो, कॉफी लाटे, अमेरिकनो, कोल्ड कॉफी और फ्रे, और ना जाने क्या क्या। और उन्हें क्या पता, मुझे तो खुद के हाथों से फेटी दूध शक्कर कॉफी पीने में जो आनंद है वो और कहाँ मिलेगा। फिर उबलते हुए कॉफी में दालचीनी, इलायची की खुशबू और तमाम घर की माँ की यादों को समेटे सुगंध इन विलायती कॉफी में कहाँ मिलेगी। मैंने धीरे से कहा, आई वुड लव टू हैव कोल्ड कॉफी एंड आई विल रीच अराउंड 11 o'clock, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगले दिन समय से पूर्व कैफे पहुंचकर देखा, वहां पर नया फर्निश कैफे, चॉकलेटी कलर का सिटिंग एरिया, खूबसूरत वॉल हैंगिंग, हर टेबल पर रखे 2 बड़े बड़े एस्थेटिक कॉफी मग और चारों ओर से आती तेज कॉफी का रोमा। कैफे में कुल 3-4 लोग ही थे। शायद काफी पंचुअल होने के कारण कैफे में मेरा पहला कदम था। आज यहाँ पे आते वक्त मेरे मन में उथल पुथल थी, जीन्स टॉप पहनूं कि मिडी, क्या पहनूं कि इन्फ्लुएंसर या हीरोइन जैसे लगने लगूं। पर थक हार कर सोच लिया कलमकारी कुर्ता और काली पैंट पहना जाए। मैम आपकी कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम और साथ में है ये चॉकलेट कुकीज। कॉफी का एक सिप लेते मेरी नजर सडन रिसेप्शन पे जा रुकी। एक हैंडसम लंबे कद का देखने में बॉसी रिजर्व नेचर का शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ था। बार बार नजरें उसकी तरफ जा रही थी। हाय, जैसे लव एट फर्स्ट साइट या क्रश बोलूं जो कभी मिलता ही नहीं है। इस खूबसूरत सपने के बीच अचानक से किसी औरत के हाथों का स्पर्श अपने कंधे पर महसूस कर मैं बिल्कुल सकपका सी गई थी। सामने खड़ी कोई जानी पहचानी औरत मेरी सहेली सिंपल थी और आज के इनॉग्रेशन की चीफ गेस्ट। बातों बातों में मैंने पूछ डाला, ये जो सामने खड़ा व्यक्ति है क्या इस कैफे का ओनर है? अच्छा, ये हमारे शहर इलाहाबाद से है कि मुंबई से? मेरे मन में सवालों की एक के बाद एक झड़ी लगी थी और अंत में बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, क्या नाम है? रुद्र पांडे नाम है। उफ, रुद्र पक्का इनकी गर्लफ्रेंड होगी, देखने से तो काफी बॉसी, डिसिप्लिन, वर्कोहोलिक लगता है। बाय चांस सिंगल भी होता तो कौन सा मेरी जैसी बिगनर एंकर को गर्लफ्रेंड बनाता। 2 घंटे लोगों से बातचीत करते करते निकल गया और जनाब एक बार भी मेरे पास आकर ये नहीं पूछे, आपको हमारा कैफे कैसा लगा, कॉफी पसंद आई कि नहीं, आखिर मैं भी तो गेस्ट हूँ, शायद सोशल मीडिया अकाउंट पे तो जरूर होगा। ओफो, किस नाम से अकाउंट है, कहीं मिल ही नहीं रहा। इस बीच फोटोग्राफर ने मेरी कई सारी मग पकड़े, कॉफी पीते फोटो क्लिक कर डाली थी, पर दिल तो चाहता था एक बार जाकर रुद्र के साथ सेल्फी ले लेती। पर कैसे, ऐसे कैसे अनजान व्यक्ति से जाकर बोल दूं, आई वॉन्ट टू टेक अ पिक्चर विथ यू। कोलैबोरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने खूब सारी फोटोज वीडियो सब क्लिक कर डाली, बहुत बढ़िया सा कैप्शन भी सोच लिया था, अ परफेक्ट एरोमैटिक कॉफी डे या फिर कॉफी इज अ वार्म हग इन अ मग। मेरे जाने का समय हो गया था, कार को आने में सिर्फ 1 मिनट बचा था और जनाब किसी क्लाइंट से बातें कर रहे थे। अब मौके पे चौका लगाने की आदत मेरी बचपन से है। मैं डरी सहमी उसके पास गई और डायरेक्ट पूछा, हाय सर, मे आई हैव योर नंबर प्लीज। वो ना आज फोटोग्राफर ने जो पिक्चर्स क्लिक की हैं उसे जरा सेंड कर दीजिएगा, मैंने डिफेंड करते हुए बोला। हड़बड़ाहट में अपना नाम तक बताना भूल गई थी तो जल्दी से कहा, बाय द वे माय नेम इज शनाया कपूर। रुद्र ने एक बार भी

मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा और धीरे से कहा, श्योर, नोटेड डाउन। शायद इतनी खराब दिखती हूँ या फिर इंटरेस्टेड नहीं है। सुनिए, यही नंबर है ना आपका? और मैंने खुद को सेटिस्फैक्शन देने के लिए नंबर क्रॉस चेक करवा लिया। शाम को मेरा शो था तो आराम से रात तक मैसेज किया, कहीं डेस्परेट ना लगने लगूं। 4-5 बार तो मोबाइल भी चेक कर डाला, मैसेज सीन किया कि नहीं। और फाइनली फाइनली रुद्र का मैसेज आया, हाय शनाया, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू विथ अस। अब मैं जनाब की सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एडिट थी, उसके मात्र 200 फॉलोअर थे, जैसे मेरे 2000 फॉलोअर का 1-0 कम कर दिया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी प्रोफाइल चेक कर डाला पर मुझे कहीं भी कॉफी का एक फोटो नजर नहीं आई, क्योंकि पूरी फीड तो कार ड्राइविंग लॉन्ग ड्राइव की रील से भरी हुई थी। आई वॉज शॉक्ड, कॉफी कैफे का बिजनेस और कार की रील। हम दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल बातें ही हो रही थी। मैंने वीडियो लिंक भेजना शुरू कर दिया था और जनाब मैसेज सीन कर करके छोड़ देते थे। बाप रे, इतना ज्यादा एटीट्यूड। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एंकरिंग करते करते लाइफ में कम्युनिकेशन बिल्डअप करना मैंने सीख लिया था। सो बात बात में पूछ डाला, हाय, आर यू अ राइडर? आपने सोशल मीडिया में अपनी खुद की फोटो क्यों नहीं अपलोड की है? और ना जाने क्या क्या। मैं चाहती थी रुद्र के बारे में हर एक चीज जानना, क्योंकि उसमें कुछ तो खास बात थी जो मुझे आज तक दूसरे लड़कों में महसूस नहीं हुई। बचपन से ही मेरे ख्यालों में पंख लगा था, दैट वन डे आई विल हैव अ परफेक्ट स्टोरी ऑफ माय लाइफ। पर मेरे और रुद्र की कॉन्वर्सेशन एंड लाइन पे आ जाती थी। हमारे दिल दिमाग दोनों का तार नहीं जुड़ रहा था। ऐसा भी नहीं था मैंने जबरदस्ती मैसेज किया हो और वो नॉट इंटरेस्टेड हो, पर जब किस्मत को मिलाना होता है तो वह किसी भी इत्तेफाक से हमें लोगों के करीब ले आती है। हम दोनों को सोशल मीडिया पे ऐड हुए 1 साल हो गए थे, जिसमें बातें गिनकर 2 से 3 बार हुई होंगी। आज आंखों के सामने लास्ट ईयर का फ्लैशबैक था, मानो किसी ने यादों के पिटारे का ताला मेरे पूछे बगैर खोल दिया हो। जी हाँ, आज कैफे की एनिवर्सरी थी, पर इस बार कैफे में जाते ही मेरी नजरें रुद्र को ढूंढ रही थी। 2 कदम आगे बढ़ाते रुद्र मेरे सामने खड़ा था। हाय शनाया, क्या हाल है? मैं 2 पल के लिए शांत हो गई थी, जैसे इसी आवाज का तो मुझे कब से इंतजार था। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी, इतनी बढ़िया आवाज, वाह क्या बोलने का अंदाज है। पर पता नहीं क्यों इस बार रुद्र मुझे फ्रैंक लग रहा था। उसने 2-3 बार सारे स्टाफ से पूछा, कोई बता सकता है एंकर शनाया की एज क्या है? ये ग्रेजुएशन कर रही है, शी इज जस्ट 21। केक कटिंग सेरेमनी हुई, पर हम दोनों ने फ्रेम का हिस्सा बनना पसंद नहीं किया। पर सबसे जरूरी बात तो बताना ही भूल गई, कैफे की ओपनिंग के समय जब मैं रुद्र सर का नंबर ले रही थी, फोटोग्राफर ने वो तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लिया था। ना जाने मुझे जमाने भर की खुशी मिल गई हो। एनिवर्सरी में हमने ग्रुप फोटो भी ली थी। इस बार भी मेरा पहला मैसेज क्या, हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, जस्ट लव दी सर्विसेज। रुद्र ने इस बार हमारा कॉल ले लिया था। शायद 1 साल से मेरा कॉल वेटिंग पर था और इतना सोचा, देखते हैं कब रुकती है हमारी दास्ता। हमने एक बार रात के 12 बजे कॉल पे बात किया था और रात के 2 कब बज गए पता ही नहीं चला। कॉल कट करते वक्त ये कहा, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, हम कब मिल सकते हैं? सामने से जवाब आया, कल मिले। और पहुंच गई कैफे उसका सरप्राइज लेकर। जनाब काफी लेट लतीफ हैं और मैं बहुत समय की पक्की। मुझे याद है रुद्र ने ब्लैक टी शर्ट और मैंने ब्लू कुर्ता पहना था। रुद्र को कुत्तों का शौक है, डॉग्स की केयर करना, उनके लिए फंडिंग करना, तो मैंने भी इम्प्रेस करने के लिए सफेद रंग का छोटा सा प्यारा सा पॉम गिफ्ट कर दिया। पोमेरियन ब्रीड होने की वजह से उसका नाम पॉम रख दिया गया। हमारी कहानी, हमारा प्रेम की दास्ता बस प्यार के पन्नों में गढ़ती चली जा रही थी। रुद्र थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है, पर उसने बिना देर किए ये एक्सप्रेस कर दिया था कि उसे भी ओपनिंग के दिन मुझ पर उतना ही क्रश था जितना कि मुझे उस पर। उसने ये भी बताया कि वो मुझे प्रपोज इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी शादी फिक्स हो रही है। और हाँ,

0: हमारे बीच एज गैप भी है, पर प्यार तो प्यार होता है। हम अब रेगुलर लॉन्ग ड्राइव पे जाने लगे थे, अपनी मनपसंद गाने प्ले करते थे, एक दूसरे के बारे में जानने समझने में दिलचस्पी रखते थे। रुद्र मेरी कॉफी की झूठी बॉटल्स को कलेक्ट करने लगा था। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के प्रेम में डूबते चले जा रहे थे। हमारे प्रेम का रंग पक्का होता जा रहा था। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। उसने किया मेरा 2 साल तक इंतजार, रोक लिया अपने घर वालों को, थाम लिया मेरा हाथ। ना जाने हम कुछ ऐसे लोगों से टकराते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं, जहां मिलने की कोई उम्मीद ना हो, पर जरूरी नहीं कि वो शख्स आपको दोबारा मिले। इसलिए रोक लो अपने प्यार को, पकड़ लो हाथ उसका। और हाँ, बातें रुकनी नहीं चाहिए। आज ही अपने क्रश को मैसेज करें, शायद कुछ दिन आपको इग्नोरेंस मिले, फिर आपको अपना रुद्र मिल जाए। जैसे नूर को कोहिनूर मिल गया, रुद्र मुझे प्यार से नूर बुलाता है। और हाँ, मैं भी कॉफी की मिठास में डूबे हुए ठीक वैसे मुस्कुरा रही हूं जैसे आप मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं। सम टाइम यू मीट समवन स्पेशल एट द टाइम ऑफ मेस, सो नेक्स्ट टाइम इफ यू मीट समवन एक्सीडेंटली डू गिव इट अ कॉल, मे बी डेस्टिनी इज इन योर फेवर।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी कहानी नुपुर कपूर की आवाज़ में। अब बढ़ते हैं अपने अगले खास सेगमेंट प्रेरणा पुंज की ओर।
2: तो दोस्तों, अब प्रेरणा पुंज में हम बात करेंगे ऐसी खास शख्सियत के बारे में जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया दर्शन दिया, एक नया
1: आयाम दिया।
2: हम बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के महानतम कवियों और
1: कलाकारों में से एक थे।
2: हाँ,
1: उन्होंने हिंदी काव्य जगत में राष्ट्र कवि और वीर रस के कवि के रूप में विशेष पहचान मिली। आपको बता दें, उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था।
2: उनकी विशेष रचनाओं में शामिल हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा और रेणुक।
1: गद्य साहित्य, उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृत के इतिहास और उसके विकास का महत्वपूर्ण दस्तावेज माने जाते हैं।
2: और अगर उनके सम्मानों की बात करें तो उर्वशी की रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया।
1: और रश्मि रथी तो आज भी जितने यूथ्स हैं उनके लिए तो हमेशा से वो फेवरेट रही है। उनके जितने भी, और वो हिंदी में यकीनन बहुत महानतम रचनाओं में से एक है।
2: तो श्रोताओं, ये थे हमारे प्रेरणा पुंज और हम अपने प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत। पूजा

0: क्या मैं सचमुच में तुम्हें भैंस दिखती हूँ?
1: राजा दिल सांड हो ना तो हर लड़की भैंस दिखाई देती है मेरी जान।
0: लड़की? You just called me लड़की।

0: दोस्तों, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है यहाँ तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर और कुछ नहीं है, तकलीफें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। तो दोस्तों, जिस तरह आपकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन आपको चलना नहीं भूलना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको ये याद रखना होगा कि आज शायद जो चीज़ आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है, लेकिन एक दिन वो चीज़ ज़रूर होगी। तो आप कभी थके नहीं, रुके नहीं, और हम आपका प्रोग्राम लेकर आते ही हैं, आपका फेवरेट प्रोग्राम युवाणी, आपको ढेर सारी बातें, आपको ढेर सारी चीज़ें बताने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए। तो श्रोताओं, चलते चलते हम आपको बस हमारे आज के जो प्रश्नोत्तरी, जो हम सेगमेंट लेकर आते हैं, उसका सवाल बताते हैं।
1: बिल्कुल, आज का सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप इसका सही जवाब हमारे नंबर पर दे सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250।
0: और आप ईमेल आईडी यानी yuvvaniald@gmail.com पर भी अपना रिव्यू दे सकते हैं। इसी के साथ मैं दिव्या
1: और मैं पूजा
0: लेते हैं आपसे विदा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास में के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि यह क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाइयों को सुनवाएंगे मनोज कुमार सिंह से जयकृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत, विषय होगा मिट्टी की जांच क्यों और कैसे। इसके अलावा अंकित पटेल की वार्ता होगी जल संरक्षण की आवश्यकता। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनिएगा सचिन कुमार के स्वर में भजन। श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है सुन सकते हैं रात 8:00। 8:30 पर आज इतवार है, इसमें हम आपको सुनवाएंगे राजेंद्र कुमार की लिखी झरगी जादुई चिराग का डुप्लीकेट जिन। गजलों का कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा रात 9:30 पर। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर हरि माधव शुक्ल से की गई बातचीत, जैविक खेती से लाभ। सुबह 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता होगी आंखों की वंशानुगत बीमारियां और उनका समाधान। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। दिन में 12:15 पर आपको सुनवाएंगे पंडित जसराज का गायन और शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम होता है सुबह 8:45 पर। सवेरे 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज में सुनिएगा साइबर अपराध विषय पर इंस्पेक्टर अर्जुन द्विवेदी और सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 10:30 पर। गायक कलाकार होंगे कमल चंद्र यादव और साथी। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी अंतरा सिंह से की गई बातचीत, वित्तीय शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया होगा शाम 5:00। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर डॉक्टर विवेक सिंह की वार्ता होगी मैंग्रोव वन और उसकी उपयोगिता। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आपको सुनवाएंगे उत्तम कुमार मलिक के स्वर में भजन। कहकशा कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर। अभी आप सुन रहे थे इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। दीपा कुमारी जिनकी उम्र है 18 वर्ष, कद 4'9", रंग सांवला, इकहरा बदन, चेहरा लंबा है, ये दिनांक 13 जुलाई 2026 से, ग्राम धंधुआ थाना खीरी जिला प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें अरुण कुमार से, पता है ग्राम धंधुआ थाना खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज। रंजना देवी जिनकी उम्र है 32 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा, चेहरा गोल और शरीर की बनावट सामान्य है, ये दिनांक 13 जुलाई 2026 से, देवी बांध कोराव प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में सूचना मिलने पर आप इस पते पर संपर्क करें। विष्णु सिंह निवासी देवी बांध थाना खीरी जिला प्रयागराज। दिव्या देवी जिनकी उम्र है 21 वर्ष, कद 4'6", रंग गोरा, चेहरा गोल है, ये दिनांक 22 जुलाई 2026 से, निर्गढ़वा

मानिकपुर थाना जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें शोभा देवी से, जिनका मोबाइल नंबर है 9598732529। नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 9598732529। मनोरमा देवी, जिनकी उम्र है 19 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये दिनांक 15 जून 2026 से कल्याणपुर थाना मऊ आईमा से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप इस पते पर संपर्क करें। श्री रविशंकर, निवासी कल्याणपुर मऊ आईमा प्रयागराज। ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए देश गान।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां परस्पर सहयोगे बलं प्रदत्तवान्। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेशे त्रिआयामी कंक्रीट मुद्रण प्रौद्योगिक्या त्रिलक्ष गृह

0: पंचो राम राम।
1: आहो ललन भैया, का हाल चाल बा हो खेती किसानी के? भैया
0: देखा हो बजू भैया, खेती किसानी के हाल चाल तो देखा सही बा, और धान भी बढ़िया बाल उल आई गए बा, एकदम लहलहाता। और एक बात और कि धान के अलावा जो कुछ खेत खाली रहे ना रहा कि ओके भाई रबी के कुछ फसल का जो न इसमें शुरुआत हो वाली बा, जैसे मटर भ, चना भ, और सब्जी भ, आलू भ, तो एकर भी तैयारी अब हम सोचे शुरू किया जाए।
1: कहे नहीं कहे भाई, खेत अगर खाली बा तो का तैयार करे, चाहे हमें जौन भी चीज ले कि समय से भैया खेती हो जात है ना, तो पैदावार बढ़िया होता
0: है, बढ़िया होता।
1: और भैया जौन खेत खाली है, खेत खाली रखे से कोनो फायदा नहीं, ओकर तैयारी शुरू कर दे चाहे। और भाई जेकर धान कुछ जने के पक भी गए बाटे न काटत हैं, तो ओकर भी खेत तैयार कर ले रबी के बोआई के बदे।
0: हाँ, ओकर भी तैयार कर ले। अच्छा, खेत की तैयारी का एक बड़ा महत्वपूर्ण चरण होता भैया, माटी के जांच कराओ।
1: बात सही कह ललन भाई पते के, कहे से कि भैया जब खेत खाली हो जोने तूरे में माटी की जांच अगर ना भई बे खरीफ वाले में, तो यह में जांच कराई ले ही तो अच्छा रहे। माटी के जांच से बड़ा फायदा भी होता है कि भाई हमारे कौने खेते में का तत्व तो कमी बे, का नहीं कमी बे, का हाँ का संस्तुत जब जांच कराई तो हमें वैज्ञानिक लोग बताई कि हमें का खाद डाले चाहे, कौन फसल ले चाहे।
0: ये बात अब बहुत सही चीज कहे ना आप, कि उनके पता चल जाए कि कौने चीज के कमी बा, कौने पोषक तत्व के कमी बा। नहीं कभी काल हो था कि किसान भाई लोग गए ऐसे डाई यूरिया लिया के सब पूरा छेट के अपन काम शुरू कर दें, जबकि फायदा से ज्यादा कभी कभी नुकसान दे भी हो जाता है।
1: पैसा का भी नुकसान हो तो फसल के भी नुकसान हो, तो काहे से प्रदूषण बढ़ता है।
0: हाँ।
1: तो भैया हो जानकारी रहे ना, जैसे मान लो अब तो हमें भूख लागब तो खाली पानी पियत है तब वो काम न चले।
0: सही बात,
1: भूख नहीं लागब, प्यास लागब लेकिन पानी नहीं पियत है, तो हर तत्व का अलग अलग जरूरत। वैसे फसलन का कहा थी भाई 16 प्रकार के तत्वन के जरूरत होता है, और भाई वो जाँच करे से ही पता चलत है का कमी का नहीं कमी बाटे है,
0: उचित मात्रा में उतना मिला जाए तो खेती भी अच्छी रहे, माटी भी अच्छी रहे और पैदावार भी बढ़िया हो।
1: ये माटी तभी अच्छी रहे जब हमें जो बाटे जांच के बाद हमें कार्बनिक खाद, हरी खाद, केचुआ खाद, ये सब पड़े गोबर वाली खाद। अब अंधाधुंध भैया रासायनिक खाद डालत रह, माटी के दोहन होत रहे तो कितना तत्व तो रह जाए।
0: अच्छा ए बजू भैया, और आप कहे ना रासायनिक खाद के बारे में, और हमारे तो गाँव में आप लोग जोन बा जैविक खाद की तरफ बड़ा तेजी से जा रहा है।
1: बड़ी अच्छी बात भाई, बड़ा अच्छा लक्षण बा। जैविक खाद से पहली बात तो माटी की संरचना बनी रहे, और दूसरी चीज सस्ता भी पड़ा था भैया,
0: सस्ता भी पड़ा था। लोगन के ये भी हो गया ना भैया कि तरह तरह का बिरामी नहीं नहीं फैलता, तो लोग चाहत हैं कि भैया नहीं स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी बा, तो ऐसन जैविक खाद से फसल उगावा जाए, वही खावा जाए, तो कम से कम शरीर स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे, काम बढ़िया होए, खेती किसानी बढ़िया होए, और देश भी जोन बात स्वस्थ रहे।
1: कहे नहीं कहे ना, किसान ही तो मूल आधार है अपने देश के, भाई सबके पेट पालन करते हैं। जब खेती ही गड़बड़ हो जाए तो कैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे? जोन भाई फसल बिके के जात बाटे, पता चली अंधाधुंध रासायनिक खाद दवाई पड़ी बा, तो जोन पैदावार हो तो प्रदूषित रहबे ही न करे भाई। तो जरूरी बाकी ये सब जोन बाटे जैविक खाद या पुराने देखा समय में घोर गड्ढा खाद ये सब डाली जात रहे,
0: बड़ा
1: फायदेमंद रहत रहा भैया। आलू वालू में देखा उतर तो काहे अब मजा ना ही दे, तो काहे सब रासायनिक खाद से पैदा हो, पहले रहा जोन सब कार्बनिक तरह ऐसे खाद देसी खाद से पैदा होता रहा।
0: अपने जोन गाँव देश का वो जैविक खाद का वो नहीं बाकी, जैसे अपन गोरू रखे हैं खेते में जो रहा ही जाता, वो जितना बढ़िया खेती तैयारी हो था ना, वो और कोनो खाद ओकर पूर्ति न कर पाए।
1: ना ना ना भाई, वो में कार्बनिक खाद रहा तो पूरा सब पूरा माटी सही हो जाता,
0: माटी सही हो जाता,
1: केचुआ वाली खाद हाँ वो कितना फायदेमंद बाटे है। केचुआ वाली खाद किसान भाई अपन घरे भी बना सकत हैं, अपने भी इस्तेमाल करे, केचुआ बेच के पैसा भी
0: कमा सकत हैं, उनके व्यापार भी कर सकत हैं,
1: खाद भी बेचता है भैया बोरी में भर भर। सहारा में जात बाटे है, जोन गमला में पौधा लगाओ थे ओकरे बड़े भी जात बाटे है, तो बड़ा फायदे की चीज बाटे,
0: बहुत फायदे की चीज बा। अच्छा बजू भैया, आज रविवार का दिन हवे, तो आज जोन बा एक बातचीत भी सुनवाओ जाए, जैसे माटी की जांच होत रही, तो माटी की जांच काहे और कैसे यही विषय पे एक बातचीत सुनवाओ जाए, और उकरे अलावा जो जल संरक्षण का आवश्यकता बा पर भी एक वार्ता सुनाओ चाहे।
1: जरूरी बा भाई, कहा जात ना कि रही मैंने पानी राखी है, बिन पानी सब सुन भाई, बारिश हो

0: था तो ओका पानी रखे चाहे सुरक्षित संरक्षित करे चाहे
1: हाँ
0: नहीं भी हो तो बस जौन इस्तेमाल हो तो कम से कम इस्तेमाल हो बचत करें। हाँ आवे वाले समय में गर्मी में देखा कहूँ कहूँ तो पिए के पानी नहीं रह जाते
1: सही
0: हो।
1: बात बात है, जल का संरक्षण बहुत आवश्यक बा। तो इस विषय पे एक वार्ता सुनाओ जाए किसान भाई के, लेकिन सबसे पहले अपने पंचायती में एक लोकगीत नवा फूलचंद और साथी के विकास गीत बा, और पहले सुनवावा जाए, फिर हम आप चंग बात बत कही होत रहे।
0: सुनवावा भैया सुनवावा।

0: हाँ
1: भैया
0: भैया।
1: देखा, एक लोकगीत रहा ही, विकास गीत, फूलचंद और साथिन का, और खेती किसानी के बातचीत विकास गीत में करें
0: काहे
1: कि
0: न काहे न। तो भैया हो खेती किसानी के बात चलत बा, तो भैया हो कही जात है खेती किसानी बिना पानी के नाही होते
1: बिना पानी का नहीं
0: भाई।
1: होते।
0: पानी तो जरूरी है ना, जवन बाटे है बिना पानी के कौन चीज होए। तो भैया हो उकरे लिए जरूरी बा कि जवन भी बरसात होत है ओकर पानी हम सब संरक्षित कर। पुराने जमाने में देखा कुआं तालाब पोखरा ये सब जगह जगह गढ़हा रहत रहा भारी, जाए बारिश में वो धीरे धीरे जौन बाटे जलस्तर सब बना रहत रहा ओकरे वजह से।
1: बड़ी अच्छी तकनीक रही हो भैया सब। पहले के जोन अपन पुरखा पुरनिया रहे ना, वो जल का जोन महत्व तो रहा वो बहुत अच्छे से समझत रहे।
0: काहे नहीं
1: उनकर
0: काहे
1: खेती
0: नहीं।
1: किसानी के अलावा भी प्रकृति के भी जोन संरक्षण रहा, उमन जल का बहुत ज़्यादा योगदान रहा
0: भाई जल
1: और लोग अच्छे
0: पूजा
1: से
0: ही
1: समझत रहे।
0: बरे, पूजा भी होत रही कुआं का पूजा भी होए
1: कुआं का
0: भैया।
1: पूजा होत रही, जल
0: हाँ
1: का
0: सर
1: पूजा रही और जल का देवता रहे ना अपन।
0: देवता रहे ना। दूसर चीज कुआं बनवाओ बड़ा पूरे के काम माना जात रहा
1: माँ सही
0: हुआ
1: बात, सही
0: कि
1: बात।
0: भैया हो कुआं बनवाए रहन, पक्का कुआं बनवाए रहन भैया। तो भैया उसे पानी तालाब बनवाए रहन ये सब एक शादी ब्याह के समय ही बताए दिया जात रहा कि ये सब देखा जब सात फेरा हो तो तुम्हें में गिनावा जात है।
1: उम गिनाओ जाते भी
0: हाँ
1: जल
0: कि
1: के
0: भैया
1: बाद।
0: बाग लगई हैं तालाब बनई हैं कुआं बने हैं पत्नी के साथ
1: हाँ
0: रहे हो हमें जोन
1: हाँ
0: बाटा तो बड़ा महत्व ही नाते बा।
1: तो सही बात है। यही के ध्यान में रख कर भारत सरकार भी हर घर जल योजना के नाम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत
0: हाँ
1: ही ये एक योजना रही।
0: भैया ललन तथा हम देखे हैं भैया अब तक गांव गांव में टंकी बन गए हैं न, पाइप बिछी वो नले से पानी अब आवत है
1: नले से
0: भैया।
1: पानी आता और हर घरे घरे तक नल पहुंचाता और ये बहुत महत्वाकांक्षी सरकार का बहुत बढ़िया योजना बा कि भाई
0: सही
1: जल
0: कह
1: का
0: रहे।
1: कमी के हो न हो पावे। और जल कहे से भैया जीवन के लिए बहुत आवश्यक बा और बहुत सारे लोग ऊंचाई पे जो गांव हैं घर हैं लोगन के वहाँ बहुत परेशानी होता,
0: काहे नहीं काहे
1: तो
0: नहीं।
1: ई योजना के माध्यम से अगर उनके जल मिलता और वहाँ तक पहुँचाता तो बहुत बड़ी बात बा, बहुत अच्छी
0: भैया ये
1: बात बा।
0: योजना यही बड़े कि इसके ऊपर आशा ना रहे सबके पानी मिले। उन एक बात और किसान भाइन के भी सोचे चाहे कि पानी मिलत बा तो का दुरुपयोग ना हो बहा ही नहीं। ये नहीं कि नल खराब बा तो बहता ही भी पानी भैया
1: ये तो
0: हुआ।
1: बहुत सही बात कहे भैया। हम भी कहा चाहत रहे कि अपने गांव में हम खुदे देखत है कि नल ऐसे खुला बात तो ऐसे बहता लोगों के बंद भी नहीं करत हैं, पानी का महत्व नहीं समझत हैं। और जहां एक बाल्टी पानी की जरूरत बा वहां 20 बाल्टी बहावत हैं लोग।
0: सही कह नहाए में पशुअन को धोए में हर जगह। तो भैया हो पानी के बचत बहुत जरूरी है। आवे वाले समय में पानी के संकट से अगर हमें सब बचे के बा तो आज ही पानी के बचावे के पड़े
1: सही
0: भैया।
1: बात बा भैया। तो ई पर जोन वार्ता बा जल संरक्षण की आवश्यकता अंकित पटेल जी का, आओ पहले वार्ता सुनाओ जाए किसानन के फिर हम आपसे बात बात कही होए।
0: हाँ सुनाओ भैया।
2: भारतीय संस्कृति में जल को जीवन का आधार माना गया है। जीवन के उद्भव और विकास का आधार होने के कारण जल को सदैव से सहेजने की परंपरा रही है। वेदों में पानी को प्राण तत्व माना गया है। जल का जीवन से गहरा संबंध है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जल को विकास की पोषणीयता का मानक माना गया है। दुनिया का टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जल की अपरिहार्य आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का विषय समृद्धि और शांति के लिए जल है। हमारे पास स्वच्छ जल एक सीमित संसाधन के रूप में उपलब्ध है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट देखें तो धरती पर हर दूसरा

व्यक्ति पानी की गंभीर किल्लत झेल रहा है। 2002 के बाद से अभी तक लगभग 1.4 अरब लोगों पर सूखे की मार पड़ी है और तो और 21,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु पानी न मिलने के कारण या स्वच्छ पानी के अभाव में हुई है, जो हम सभी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। 2010 की तुलना में 2050 तक पानी की वैश्विक मांग में 30% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस प्रकार सतत आर्थिक विकास के लिए पानी की पहुंच, आवंटन और उसका प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जल संरक्षण अति आवश्यक हो गया है ताकि भविष्य में जल की कमी को दूर किया जा सके। विश्व भर में लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या और भूमिगत जल के दोहन से भूमिगत जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अगर भूमिगत जल स्तर में हो रही कमी को ध्यान न दिया गया तो भविष्य में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। 2018 में हमें दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में जल संकट देखने को मिला और अपने देश भारत में तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के बंगलुरु शहर में पानी की किल्लत देखने को मिली। दिल्ली जैसे शहरों में तो पानी पड़ोसी राज्य हरियाणा से लेना पड़ रहा है और पानी की समस्या गर्मियों में तो और भी बढ़ जाती है। नीति आयोग के नवीनतम आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारे देश में 6 करोड़ से अधिक लोग गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं और 3/4 जनसंख्या के पास तो पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि अगर किसी नल से एक एक बूंद पानी टपकता रहता है तो एक वर्ष में 11,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। हमारे देश के अधिकांश हिस्से जहां 70% से अधिक बारिश होती है और वहां भी उन हिस्सों में भूमिगत जल स्तर सामान्य से नीचे चला गया है। कुएं सूख गए हैं, तालाबों में पानी बारिश के समय ही दिखाई देते हैं। हर साल हमें मानसून की अधिकता तो कहीं कमी देखने को मिलती है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार हर साल अंतर आता रहता है, जिसका असर सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं बल्कि मवेशी, जीव जंतु, फसलों आदि पर देखने को मिल रहा है। जल एक पुनर्भरणीय संसाधन है, हर वर्ष बारिश और बर्फ के रूप में आता है। इसका शोधन करके इस्तेमाल के लायक इसे बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम जल को संरक्षित कर भविष्य को बदल सकते हैं। हमारा जो जल भविष्य है वो हमारे जल ज्ञान से निर्धारित होगा और हमें इस बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पानी और संस्कृति एक साथ चलते हैं। पानी की कमी का मतलब बारिश का ना होना नहीं है, या जीवन जीने और जल संपदा को साझा करने में समाज की विफलता का परिचायक है। स्वच्छ जल के बिना एक स्वास्थ्य, एक सुखद जीवन की कल्पना करना असंभव है। जल के संरक्षण में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी मानव उपयोगों से पैदा होने वाले अपशिष्ट जल, जैसे कपड़ा धोने, बर्तन धोने वाले जल, जिसे ग्रे वाटर भी कहा जाता है, को सीधे संरक्षण के रूप में तालाबों आदि में ना छोड़ा जाए, बल्कि इसका रिसाइकलिंग करके ही छोड़ा जाए, जिससे जलीय जंतु को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है तथा साथ ही भूमिगत जल स्तर भी दूषित नहीं होगा। जल सुरक्षा के लिए हमें बदलावों की आवश्यकता है। हमें जल प्रणालियों में निवेश करने और टिकाऊ बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम और जलवायु में परिवर्तन साफ होता दिख रहा है। कहीं बारिश अधिक तो कहीं कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे यहाँ अधिक बारिश तो होगी, लेकिन कम समय के लिए। इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, बारिश जब और जहाँ हो हम उसे इकट्ठा करने की दिशा में कदम उठाएं, ताकि भूजल के स्तर में वृद्धि हो सके। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ बारिश ना के बराबर होती है और पानी पीने के लिए उपलब्ध भी नहीं हो पाता है। वहाँ की लड़कियाँ विद्यालय इसलिए भी नहीं जा पाती, क्योंकि कई किलोमीटर चलकर स्वच्छ पानी जुटाना उनकी जिम्मेदारी होती है। जल की कमी का मानवीय परिणाम में सबसे बुरा असर दुर्बल वर्ग, महिलाओं और बालिकाओं में देखने को मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार यह देखा गया है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने बचपन में सूखे की स्थिति को झेला है, उनके बच्चों को किसी न किसी एंथ्रियोमेट्रिक अर्थात मानव शरीर संबंधी गड़बड़ी की 29% अधिक आशंका रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत के प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। देश के कुछ हिस्सों में भूमिगत जल में आर्सेनिक फ्लो

फ्लोराइड जैसे भारी धातुओं का प्रदूषण तथा खारापन पाया जाता है। यह जल पीने से शरीर में कई बीमारियों को जन्म देता है। ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छ जल की आपूर्ति और भी आवश्यक हो जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना के तहत 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में घरेलू जल कलेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। हर घर नल जल के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पानी देने के लिए उत्तरदायी कदम उठाए गए हैं। गोवा और तेलंगाना जैसे राज्य ने तो अपने लक्ष्य भी प्राप्त कर लिए हैं। ताकि हमारी मानव पूंजी सुरक्षित रहे, विश्व भर के लगभग 200 नगर जीरो डे श्रेणी की तरफ बढ़ रहे हैं। जीरो डे श्रेणी का मतलब है नलों में पानी की आपूर्ति बंद है और उनको टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने भारत के चेन्नई व बेंगलुरु शहर को जल संकट के लिए सावधान किया है। अभी हाल ही में बेंगलुरु शहर में पानी की किल्लत उभर कर सामने आई है। दरअसल यह समस्या अचानक उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि धीरे धीरे पनपी। शहर का विकास झीलों और तालाबों को खत्म करके किया गया। 90% से ज़्यादा शहर पक्का बन चुका है। वर्षा के जल के पुनर्भंडारण न करने की अनदेखी व लगातार भूमिगत जल के दोहन से यह संकट उभर कर सामने आया है। ज़्यादातर शहरों में जमीनें पक्की हो गई हैं, जिससे बारिश का पानी रिस कर भूमि में नीचे नहीं पहुंच पाता, ऐसे ही बहकर बर्बाद हो जाता है। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, विकास की अंधी दौड़ ने वहाँ के तालाबों और पोखरों को, जो जल संरक्षण के महत्वपूर्ण स्रोत थे, उनको या तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है या समेट कर छोटा कर दिया गया है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पानी के संग्रहण के लिए इनका उद्धार किया जाना अति आवश्यक हो गया है। भारत की 80% आबादी पेयजल व दैनिक कार्यों में हो रहे उपयोग के लिए भूगर्भ जल का प्रयोग कर रही है। भूगर्भ जल का घटता स्तर जल संकट की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि अगर जल संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में जल की भारी किल्लत उत्पन्न हो जाएगी। हमें ध्यान देना होगा जल संरक्षण की दिशा में। 2022 में स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार करना है, ताकि स्थानीय स्तर पर जल स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनकर तैयार हुआ है। अभी तक जल संरक्षण के लिए 50,000 से भी ज़्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है, जो सरकार द्वारा एक अनूठी पहल है। पर्यटन की दृष्टि से झीलें, झरना, नदियाँ पर्यटन के आकर्षण केंद्र रहे हैं, लेकिन पर्यटकों के द्वारा वहाँ भी खाने पीने के सामानों आदि के द्वारा ले जाने से प्रदूषण की समस्या देखने को मिल रही है। जन जागरूकता के द्वारा हमें इसे रोकने के प्रयास करने होंगे, ताकि ऐसे प्रदत्त प्राकृतिक स्थलों में स्वच्छ जल का संरक्षण बना रहे। जल प्रबंधन हर व्यक्ति का काम और जिम्मेदारी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा पानी की आपूर्ति होगी, उतना ही गंदा पानी बढ़ेगा। पानी की सफाई की पर्याप्त व्यवस्था ना होने से तालाबों व नदियों का प्रदूषण बढ़ता है, जिससे साफ पानी की उपलब्धता कम होती है और पानी साफ करने की लागत भी उतनी ही अधिक आती है। पानी के बार बार इस्तेमाल करने की व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समस्या यह है कि पानी और जमीन के विभिन्न मुद्दों से जुड़ा अमला अलग अलग है। तालाब की व्यवस्था किसी और के पास है, नाली निकासी दूसरे के पास, जलागम क्षेत्र किसी और के कार्य क्षेत्र में है। अतः पानी के संरक्षण और सुरक्षित प्रबंधन के लिए ऐसी स्थिति को बदलना होगा। शहरों के बीच बसे पशुपालक अपने पशुओं के मल के रख रखाव की उचित व्यवस्था ना हो पाने के कारण नालियों के द्वारा ही मल को बहा दिया जाता है। इस मल को बहाने में न जाने कितना स्वच्छ जल का दुरुपयोग रोज किया जा रहा है, जबकि पशु मल का उपयोग जैविक खाद के रूप में हो सकता है। जल संरक्षण के लिए ऐसी स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्व में सबसे अधिक भूजल का इस्तेमाल भारत में होता है। जल भोजन, पोषण व आजीविका से जुड़ा होता है। शुद्ध पेयजल की कमी से स्वास्थ्य व विपरीत प्रभाव के कारण रोजगार तो प्रभावित हो

0: लगता ही है और लोगों को प्रवासित भी होना पड़ता है। जल संरक्षण हमें सिर्फ वर्षा के जल का ही नहीं करना है, बल्कि दैनिक जीवन में उपयोग हो रहे जल को अगर आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाए तो भी हम जल का संरक्षण बिना किसी मेहनत व लागत के कर सकते हैं। साथ ही जल को अशुद्ध होने से बचाना भी एक जल संरक्षण का कार्य है। हमें जल की एक-एक बूंद की कीमत को समझकर उसको सहेजने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खेती में सिंचाई के लिए हमें किसान भाइयों को जागरूक करना होगा कि परंपरागत सतही सिंचाई विधि, जिसमें खेत में पानी भर दिया जाता है, इससे बड़ी मात्रा में सिंचाई जल व्यर्थ हो जाता है। इसलिए खेतों पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों जैसे ड्रिप विधि, इसे टपक विधि भी कहा जाता है, स्प्रिंकलर विधि अर्थात फव्वारा विधि को लगाने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जल का उत्तम प्रयोग संभव है। भारत के कई स्थानों में खेती अभी भी वर्षा पर निर्भर है, इसलिए जल संरक्षण वर्तमान की आवश्यकता के लिए और भी आवश्यक हो जाता है। छोटी छोटी परियोजनाओं के जरिए जल संग्राहक स्रोतों को न सूखने देना एक जरूरी कदम है। अब समय आ गया है कि महिलाओं को जल संरक्षण के लिए अपने प्रयासों को सशक्त रूप देना होगा, क्योंकि प्रत्येक घर की महिलाएं जल की प्रमुख उपयोगकर्ता रही हैं। खाना पकाने से लेकर कपड़ा धोने, परिवार की स्वच्छता और सफाई के लिए जल का उपयोग करती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि जल प्रबंधन में उनकी अहम भूमिका होती है। अपनी संतानों को जल संरक्षण और संवर्धन के तौर तरीके सिखाकर महिलाएं उन्हें एक समृद्ध विरासत सौंपेंगी, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के सिर पर मंडरा रहे जल संकट को भी रोक सकेंगी। कुल मिलाकर यह बदलाव परिवार से शुरू होकर पर्यावरण तक पहुँचेगा। दो लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बारिश की हर बूंद मानो जैसे गंगा जल है, इसके संरक्षण से ही सुखी हमारा कल है। यदि हम भारत को अधिकाधिक शक्ति संपन्न राष्ट्र बनते हुए देखना चाहते हैं तो जल संरक्षण व पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता देनी होगी, जो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है।
1: हाँ भैया,
0: भैया लल्लन।
1: देखा जल संरक्षण की आवश्यकता पर ये अंकित पटेल जी बड़ा बढ़िया बात वार्ता करें।
0: हाँ भाई, काहे जरूरत बा, कैसे कैसे कहाँ दुरुपयोग होत, का बचत होत। सही बात भैया ललन, हम कही पानी के जरूरत बहुत बा। सवेरे से लेके संध्या तक हमेशा पानी के जरूरत रहा था, चाहे पेड़ पौधा हो, चिड़ै चिरुमन,
1: सबके
0: पशु,
1: हो
0: हाँ
1: भैया।
0: सबके जरूरत होत है। तो भैया हो तब के जरूरत तबे पूरी होए जब का कहा दिन हम तू पानी के बचत करब। हाँ
1: पानी की बचत किया जाए और नए नए उपाय सोचा जाए कि
0: सोचा जाए।
1: कैसे पानी का संरक्षण होए, और
0: सही
1: काहे
0: कह
1: से
0: रहा।
1: कि ये ऐसा प्राकृतिक चीज होए ना कि एकर मूल्य जोन बा आका नहीं जाए, इसका कितना ज़्यादा जरूरी भाई।
0: भाई मूल्य तभी आका जब बहुत प्यासा रहा, अब वहाँ समय पानी कहूँ न दिखाई तब समझ में आ जाए था इतना पानी
1: कितना
0: जरूरत
1: जरूरी
0: है।
1: भाई।
0: तो भैया पानी के बहुत जरूरत ही, बड़े कहावा ना, जल ही जीवन है। जल है तो कल है।
1: सही
0: तो
1: बात
0: भैया
1: बा।
0: हो जल बचाओ बहुत जरूरी बा, जल के बचत बहुत जरूरी बा। नहीं तो पता चली कि पहले के हमारे राजा दादा कुआं तालाब में पानी देखे रहे, आज नल में, कल आवे वाले समय में पानी कहूँ
1: दिखाऊ
0: गड्ढा
1: ना
0: में
1: मिल।
0: देखे न
1: सही
0: मिले।
1: बात बा।
0: तो भैया जरूरी बा कि जल के बचत किया जाए, पानी के संरक्षित किया जाए। और देखा हो बात बात कही होत रही खेती किसानी में जौन बाटे है, कौनों भी फसल ले के पहले
1: का
0: एक
1: किया
0: तूरे के
1: जाए।
0: बाद दूसरे तूरे में का करे कि भाई सबसे पहले तो अगर माटी के जांच हो जाता है तो
1: हाँ
0: का कहा थी नहीं पता चल जाए हमारे खेते में का तत्व तो कमी बे, का तत्व तो कमी नहीं
1: नहीं।
0: बे। काहे से ज़्यादातर बीमारी आजकल देखा फसल में बिना दवाई छिड़के फस होत ना ही कौनों साग सब्जी, तो कहूँ न कहूँ बीज जनित के साथ साथ मृदा जनित भी बेरामी लागत बा।
1: लग जाता
0: तो
1: लग जाता।
0: माटी के जाँच ये भी जरूरी बा, कौने तत्व कमी बे, कौने तत्व को ना का रोग बेरामी हमें लग सकत है। तो जैया भैया माटी की जांच भय से कृषि वैज्ञानिक भैया अरे बताए दे कि इमें ई तत्व तो कमी बे, ई फसल लेबर तो ज़्यादा अच्छा रहे
1: हाँ तो
0: भैया।
1: यह तरीके से अपन मन पोषक तत्व तो डालन, तो यही विषय पे बातचीत बा भैया कि मिट्टी की जांच क्यों और कैसे। मनोज कुमार सिंह से ये बातचीत बा, जय कृष्णाना शर्मा जी बातचीत करे हैं, तो आवे किसानन के सुनवावा जाए कि काका बातचीत करे हैं और कैसे कैसे में जानकारी लें।
0: सुने किसान भैया।
2: किसान भाई एक समय

0: रहल कि ढैचा सनई गोबर के खाद नीम के खली पोखरा के मिट्टी खेत में डालल जात रहल तो पैदावार निश्चित रूप से जौन होकर गुणवत्ता अच्छी रहल, लेकिन अधिक पैदावार के चक्कर में रासायनिक उर्वरकन के अंधाधुंध प्रयोग होए लगल जोने से कि आज माटी का प्रदूषण बढ़त चल जात बा। एकरे लिए सबसे बढ़िया तरीका हो कि मिट्टी के जांच करावल जाए और जितना संस्तुत उर्वरकन का मात्रा है उतने प्रयोग करें। आज कुछ यही तरह के बातचीत हो मिट्टी की जाँच क्यों और कैसे, हर किसान भाई के आकाशवाणी के भी माध्यम से बतावल जाता है कि मिट्टी की जांच बहुत जरूरी हो, इससे खेती में आर्थिक लागत भी कम आवत और मिट्टी के प्रदूषण पे भी नियंत्रण कीन जा सकत है। आज बातचीत का विषय हो मिट्टी की जांच क्यों और कैसे पे जानकारी देव दे। हमारे बीच में डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी आल बाटे विशेषज्ञ के तौर पर। सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हो। हम आपसे जानल चाहब कि एक आदर्श ढंग से मिट्टी की जाँच करावे दे किसान भाई इनके कब समय का चुनाव करे के चाहिए, कब खेत खाली रहे और कौन तरीका अपनावे के चाहिए, इस संबंध में बतावें।
1: आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना किसान भाई तभी संभव है जब उनको ये पता चले कि किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा उनके खेत में उपलब्ध है, क्योंकि यही मात्रा पौधों की वृद्धि और विकास के लिए और फसलों के पैदावार पर को नियंत्रित करती है। इसलिए इनकी संपूर्ण जानकारी किसान को होना नितंत आवश्यक है। यह जानकारी केवल मिट्टी की जांच से ही प्राप्त की जा सकती है।
0: जी
1: किसान भाई सर्वप्रथम प्रत्येक खेत से एक प्रतिनिधि मिट्टी का नमूना लें। अगर खेत में फसलों की पैदावार में मिट्टी की बनावट, संरचना और स्थल में स्पष्ट रूप से विभिन्नता दिखे, तो प्रत्येक विभिन्नता के लिए अलग-अलग जगहों से मिट्टी का नमूना लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके खेत में समानता के तौर पर जो है बड़े क्षेत्र में एक समान विशेषता दिखे, तो एक हेक्टेयर में एक दो नमूने से भी काम चल जाता है।
0: सिंह साहब, ये जानल चाहब कि जैसे कई बार होता है कि खेत में एक ही खेत में दो तरह के कहीं विभाजन के हिसाब से कहीं उसरीली मिट्टी रहता है, दूसरी तरफ बहुत अच्छी मिट्टी रहता है,
1: जी
0: तो मैं दो नमूना निकाले के चाहिए उन्हें।
1: जी दो नहीं सब, तब तीन चार नमूने निकालिए, दो
0: हाँ हाँ
1: उसरीली से, दो सामान्य से,
0: अलग अलग वो हिसाब
1: जगहों से,
0: से नामकरण करें।
1: रेंडम तरीके से जो
0: हाँ,
1: है।
0: और बेहतर समय जैसे खरीफ और रबी दो महत्वपूर्ण फसल हैं, ओकरे बीच में कौने समय में खेत खाली रहे तो आदर्श ढंग से मिट्टी की जांच करावे के चाहिए, रबी के बाद या खरीफ के बाद।
1: मिट्टी की जांच जो है अपनी आवश्यकता अनुसार फसल की कटाई के बाद ही करिए।
0: हाँ, खास तौर से रबी के बाद ज़्यादा समय मिल जाता
1: हाँ,
0: है,
1: ज़्यादा
0: खेत
1: मिल
0: खाली
1: जाता
0: रहते
1: तो
0: हैं।
1: हाँ, तो रबी के बाद जो है कटाई के बाद जो है वो क्या से मिट्टी की जांच करिए।
0: जी
1: और किसान भाई सबसे पहले जो है किसान खेत को अपने जो है कई जगहों पर निर्धारित कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से मुझे मिट्टी लेने से पूरे खेत का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ऐसी दशा में 8-10 स्थानों से जो है मिट्टी का चयन कीजिए। फिर प्रत्येक जो चिन्हित स्थान है उसके घास फूस को खुरपी से अच्छी तरीके से हटा लें।
0: कितनी गहराई तक खुदाई करें मिट्टी के?
1: 15 सेंटीमीटर
0: 15 सेंटीमीटर
1: 15 सेंटीमीटर तक करते हैं।
0: एक
1: जब
0: ही जा उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी तो ऊपरे रहते ज्यादा।
1: जी जी
0: जी जी
1: तो खुरपी से जो है घास को जो है अलग कर लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान सदैव रखते हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो है नष्ट न होने पाए। इसके पश्चात जो है खुरपी की सहायता से मिट्टी को अंग्रेजी के भी अक्षर के समान,
0: जी
1: भी अक्षर के आकार में 15 सेंटीमीटर गड्ढा खोदते हैं। फिर इसे भी आकार के गड्ढे में किसी भी तरह से या दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर मोटी परत की लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई तक छीलते हुए मिट्टी को निकालते हैं। यही क्रिया प्रत्येक जहाँ जहाँ 8-10 जगह आप चिन्हित किए हैं जहाँ से मिट्टी लेना है, प्रत्येक जगह यही करते हैं। इसके बाद प्रत्येक स्थान से निकाली हुई मिट्टी को 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत को साफ पॉलिथीन में या बाल्टी में एकत्र कर लेते हैं।
0: जी
1: एकत्र करने के बाद बढ़िया से मिला लेते हैं। साथ ही साथ इसमें मौजूद जो कंकड़ पत्थर
0: वो
1: के
0: सब
1: टुकड़े
0: छटनी कर
1: रहते
0: दें।
1: हैं उसको छांट कर हटा देते हैं। फिर इस मिट्टी को साफ कागज पर या अखबार पर डाल करके जो है समतल गोले के रूप में फैला करके चार समान भागों में बांट देते हैं।
0: जी
1: आमने सामने के हिस्से की मिट्टी को बचा कर रखते हैं, वो बगल की दोनों मिट्टियों को जो है फेंक दिया जाता है।
0: जी
1: यह क्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक लगभग जो है आधा किलो मिट्टी न बचे।

0: जाए
1: जी। अब जो पैकेट बने तो पे गाटा के नाम कौने खेत का मिट्टी हो पहचान बदे
0: जी
1: ओके रखा है, ये कहाँ पहुँचा है? जिला स्तर पे मिट्टी जांच प्रयोगशाला है या ब्लॉक स्तर पे है?
0: नहीं, थैले की तैयारी पर भी जो है किसान भाई और ध्यान दें, उस थैले पर जो किसान का नाम लिखा होना चाहिए
1: जी जी,
0: पत्राचार का पता होना चाहिए
1: जी,
0: खेत का खसरा या प्लाट संख्या होनी चाहिए
1: जी,
0: खेत की पहचान के चिन्ह होने चाहिए, पूर्व में ली गई फसल का नाम होना चाहिए, आगे ली जाने वाली फसल का नाम होना चाहिए, खेत की मिट्टी में कोई बड़ी समस्या हो
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ।
0: उसका वर्णन करना चाहिए,
1: यानी खेत में पूर्व में कौन फसल लेल गेल आगे काले होके हो, दोनों का जानकारी
0: हाँ,
1: भी देना
0: हाँ,
1: चाहिए
0: उस पर लिखना है
1: जी।
0: इसके बाद जो है इन सब सूचनाओं के दो टैग बनाते हैं, एक टैग को थैले के अंदर रख दिया जाता है और दूसरे टैग को जो है थैले के बाहर धागे की सहायता से लटका दिया जाता है।
1: जी।
0: अब यह नमूना मिट्टी के जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो जाती
1: जी
0: है।
1: जी, प्रयोगशाला कहाँ कहाँ पे हो? सचल प्रयोगशाला कभी का व्यवस्था है हर जनपद में?
0: जी, हर
1: तो
0: जगह, हर
1: सचल
0: जनपद
1: का
0: में है,
1: गांव गांव जाता है?
0: हाँ लोग जाते हैं जी उनके
1: सचल प्रयोगशाला खुद गांव में चल के जाता है कि ब्लॉक पे ही या तहसील पे या?
0: नहीं, सामान्यतया जो है ब्लॉक स्तर पर अब जो है सुविधाएं मुहैया हो
1: अच्छा,
0: गई
1: जिला
0: है।
1: पे जिले की जरूरत नहीं हो
0: नहीं, जिला पर जाने
1: तो
0: की नहीं
1: उके किसान
0: जरूरत
1: भाई
0: है,
1: के कुछ फीस भी देख होते कि फ्री जांच होते?
0: वो फ्री जांच होती
1: फ्री
0: है
1: जांच
0: सर,
1: है। रिपोर्ट कई दिन में लगभग मिल जाते?
0: एक हफ्ते में।
1: जी, अब ये संबंध में और जानकारी आप दें किसान भाई के का ओके करें?
0: किसान भाई जब भी मिट्टी का नमूना खेत से लें तो इस कुछ विशेष बातों को आप ध्यान रखें। मृदा का नमूना लेते समय सबसे उत्तम समय जो होती है कटाई के बाद का होता है।
1: जी जी
0: यदि किसी विशेष कारणवश खड़ी फसल में ही नमूना लेना पड़े तो यह बात का ध्यान रखें कि खड़ी फसल में खाद का प्रयोग कम से कम 30 दिन पहले का न किया गया हो। खाद का प्रयोग जो है 30 दिन पहले का
1: जी
0: के पहले का किया गया हो, 30 दिन के अंदर अगर खाद का प्रयोग किए गए हैं तो उसका नमूना नहीं लेना चाहिए,
1: मतलब मिट्टी जांच के पहले 30 दिन के अंदर खाद का प्रयोग
0: नहीं
1: न
0: होना
1: करें,
0: चाहिए।
1: रासायनिक या कौनो भी
0: रासायनिक या उर्वरक
1: कोई
0: दोनों
1: कौनो भी
0: दोनों
1: खाद
0: उर्वरक या खाद दोनों जो है
1: जी।
0: किसी का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा, अब जब रिपोर्ट किसान भाई के मिल जाते हैं
0: जी
1: तो मैं सब निर्देश रहा था वही हिसाब से उर्वरकन का प्रयोग
0: हाँ
1: करके
0: जी, उसकी संतुलित मात्रा रहती है, किस तत्व की कमी है
1: जी।
0: उस हिसाब से उस तत्व को दीजिए, और ऐसा नहीं है कि केवल जो है यूरिया को बढ़ाते जाइए या डीएपी को बढ़ाते जाइए, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है जो रिकमेंडेशन में आई हो आपकी जांच में उसके आधार पर जो है आप उसका जो है उस हिसाब से उस न्यूट्रिएंट का
1: बिल्कुल
0: प्रयोग
1: बिल्कुल,
0: करें।
1: कई बार होता है किसान भाई अधिक से अधिक उर्वरकन का प्रयोग कर देते हैं, सोचे थे कि बहुत ज्यादा फायदा मिल
0: हाँ
1: जाए
0: जी जी जी
1: तो उसे कोनो फायदा नहीं होता, कई बार
0: तो
1: पौध जल जाते हैं छोटा
0: जी
1: छोटा,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: कोनो चीज हो
0: जैसे
1: भाई।
0: यूरिया का छिड़काव कभी कभी जो है 2% मात्रा का लोग फोलियर एप्लीकेशन कर देते हैं कि जो है इसका वृद्धि और विकास ज्यादा होगा, पता चला कि वो जल गया, इसलिए जो रिकमेंडेड जो है जांच के बाद जिस तत्व की कमी पाई जाए
1: जी
0: और किस तत्व की कितनी मात्रा देना है उसके आधार पर ही किसान भाई जो है
1: जी
0: खेत में प्रयोग करें।
1: बिल्कुल, और जो आज की स्थिति है वैज्ञानिक प्रयोग के हिसाब से, आज जो रासायनिक उर्वरकन का अंधाधुंध प्रयोग हो तो मैं किसान भाई इनके का सलाह दी है कि मतलब कौन कौन खाद के इसमें ज्यादा उपयोग करें?
0: किसान भाई अपने जो है घर के कूड़ा करकट गाय भैंस के गोबर को अच्छी प्रकार से सड़ा करके जो है गोबर की खाद का प्रयोग करें, बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम जो है
1: बिल्कुल
0: उनको
1: जी हाँ।
0: बंद करना है, लेकिन जो है आप कार्बनिक पदार्थ का मात्रा ज़्यादा प्रयोग करने से खेत मजबूत रहता है, खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, फसल के उत्पादन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है बनी रहती है। उर्वरक के प्रयोग करने से कहीं न कहीं जो उर्वरक के रेजिडुअल इफेक्ट पड़ते हैं
1: जी जी
0: जिससे सॉइल का विनाश हो रहा है और खाने वाले व्यक्ति का भी कहीं न कहीं जो है नुकसान हो रहा है, और किसान की जो है लागत ज़्यादा आ रही है तुलनात्मक उनके उत्पादन के।
1: बिल्कुल, जब अनावश्यक उर्वरकन का प्रयोग हुई तो लागत बढ़ी खेती में और
0: जी
1: उत्पादन का लाभ कम मिली। मेड़बंदी के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहिए कि कितना जरूरी है? आज गांव में देखल जाला कि खेत में भले हल न चले लेकिन मेड़ दोनों तरफ के किसान इतना छाट छाट के पतला कह दिए हैं, उससे मिट्टी का कितना उपजाऊपन का नुकसान कितना हो?
0: जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न

0: किया है। मेड़बंदी जो है अति आवश्यक है। मेड़बंदी से ये लाभ होता है कि पानी आपके खेत में जो है एकत्रित रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: और जो है उसके खरपतवार जो है आप मेड़बंदी के निकालते रहिए। मेड़ के बहुत छटाई करने की आवश्यकता
1: जी
0: नहीं है।
1: भैया, मिट्टी की जांच क्यों और कैसे पे आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मनोज कुमार सिंह जी, आशा किसान भाई ऐसे लाभ उठाई हैं, आपको जानकारी दे दे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया,
1: हाँ ललन भैया।
2: देखा ये बातचीत रही मिट्टी की जांच क्यों और कैसे, ये मनोज कुमार सिंह से जय कृष्ण नारायण शर्मा जी फरियाई फरियाई जानकारी लेहन की मैं माटी के जांच का जरूरत बा, कैसे किया जाता और जांच।
1: नमूना कैसे लई हैं, कौने खेते के कैसे कितना के सेंटीमीटर खोदे के चाहे, वो नमूना लई के पन्नी में भर के भैया थैली में पॉलीथीन के काका में नाम लिखे चाहे खसरा खतौनी के नाम
2: सारी चीज़ बताएं
1: है तो
2: कि ऐसे एक
1: हाँ।
2: खेते से माटी लेत है तो चार अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेंगे, काहे से कि
1: जरूरी
2: ऐसा ना हो
1: बात,
2: कि एक ही जगह से मिट्टी ले ल तो अलग अलग ओकर
1: सही
2: पोषक
1: बात
2: तत्व हो
1: है।
2: सकत है ना
1: और
2: उमन।
1: सावधानी भी बरते चाहे माटी लेत कि भैया ऐसा पेड़ के नीचे जहाँ पाती सड़त वहाँ का नहीं लेने, अच्छा परिणाम ना आए, या मेड़ किनारे के ना ले के चाहे, तो ये सब चीज़ की सावधानी बरते चाहे माटी की जांच में, तभी फायदा हो। तो भैया हो, माटी के जांच जरूरी बात, उसे बहुत कुछ फायदा हो सकत है, पैसा का बचत भी हो सकत है, फसल भी बढ़िया हो सकत है।
2: सही बात बा। अच्छा बजू भैया एक बात और कि देखें किसान भाई लोग अपन खेती किसानी तो करते ही हैं, लेकिन अगर मौसम के ध्यान में रखी कर अपन खेती किसानी करही तो उनके स्वास्थ्य भी उनकर अच्छा रहे, उनकर खेती किसानी भी बढ़िया होए। ऐसे देखें इसमें घाम बहुत लगता
1: कही गए
2: तो
1: भैया।
2: घाम के ध्यान में रख कर सवेरे संझा अपन काम करें और ऐसे का हुए कि वो भी स्वस्थ रहें, उनकर पशु प्राणी भी स्वस्थ रहें और उनकी खेती भी बढ़िया रहे।
1: भैया ये कुआर है, और पहले से कहावत बा कुआरऊ घाम अगर लग जात है ना तो सीधा बुखार ही होत
2: बुखार ही छुड़ा
1: भैया।
2: देता। सही
1: हाँ,
2: बात बा।
1: बेरामी बढ़ जाता है तो जरूरी बा है कि अगर निकरे के बाद तो मुड़े पर नौछा नौछा बांधे रहा जवन बा है, पानी की कमी ना हो चाहे पानी पियत रहे कि चाहे संध्या सवेरे अपने लड़कियन का दिलन के भी देखें कि दोपहरिया में यार बाहर ना निकल जाए जवन बाटे है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जौन पशु पाले है यहाँ समय उनका देखा बहुत जरूरी बा, काहे
2: बहुत
1: से
2: जरूरी
1: उनका
2: बा।
1: समय से राशन जितना भी खान पान बा उनका संतुलित आहार दे के चाहे पानी पियावत रहे चाहे अभी ताज़ा पानी है।
2: सही
1: आज
2: बात बा।
1: संझा के देखा बहुत ज़्यादा मच्छर लागा थे तो हो सका तो धुआं सुलगावे के चाहे है, तो उसे जैया मच्छर उनके ना
2: मच्छर से
1: लागे।
2: राहत हो। अच्छा एक बात और कहे कि बाप जो श्रोता किसान श्रोता हमारे लोगों की बातचीत सुनत हैं कि हमरे चंग के पंचायत घर कार्यक्रम से संबंधित कोनो सुझाव बा कोनो प्रतिक्रिया बा तो एक नंबर बा 800-492-6250।
1: एक बार नंबर हो भैया अंग्रेजी में बताई दे।
2: अच्छा 800-409-2625।
1: भैया हो, जितना किसान भाई नंबर लिख लिए हुए ही, अब सबके घरे में अब मोबाइल हो गए अब हाँ। अब वह पे लड़कियन देखा है व्हाट्सएप चलावथिन, तो अपना अगर संदेश भेज सकत नहीं अपने लड़कियन से लिखवाए दें कि भैया ये कार्यक्रम हमका अच्छा लगा तो हमें और चीज़ हो जाए
2: सुधार
1: और
2: करें।
1: अच्छा हो जाए जवन बाटे है, तो भैया वह पे विचार किया जाए, संदेश जरूर भेजे। अब देखा समय हो गया अब चले कि तो पंचन साज्ञा लजे पंचो
2: राम
1: राम
2: राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो के स्वर्ण जयंती संस्करण का किया शुभारंभ। जिले में 1340 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। श्री योगी ने की घोषणा, भदोही जिले को अब संत रविदास नगर भदोही के नाम से जाना जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अयोध्या मेडिकल कॉलेज में जल्द ही हृदय, गुर्दा और गैस्ट्रो रोगों से संबंधित 4 नए विभाग खोलने की घोषणा। और सुल्तानपुर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर ले जा रही एम्बुलेंस हुई हादसे का शिकार, 4 की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका।

0: चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कालीन व्यापार मेले इंडिया कारपेट एक्सपो के स्वर्ण जयंती संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार कारीगरों और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और इस क्रम में विभिन्न योजनाएं और सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, जिसका परिणाम है कि भदोही सहित कई जिलों में एक मजबूत एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बन गया है।
1: इस जनपद के पास जीआई की पहचान है, ओडीओपी का प्लेटफॉर्म है, कारपेट एक्सपो मार्ट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सीपीसी का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है। एक मजबूत एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, इंटरनेशनल बायर से उनका डायलॉग भी है और पूरे उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नेटवर्क है। हमने कनेक्टिविटी को कितना बेहतर किया है, यानी आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार विंध्य एक्सप्रेसवे के रूप में जब सामने आएगा तो संत रविदास नगर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में मात्र 6 घंटे में आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होंगे और वहां के कार्गो का उपयोग करते हुए आप सीधे अपने कारपेट को दुनिया के किसी भी मार्केट तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भदोही जिले को अब संत रविदास नगर भदोही के नाम से जाना जाएगा और उन्होंने जिले में करीब 1340 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही कालीन उद्योग से जुड़े निर्यातकों, विक्रेताओं और उद्यमियों से संवाद भी किया। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के डॉ भीम राव सभागार में आयोजित अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित प्रांतीय शिक्षक गरिमा कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान श्री योगी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पर जोर देते हुए कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटना राष्ट्र के प्रति अपराध है।
1: कैसा भारत चाहते हैं? बिखरा हुआ भारत, बटा हुआ भारत, जातीय खेमों में आपस में ही लड़ता हुआ भारत। याद रखना, अगर इस प्रकार के भारत की कल्पना करते हैं तो फिर हम अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते हैं। एक ऐसा भारत जो एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, हम सबको मिलकर के उस भारत के लिए काम करना है।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज अयोध्या के मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक परिसर में आयोजित मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज में जल्द ही 4 नए विभाग खोले जाएंगे।
2: हमारी सरकार 4 नए विभाग खोले जाएंगे, हृदय रोग, किडनी, गैस्ट्रो, इसके अलावा जो अन्य आवश्यकताएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको भी हम बढ़ाएंगे और एसजीपीजीआई लखनऊ से अयोध्या धाम के मेडिकल कॉलेज को हम स्पोक एंड हब से जोड़ेंगे। इसके आईसीयू को हम स्पोक बनाएंगे और हब एसजीपीजीआई रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
3: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
4: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ा

0: रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
2: मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। इटावा जिले में पुलिस ने आज ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर जनपदीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस संबंध में पुलिस ने युवती और किशोर सहित गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर इन सदस्यों को 22 चौराहे पर घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने तलाशी में कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, पासपोर्ट, ग्राहकों की सूची और करोड़ों के लेन देन का डिजिटल डेटा भी बरामद किया है। सुल्तानपुर जिले में आज सुबह शहीद जवान का पार्थिव शरीर ले जा रही सेना की एम्बुलेंस एक अज्ञात ट्रक से जा टकराई, जिसके नतीजे में चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अयोध्या सुल्तानपुर बॉर्डर के हलियापुर के पास हुआ। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि यह एम्बुलेंस शहीद सूबेदार मेजर सत्यवान का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से उनके पैतृक निवास गहिला दुधैला देवरिया ले जा रही थी। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सूबेदार मेजर का इलाज चंडीगढ़ के अस्पताल में चल रहा था, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। पेश है एक रिपोर्ट।
4: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया।
3: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो के स्वर्ण जयंती संस्करण का किया शुभारंभ। जिले में 1340 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। श्री योगी ने की घोषणा, भदोही जिले को अब संत रविदास नगर भदोही के नाम से जाना जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अयोध्या मेडिकल कॉलेज में जल्द ही हृदय, गुर्दा और गैस्ट्रो रोगों से संबंधित 4 नए विभाग खोलने की घोषणा। और सुल्तानपुर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर ले जा रही एम्बुलेंस हुई हादसे का शिकार, 4 की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं ज्वार भाटा फिल्म के गाने के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत रचना इंद्रजीत सिंह तुलसी की है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की गीत रचना। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और फिल्म का नाम है डार्लिंग डार्लिंग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर नटवरलाल में। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और इसकी धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत कार्यक्रम सुगम संगीत। और इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं सचिन कुमार के स्वर में भजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सूरदास की इस रचना के साथ, गायक कलाकार सचिन कुमार।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सचिन कुमार के स्वर में भजन। अब आपको सुनवाते हैं कबीर दास की रचना। गायक कलाकार हैं सचिन कुमार।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सचिन कुमार के स्वर में भजन। सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं नेहा गुप्ता और वंदना राठौर।

0: चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को। वंदना राठौर का नमस्कार। श्रोताओं, आपके खूबसूरत से, अपनाइयत से भरपूर संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और आपके संदेशों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका।
1: नमस्कार वंदना जी, दोस्तों, सुधी श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम चिट्ठी आई है में।
0: और नेहा जी
1: जी,
0: पहला संदेश जो मैंने उठाया है वो आया है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से
1: जी,
0: दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा जी का। और इनका कहना है कि 26 सितंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पनघट के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के लिए जरूरी वित्तीय साक्षरता, जो कि अर्चना पांडे जी से जयश्री गुप्ता जी की जो बातचीत थी इस विषय पर वो सुनी, बहुत ही रोचक लगी, प्रेरणा से भरी हुई थी। और इस लाजवाब प्रस्तुति के लिए पूरे केंद्र को बधाई हमारी तरफ से।

0: 28 सितंबर को आपके केंद्र से विशेष एक कार्यक्रम गया था लता मंगेशकर जी के जन्मदिवस पर जो समर्पित था, ये प्रस्तुति मन को छू गई, तो इसके लिए भी दिल से शुक्रिया।
1: दिलशाद हुसैन जी, बहुत शुक्रिया। आपको पनघट कार्यक्रम जो कि वित्तीय साक्षरता पर आधारित था, अर्चना पांडे जी आई थी एक्सपर्ट के तौर पर। मैं कहूँ कि अर्चना पांडे जी खुद आत्मनिर्भर हैं और उन्हें पता है कि आर्थिक संबल क्या होता है। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए एक संबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जीवन ऐसे ही फलता फूलता रहे। तो आपका ये जो साधुवाद है प्रदीप मिश्रा जी तक, अर्चना पांडे जी तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और जो हम लोगों ने 27 और 28 सितंबर को लता दीदी पर आधारित कई कार्यक्रम पेश किए हैं, क्योंकि उन्होंने इतने रंग, इतनी साधना, इतने सुर गानों में डाले हैं कि हम लोग उनके मुरीद हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया, इसी तरह से आपकी खिदमत में कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे।
0: और नीरा त्रिपाठी जी अशोकनगर प्रयागराज से हमसे जुड़ रही हैं। नीरा जी कहती हैं कि 23 सितंबर को किस्सा गोई कार्यक्रम के अंतर्गत पहला भाग सुना ताई इसरी का
1: जी,
0: दिल को छू गई ये कहानी। आप दोनों का पेश करने का जो अंदाज था वो गजब का था। ऐसा लग रहा था सुनते हुए कि हम कोई नाटक देख रहे हों साक्षात। बड़ी ही वो मार्मिक कहानी लगी, कथा व्यथा जो थी वो दिल को छू लेने वाली थी। आधे घंटे कैसे बीते पता ही नहीं चला। और आगे नीरा जी कहती हैं कि नमस्कार प्रयागराज के अंतर्गत ओजोन दिवस पर नीलम श्रीवास्तव जी की जो प्रस्तुति थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। बहुत ही विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरह से वैज्ञानिक अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं पृथ्वी को सुरक्षित रखने की, और कुछ कोशिशें हमारी ओर से भी होनी चाहिए जब हम प्रकृति को साफ सुथरा रखेंगे, वातावरण को भी। और नमस्कार प्रयागराज के ही अंतर्गत श्री गणेश जी का जो भजन सुनवाया गया था, रिद्धि सिद्धि के बारे में जो बातें बताई गई थी उनसे जुड़ी हुई, वो बहुत अच्छा लगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। शांति दिवस पर भी नमस्कार प्रयागराज में नीलम जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। सोनम जी ने जब डाकिये के महत्व के बारे में बताया
1: जी,
0: वो भी दिल को छू गई बातें। और श्रोताओं के जो संदेश होते हैं उन्हें जब शामिल किया जाता है, साथ ही साथ विषय के अनुसार जब गीत सुनाए जाते हैं तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है। तो इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए सभी को हमारा शुक्रिया, आभार।
1: बहुत शुक्रिया नीरा त्रिपाठी जी, आपका पत्र जब आता है तो लगता है कि अरे बहुत सारे भावों को समेटे हुए होगा, और देखिए हुआ भी ऐसा। ताई इसरी कहानी का पहला भाग आपने सुना और आपको अच्छा लगा। सच में जब उनके व्यक्तित्व को हम देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, और कृष्णचंद्र साहब ने जिस तरह से उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके बारे में लिखा है, दिल कहीं ना कहीं ठहर सा जाता है और लगता है कि अरे शायद वो मुझसे भी मिलती जुलती हुई सी हैं। हर किसी से वो मिलती जुलती हुई सी ही हैं। तो ठीक है, हम ध्यान रखेंगे कि इसी तरह की कहानियाँ आप सभी के समक्ष हम लाते रहें, और आप कहानियों को ज़रूर सुने और गुने। नमस्कार प्रयागराज, आपको पसंद आया। सवेरे के हमारे जो पैनलिस्ट आते हैं, गार्गी जी हों, दीप्ति जी हों, सोनम जी हों, नीलम श्रीवास्तव, नीलम सिंह, अखिलेश जी, मोना जी, प्रेमेंद्र जी, इन लोगों की प्रस्तुतियां अकाबिले तारीफ रहती हैं। तैयारी भी करते हैं तभी शायद आपको रास भी आता है, पसंद भी आता है। कई बार फेसबुक पर मुझे पता है कि पोस्ट नहीं हो पाता है तो आप लोगों की प्रतिक्रिया शामिल नहीं हो पाती है। मैं कहूँगी कि क्यों ना जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी प्रतिक्रिया आप भेज दें, और जो पुराने पोस्टर्स, मान लीजिए कई बार नेट की दिक्कत हो सकती है, उस पर भी अगर आप संदेश भेजते हैं तो वहाँ से हमारे जो पैनलिस्ट हैं संदेशे ले सकते हैं, और आप सभी के नाम, आप सभी के विचार, और हम सभी एक साथ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
0: कोठा पारशा प्रयागराज से माधुरी कुशवाहा जी जुड़ रही हैं, और माधुरी जी का कहना है कि 17 सितंबर को बोलते नगमे कार्यक्रम सुना, बड़ी ही खूबसूरत प्रस्तुति रही, तीनों गाने लाजवाब थे। और रंगीला फिल्म का जो गाना आप लोगों ने सुनाया और जो जानकारी दी, गाना तो बहुत ही खूबसूरत था, स्वर्ण लता के बारे में जो जानकारी मिली उससे बड़ा दुख भी हुआ कि इतनी कम उम्र में वो चली गई, और उनकी आवाज़ का जादू हम सबके दिलों पर भी छा रहा था। जिस तरह से आप दोनों व्याख्या करती हैं गीतों की,

0: के साथ जो रोचक जानकारी देती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और जी एस कोहली और रूपी नैयर साहब के बारे में जब उनका जिक्र आप लोगों ने किया तो भी दिल को छू गई बातें। गाना तो बहुत ही सुंदर था, मेरी पसंद का भी था। और हाँ, मेरी पसंद का जो तीसरा गीत था वो गीत दिल के बड़े ही करीब है, जस्तजू जिसकी थी, रेखा जी की अदायगी का क्या कहना। बेमिसाल खूबसूरती है, लाजवाब अदायगी है उनकी। और ये फिल्म उमराव जान बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। और आप लोगों ने इतनी सुंदरता के साथ इस प्रोग्राम को सजाया, इतना अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। आप दोनों को शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद इसके लिए।
1: माधुरी कुशवाहा जी, आपके पत्र ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। बोलते हैं नगमे कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि तरह तरह के कलेवर भावों को समेटे हुए गीतों को हम शामिल करें, ताकि हम जिंदगी के हर पहलू को बड़े बारीकी तौर पर देख सकें। और जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो कोशिश रहती है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर लें, कुछ छूट जाए तो आप लोग अपने पत्र में लिख कर भेज दिया करिए। हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह से माधुरी जी, बोलते नगमे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, अच्छा लगेगा
0: और नेहा जी, सविता
1: जी।
0: सिंह जी हमसे जुड़ रही हैं, लेकिन इन्होंने कहाँ से लिखा है ये अभी दिखाई नहीं पड़ रहा
1: जी
0: है।
1: जी
0: अच्छा हाँ, राजापुर से ये हैं। और ये कहती हैं कि मैंने पनघट कार्यक्रम सुना, यूँ तो आकाशवाणी प्रयागराज दिल के बड़े करीब है, प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पनघट विशेष रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वो कार्यक्रम होता है जिससे हमारी पुरानी यादें, जो गांव से जुड़ी हुई बातें हैं, आत्मीयता से भरपूर जो होती हैं, उसका रंग एक दिखाई पड़ता है। और ऐसा लगता है कि सखियां हमारे साथ बैठकर हम ही से गुफ्तगू कर रही हैं, तो पूरी जो अपनाइयत की भावना होती है वो हमारे हृदय में भी आकर हमें भी ऐसा लगता है कि जोड़ देती है आकाशवाणी से। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अहमद हसनैन जी हमसे जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से ही, और ये कहते हैं कि हमें उर्दू कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए प्रदीप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अर्शिया जी का मकाला सुना था और खुर्शीद अंबर जी की शायरी सुनी, बहुत अच्छी लगी। और ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि AIR प्रयागराज सिर्फ इंटरेस्टिंग कार्यक्रम ही नहीं बनाता है, बल्कि ये समाज को कुछ देता भी है। नॉलेज, प्यार और यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी बहुत बहुत खूबसूरत प्रयास करता है, जिसके लिए हम तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। एक्सीलेंट सर्विस।
1: अहमद हसनैन जी, आप प्रयागराज से हैं और सविता जी राजापुर से, हमारे केंद्र के बड़े करीब है ये जगह राजापुर। अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित हुए इन कार्यक्रमों ने तो जादू कर दिया, जादू बिखेर दिया है। सच कहूँ तो लगता है कि अरे, जो सोचा था वो हो गया, और इसको बनाए रखा जाए, इसको और संवारते रहें। सविता जी, मैं कहूँ, आपको तो पता ही होगा, जब पनघट कार्यक्रम सुन रही हैं तो बहुत सारे पत्र आप लिखे, और हेलो पनघट भी होता है महीने के आखिरी दिन, या तो वो मंगलवार होता है या बृहस्पतिवार, उसमें भी आप सभी सुधीर श्रोता बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, फ़ोन करिए, और मन मुताबिक जिस तरह के आपके प्रश्न हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स के सामने रखिए और आपको जवाब मिलेगा। अहमद हसनैन जी, आपने कहा कि आप लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें अपनायत की भावना होती है और समाज को कुछ दे जाने का जो भाव है वो समाहित है। पता नहीं कैसे आप लोग के पहचान लेते हैं, वो भी दूर बैठे कार्यक्रमों से। उर्दू कार्यक्रम का जब लेआउट सामने आता है और प्रदीप मिश्रा जी और जावेद अहसन जब आते हैं तो उसमें बातें होती हैं कि नहीं, इस बार इनको ज़रूर शामिल करिए, इस तरह से रखिए, इसमें ये संदेश शामिल होना चाहिए। शायद जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, आप सभी सुधीर श्रोता हमारे समक्ष तो नहीं होते, लेकिन हाँ, जहन में रहते हैं, और ये बात रहती है, तभी शायद कुछ संभव हो पाता है अच्छा करने के लिए। तो अच्छा लगा कि आपको डॉक्टर अर्शिया का मकाला और खुर्शीद अंबर जी की शायरी पसंद आई, तो आपका साधुवाद तो हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएंगे।
0: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमसे जुड़ रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निकहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और ये सभी हमसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी नाराज़गी है आप लोगों से, क्योंकि हम लगातार संदेश भेज रहे होते हैं और आप लोग हमारे संदेशों को शामिल नहीं करते, जबकि हमारा जुड़ाव वर्षों से आकाशवाणी प्रयागराज

0: केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है दिल से।
1: अब्बासी जी भूल चूक माफी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये गलती वंदना जी की है उन्होंने कहीं छुपा दिया होगा लेकिन नहीं, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है सुधीर श्रोताओं। ये तो हंसी मजाक कार्यक्रम के दौरान ज़रूर होते रहना चाहिए ताकि माहौल अच्छा बना रहता है ना, रिश्ते भी मजबूत होते हैं। सईद अब्बासी जी, ज़रूर आपका पत्र शामिल होगा, और नहीं हो पाया होगा तो पिछले दिनों हम लोगों ने कहा कि क्रिकेट कमेंट्री जाती रही, इस कारण रह गया होगा, तो भाई माफ़ कीजिएगा। और अब हम अपने दिल को बिल्कुल साफ किए देते हैं और आप जहन में हमेशा हैं और रहेंगे, तो सुनिए ज़रूर हमारे केंद्र को ऐप के माध्यम से, OTT वेब्स के माध्यम से, और गूगल पर भी हम उपलब्ध हैं, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप आकाशवाणी प्रयागराज को सुन सकते हैं।
0: हमसे जुड़ रही हैं प्रीति लता जी जोशी प्रयागराज से, ये हमसे जुड़ रही हैं और ये लिखती हैं कि 30 सितंबर को प्रसारित गृहलक्ष्मी कार्यक्रम के अंतर्गत जो दो सखियां थीं निकहत सिद्दीकी और संगीता कनौजिया जी, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी रिटायरमेंट। वो कहानी सुनने के दौरान ऐसा लगा कि एक एक आवाज़ जैसे जैसे हमारे दिल को छू रही थी, हमारा दिल ठहर जा रहा था। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी, अंदाज बहुत बढ़िया था दोनों का, बहुत ही सुकून शांति मिल रही थी और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर रही थी उन दोनों की बातें जो कि कहानी से जुड़ी हुई थी। तो सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
1: प्रीति लता जी, कहानी रिटायरमेंट बहुत ही सुंदर कहानी, कि जब एक पड़ाव ऐसा आता है जब समाज भी आपसे बहुत कुछ आशा नहीं करता और घर भी आपसे कुछ आशा नहीं रखता, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे जगाए रख सकते हैं। बहुत सुंदर कहानी लिखी थी संगीता कनौजिया जी ने और साथ दिया निकहत सिद्दीकी ने, तो पसंद किया आपने, शुक्रिया।
0: और नेहा जी, अब हमसे जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए हमारे बहुत सारे श्रोता, जिसमें नाम शामिल हो रहा है राजकुमार दौड़ी जी का, राजकुमार रेवाड़ जी का, अफजल ताज, भागवत वर्मा जी, मुकेश कश्यप, जियाउर रहमान, मोहम्मद फरमान, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, सीताराम, गगनदीप थांडे, निसार सलमानी, ये हैं सुदर्शन शाह, सुखविंदर सिंह जोड़ा, गोविंद, रियासत हुसैन सिद्दीकी, गोपेंद्र नाथ सिन्हा, छन्नू लाल श्रीवास, शिवा गोप, बलकरण वर्मा, महाराज कीर्तनपुरी, फगुराम यादव, दिलावर खान और दिनेश वर्मा जी।
1: बहुत शुक्रिया आप सभी सुधीर श्रोताओं का जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, संदेश भेजे हैं। इसी तरह से हमारे केंद्र के साथ जुड़े रहिए, शुक्रिया आप सभी का।
0: और अब समय हो चला है कि हम अपने श्रोताओं को बताएं अपना पता। तो श्रोताओं, लिखिए हमारा पता, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, द्वारा केंद्र निदेशक, 7-9 दयानंद मार्ग, आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा पिन कोड नंबर है 211001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो श्रोताओं, हमें रहेगा इस पते पर आपके संदेशों का इंतजार, और अब दीजिए हमें इजाजत।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी नेहा गुप्ता और वंदना राठौर, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम न्यूज और AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाज़ों में। गीत जावेद अख्तर का था और संगीत अनु मलिक का। अब जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उससे हमने लिया है एक दिन फिल्म से। गायक कलाकार हैं अरिजीत।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं धड़क 2 फिल्म का गाना, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जुबीन नौटियाल ने। गीतकार रश्मि विराग, संगीतकार जावेद मोहसिन।

धड़क 2 फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत कार्यक्रम आज इतवार है, इसमें आपको सुनवाते हैं शांति मेहरोत्रा की लिखी झलकी, आराम बड़ी चीज है।

0: ये सुबह सुबह क्यों नाटक का? नीता जरा देखना भाई कौन है।
1: अरे आ रहे हैं, कहिए।
2: जी मंजुल कुमार जी यहीं रहते हैं क्या?
1: क्यों, इस नेम प्लेट पर आपको उनका नाम लिखा दिखाई दे रहा है क्या?
2: ओहो आप तो बुरा मान गई। बात यह है कि सामने वाले मकान में बताया था कि वे यहीं कहीं रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं।
1: बहरहाल यहाँ तो नहीं रहते हैं।
2: जी आपके मकान के आसपास भी नहीं?
1: जी नहीं। और कुछ जाने कहाँ से चले आते हैं पूछताछ करने।
0: नीता बहुत दिनों से एक बात महसूस कर रहा हूँ।
1: कौन सी बात?
0: यही कि तुम्हारी जैसी पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है।
1: सौरभ जी अकारण तो आप मेरी तारीफ करने से रहे, इसलिए भूमिका के बाद कौन सा काम करवाना है ये भी साथ ही साथ बता ही दीजिए।
0: वाह इसे कहते हैं आपसी समझ। बात मैं बाद में कहता हूँ, समझ तुम पहले ही जाती हो। अब जरा गौरव के हाथ एक प्याला गरम गरम चाय तो भिजवा दो फौरन।
1: और गौरव घर में ना हो तो?
0: अरे इतनी सुबह वो कहाँ चला गया?
1: अरे तुमसे पूछ कर ही तो स्कूल पिकनिक पे गया है ना।
0: अरे हाँ ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था भाई। तब तो ये नेक काम अब तुम ही को करना पड़ेगा।
1: सो तो मैं कर दूंगी, लेकिन आज तुम्हें दफ्तर जाने के लिए देर नहीं हो रही है क्या?
0: दफ्तर? आज दफ्तर जा ही कौन रहा है?
1: क्यों आज काहे की छुट्टी है? हमारा कॉलेज तो खुला है।
0: तुम्हारा कॉलेज खुला है तो तुम जाओ। माँ बदौलत ने तो एक दिन की छुट्टी ले ली है, पलंग पर पांव पसार कर दिन भर आराम फरमाएंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है।

0: मुंह ढक के सोइए।
1: तुम किस्मत वाले हो सौरभ, यहाँ तो छुट्टी के दिन भी आराम नसीब नहीं होता, काम दूना हो जाता है। और हाँ, अच्छी याद आई, आज तुम्हें दिन भर फुर्सत रहेगी ना, जो सामान बाजार से लाना है ना उसकी एक लिस्ट बना देती हूँ, दिन में किसी समय जाकर।
0: ना ना ना ना मैडम, आज तो बिल्कुल नहीं, अब चाय भी अब रहने ही दो, बेकार नींद उतर जाएगी, जाने लगो तो बता देना, उठकर दरवाजा बंद कर लूंगा।
1: अरे अरे, ये भी कोई बात हुई? आराम करने के लिए दफ्तर में कम टाइम रहता है क्या, जो एक दिन की छुट्टी बर्बाद कर डाले। ओफो, कॉलेज जाने के लिए निकलने की नौबत ही नहीं आ पाती, लगता है आज मुझे भी छुट्टी ही लेनी पड़ जाएगी। आइए आइए अंकल, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, ठीक तो है?
2: ठीक हूँ बेटी, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, कॉलेज जाने की तैयारी है।
1: जी हाँ जी हाँ, आज देर हो गई है, अब बस निकल ही रही हूँ।
2: सौरभ दफ्तर चले गए क्या?
1: जी नहीं, वो तो अभी सो रहे हैं।
2: अरे अभी तक सो रहे हैं, क्या बात है, तबीयत खराब है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, बस यूं ही आज छुट्टी ली है।
2: जब वो सो रहे हैं तो जरा अखबार उठा दो, पढ़कर भिजवा दूंगा।
1: जी जी जरूर जरूर, ये लीजिए।
2: पड़ोसी हो तो ऐसा, सारा मोहल्ला तारीफ करता है। अच्छा चलता हूँ, तुम अपना काम करो।
1: इन्हें हमेशा उसी समय आना रहता है जब मुझे देर हो रही हो। सौरभ सौरभ, मैं जा रही हूँ, खाना बनाकर रखा है, गरम करके खा लेना। अरे ओफो, उठकर दरवाजा तो बंद कर लो।
0: हो, कितनी चैन की नींद सो रहा था, तुमने नहा जगा दिया।
1: अरे अब दिन भर चैन की नींद सोना और करना ही क्या है।
0: अच्छा टाटा, अब उठ ही गया हूँ तो एक प्याला चाय भी हो ही जाए, इसके बाद स्नान और भोजन। सौरभ भैया, ओ सौरभ भैया।
3: हाँ जानी, किस मनहूस का मुंह देखकर उठा था।
4: अरे आप हैं सेठी साहब, सुबह सुबह कैसे कष्ट किया?
5: तुम्हारा ही काम था भैया, इसमें भला कैसा कष्ट। तीन चार दिन पहले तुम्हारा बिजली का बिल हमारे लेटर बॉक्स में पड़ा मिला था, उस समय तुम घर पर मिले ही नहीं, इसलिए मैंने उसे संभाल कर मेज की दराज में रख दिया और भूल गया। आज अचानक नजर पड़ी तो सोचा फौरन तुम्हें पकड़ा दूं, आज आखिरी दिन है, पेमेंट आज न किया तो रिबेट नहीं मिल पाएगा।
4: ओह, तब तो जल्दी जाकर रुपया जमा करना होगा, आज तो बहुत भीड़ होगी भाई।
5: सौरभ भाई, हमारा बिजली का बिल पता नहीं क्यों अब तक नहीं आया। ए भैया, तुम तो बिजली घर तक जा ही रहे हो, जरा मेरा भी डुप्लीकेट बिल बनवा कर जमा करते आना। भैये लो पिछले बिल की रसीद, जितना लगेगा अभी शाम को ले लेना, तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी?
4: अरे नहीं नहीं सेठी साहब, मुझे तो वहां तक जाना ही है, दिक्कत का है?
5: खूब मस्त रहो भैया, और इसी तरह पड़ोसियों की सेवा करते रहो, बड़ा सवाब मिलता है सेवा करने से।
4: क्यों नहीं क्यों नहीं।
5: अच्छा अब चलता हूं।
4: अच्छा जरूर। ये सेठी भी कम नहीं है, जिस दिन बिल मिल गया था उसी दिन अगर मुझे पकड़ा देता तो कम से कम इस भागदौड़ से तो बच जाता, मैं अपने बिल का भुगतान दफ्तर से किसी दिन जाकर कराया होता, लेकिन इतने दिन तक जानबूझकर लिए बैठा रहा ताकि इसका भी बिल आ जाए तो दोनों एक साथ मुझे पकड़ाकर छुट्टी पा जाए। अब 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे इस काम में, घंटा भर तो डुप्लीकेट बिल बनवाने में ही लग जाएगा, सारा दिन बर्बाद करके रख दिया, अब क्या नहाना और क्या कपड़े धोना, सुबह से अखबार तक पढ़ने की नौबत नहीं आई। चलो जरा हेडलाइन पर तो नजर डाली ली, अरे यहां तो अखबार ही गायब है, पता नहीं कहां उठा कर रख दिया है, इस घर में तो कभी कोई चीज अपनी जगह पर मिलती ही नहीं। ओफो, अब कौन आ मरा। अच्छा आइए आइए आइए अंकल बैठिए।
2: अरे बेटा अभी बैठूंगा नहीं, जरा बाजार जाना है, ये अपना अखबार रख लो, दूसरे से कोई चीज लेता हूँ जब तक वापस नहीं कर देता तब तक चैन नहीं।
4: हाँ, वो तो है वो तो है।
2: तो फिर आना किसी दिन, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ

0: शतरंज की बाजी नहीं।
1: अच्छा अच्छा, जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा।
0: अच्छा अब चलता हूँ भैया।
2: भैया जी एक मिनट, भाभी जी कह गई थी कि आपको कपड़े प्रेस करवाने हैं, निकाल दीजिए तो कर दे।
1: नहीं नहीं आज नहीं श्यामलाल, इतवार को कर देना, अभी कपड़े सूखे नहीं है।
2: जी अच्छा, वही शाम को 4-5 बजे तक आ जाना।
1: हाँ हाँ हाँ ठीक है आ जाना। अब पहले जाकर बिजली का बिल जमा करो वरना देर हो जाएगी। बाप रे, इतनी भाग दौड़ न की होती तो आज रिबेट से हाथ धोना ही पड़ता। पता नहीं सारे शहर के लोग बिल चुकाने के लिए आखिरी दिन का ही इंतजार क्यों करते रहते हैं, और इस कमबख्त सेठी का बिल बनवाने के चक्कर में तो और भी देर हो गई। हमेशा की तरह पहले बाबू सीट पर नहीं मिला, फिर उसके बाद साहब साइट पर चले गए, और जब वो लौटे तो कहीं कई चक्कर काटने के बाद बिल बन पाया, और वो भी 7,000 रुपये का। अब भला मैं ही कहां से देता। ये बिल मैं सेठी के हवाले कर दूंगा, फिर वो जाने और बिजली विभाग जाने। अब जल्दी से चलकर नहा लिया जाए, बाहर बड़े जोर की भूख लगी हुई है। ठंडे ठंडे पानी से, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, गाना आए ना आए, गाना चाहिए। अरे अरे अरे, आज तो लोगों ने नहाना खाना भी दूभर कर दिया है। अरे आ रहे हैं भाई आ रहे हैं, अरे कपड़े पहनने का तो टाइम दो कि ऐसा ही चलाऊं। अरे नवीन, तू ये इस वक्त यहाँ कैसे, क्या तूने भी छुट्टी ले रखी है?
3: जी नहीं, मैं ऐसी मूर्खता नहीं करता। अब मैं तो दफ्तर से ही आ रहा हूँ। बॉस से कह दिया कि पिताजी अपने इलाज के लिए मेरे पास आ रहे हैं और उन्हें रिसीव करने स्टेशन जाना है, और बस पिताजी की सेवा में हाजिर हूँ।
1: यहाँ पधार कर बड़ी कृपा की, बस मैं कृतार्थ हुआ। अब ये और बता दीजिए कि पहले मैं भोजन कर लूँ तब आपके लिए चाय बनाऊँ, या पहले चाय बना दूँ तब भोजन करूँ?
3: अरे तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया क्या? खा लो खा लो भाई, हमें कोई जल्दी नहीं है। तुम तो जानते ही हो यार कि अपना लंच आवर तो 10 से 5 तक चलता है।
1: तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे।
3: जी हरगिज नहीं, हरगिज नहीं।
1: अच्छा थोड़ा सा रोटी दाल चलेगा?
3: अब ये ठंडी दाल रोटी तो खाओगे तुम, और हम तो तुम्हारे लाए हुए गरम गरम समोसे और इमरती से ही काम चला लेंगे भाई।
1: वाह वाह वाह वाह, इस सादगी के क्या कहने जनाब। हेलो, जी हाँ, सौरभ कुमार बोल रहा हूँ। किस स्कूल से? विद्यानिकेतन से। हाँ हाँ जी हाँ, गौरव मेरा ही बेटा है। क्या क्या हुआ बस को? अरे बच्चों को चोट तो नहीं आई? शुक्र है भगवान का, मैं तो घबरा ही गया था। कहाँ पर बस खराब हो गई? तब तो बहुत देर से लौट पाएंगे। अच्छा अच्छा, बच्चों को लाने के लिए दूसरी बस भेजकर आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है ठीक है, मैं स्कूल आकर गौरव को ले जाऊंगा। कब तक आएंगे बच्चे? अच्छी बात है, हाँ हाँ हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। लो एक नई मुसीबत आ गई।
4: क्या हो गया?
1: गौरव की स्कूल बस उसे घर तक पहुंचाने वाली थी, लेकिन वो रास्ते में ही बिगड़ गई। अब मुझे ही उसे लेने के लिए स्कूल भी जाना पड़ेगा।
4: अरे अच्छा ठीक है ठीक है, तो मेरी चाय ड्यू रही, अब चलता हूँ।
1: अरे रुको 5 मिनट यार, मैं भी चलता हूँ ना, तैयार हो जाऊँ फिर रास्ते में तुम्हें घर पर ड्रॉप करता हुआ निकल जाऊँगा।
4: नहीं नहीं सौरभ, मैं भी स्कूटर से ही आया हूँ ना।
1: अच्छा तो फिर ठीक है, कल दफ्तर में मिलते हैं। बाय।
4: ओके बाय।
5: हद हो गई, दरवाजा एकदम खुला पड़ा है। सुबह गई थी तो पड़े सो रहे थे, दिन भर बाद लौटी हूँ तो देख रही हूँ खाना थाली में परसा पड़ा है और जनाब अंदर आराम फरमा रहे हैं। न खाने पीने का होश है, न ये देखने की जरूरत है कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आखिर इन्हें आज हो क्या गया?
1: अरे तुम तो आज बड़ी जल्दी आ गई नीता, क्या वजह है?
5: अरे मेरी जल्दी आने का भ्रम आपको क्यों हो रहा है ये तो आप ही जाने, लेकिन घड़ी के हिसाब से शाम के 5 बज रहे हैं। अच्छा ये बताओ किसी की चिट्ठी तो नहीं आई?
1: पता नहीं यार, सारा दिन इतने मिलने वाले आते रहे कि लेटर बॉक्स खोलने का होश ही नहीं रहा। व्हाट ए वंडरफुल डे, वाह आनंद आ गया।

0: आज मेरी नहीं है क्या? ये दरवाजा खटखटा कर लौट गई।
1: भगवान जाने।
0: अरे तुम तो घर में ही थे ना, तुम्हें नहीं पता चला?
1: जी नहीं, आधे समय तो हम घर में आराम करते रहे, फिर आधा समय सैर सपाटे में निकल गया। ये देखो, इस समय भी कहीं जाने के लिए ही कपड़े बदले हुए हैं।
0: कहाँ जाने के लिए?
1: वही व्यथा कथा तो सुना रहा हूँ नीता जी। हुआ ये कि आपके कॉलेज के लिए प्रस्थान करते ही पहले अंकल अखबार लौटाने आ गए।
0: अच्छा?
1: फिर वो सेठी का बच्चा कई दिन से सहेज कर रखा हमारा बिजली का बिल रिबेट मिलने के आखिरी दिन पकड़ा गया, और ये भी फरमा गया कि उसका भी डुप्लीकेट बिल बनवा कर भुगतान करता हूँ।
0: अच्छा।
1: और उसके जाते ही श्यामलाल कपड़े प्रेस करने के लिए आदम का, अब उसे वापस किया तब तक मेरे स्नेह से खींचे नवीन मियां दफ्तर से गोल कोकर यहाँ चले आए चाय नाश्ता मांगने। बीच बीच में फोन की घंटी बजती रही और मैं सॉरी रॉन्ग नंबर का जाप करता बैठा रहा। अरे क्लाइमेक्स तो तब हुआ जब गौरव के स्कूल से फोन आया कि बच्चों को पिकनिक पर ले जा रही बस रास्ते में बिगड़ गई।
0: हे भगवान, गौरव को कहीं चोट तो नहीं आई?
1: जी नहीं, चोट तो बस को आई है, इसीलिए स्कूल वालों ने कहा है कि अब बच्चों के माता पिता खुद स्कूल आकर अपने बच्चों को ले जाएं। और इस शुभ कार्य के लिए निकल ही रहा था कि बस आप प्रकट हो गईं।
0: वाह वाह वाह, ऐसी नायाब छुट्टी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किसी शायर ने वो क्या खूब कहा
1: था? अरे खा कहा था, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए।

अभी आपने सुनी शांति मेहरोत्रा की लिखी झलकी आराम बड़ी चीज है। प्रस्तुति रूपम नारायण पांडे की थी। इसी के साथ आज इतवार है कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलरमरो मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा

0: और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
4: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I am sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@ai

0: AIR News हिंदी और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
2: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
2: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
4: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने ITC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
2: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए।

0: समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
1: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the

0: and drone attack. According to media reports, the Yemeni armed forces of the internationally recognized government carried out 97 operations against Houthi reinforcements on the Tur al-Balha and Taiz fronts. On to sports now. The curtain has come down on the Asian Games with a dazzling closing ceremony at Aichi Nagoya in Japan, bringing more than 2 weeks of action-packed competition across 43 disciplines to an end. The ceremony featured the traditional parade of athletes, the lowering of the Asian Games flag, and the formal handover of ceremonial torch and flag to Doha, the host city for the 2030 edition. Proudly carrying the Indian tricolour for the closing ceremony was India's women's flag bearer and shooting star Neeru Dhanda. The double gold medalist led the Indian contingent in a proud moment for the nation. India signed off from the games in fourth place in the overall medal standings behind China, Japan and South Korea. The Indian contingent returned with an impressive haul of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. It is India's second highest medal tally in Asian Games history, surpassed only by the record-breaking performance at Hangzhou in 2023. As the Asian Games draw to close today, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended compliments to every member of the Indian contingent for representing the nation with determination, passion and remarkable sporting spirit. In their messages, the Vice President and the Prime Minister congratulated all the medal winners and expressed hope that these games inspire even greater achievements in the years ahead and strengthen sports at the grassroots too. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over coastal and south interior Karnataka, Kerala, Mahi, Tamil Nadu and Puducherry for the next 2 to 3 days. The IMD said thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds may prevail over Andhra Pradesh, Telangana, Uttarakhand and Tripura tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony, India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीबुर रहमान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आदमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हल्के के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने अख्ताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी। ईरान ने कहा है कि अबनाई हुरमुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं कर देता। ईरान का इरादा है कि वो अपने मिसाइलों की किस्मों में इजाफा करेगा और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई एक तकरीब के दौरान अपने अख्ताम को पहुंचे। भारत 85 तमगों के साथ 4th मकाम पर रहा, उसने सोने के 21 तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर खारिजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि बैनुल अक्वामी अमनो सलामती, सप्लाई चेन की मजबूती और कनेक्टिविटी वो अहम शोबे हैं जिनमें उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतें अहम रोल अदा कर सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में 62वीं म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि दुनिया इसका एजेंडा

0: इस प्रोजेक्ट को देही मकानात को जदीद शक्ल दिए जाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके की जिमनी चुनाव की मुहिम आज खत्म हो गई। मंगल को इन 6 सीटों के लिए पोलिंग कराई जाएगी और वोटों की गिनती जुमा को की जाएगी। असेंबली हलकों की पोलिंग तमिलनाडु में मदुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी में थट्टन चाउड़ी और मगरबी बंगाल में रेजीनगर नीज नंदीग्राम में कराई जाएगी। आसाम में पोलिंग नावगांव लोकसभा हलके में कराई जाएगी। ये असेंबली सीटें मौजूदा कानून साज अरकान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की वजह से खाली हो गई थीं, जबकि नौगांव लोकसभा सीट कांग्रेस रहनुमा प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इसी दौरान बीजेपी ने दिनेश आर्या को उत्तराखंड में राज्यसभा के 2 साल में 1 बार होने वाले आइंदा इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी ने रुक्मिणी मलिक का नाम मगरबी बंगाल में राज्यसभा के जिमनी चुनाव के अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नीज मगरबी बंगाल में जिमनी पोलिंग इस महीने की 16 तारीख को कराई जाएगी। अदादोशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने आज कहा है कि भारत की इकतसादी मजबूती, जिसे कारपोरेट की जानिब से पुख्ता कारकर्दगी और मुस्तकिल सरमायाकारी की मदद हासिल है, अब मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी एजेंसियों के भारत की तरक्की से मुतालिक तखमीनों से ऊंचाई की तरफ बढ़ती हुई जाहिर हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य इकतसादी कॉन्क्लेव से अलग नामा निगारों से बात करते हुए जनाब गर्ग ने कहा कि भारतीय मईशत ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाई में 7.8% शरह तरक्की हासिल करने के बाद अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भदोही जिला अब संत रविदास नगर भदोही के तौर पर जाना जाएगा। भदोही में मुनक़दा आज एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि नए नाम से कुरून वस्ता के साधु संत और समाजी मुसलह संत रविदास की जिले से वाबस्तगी का इजहार होता है। इस मौके पर वजीर आला ने 1,340 करोड़ रुपये के 112 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। भारत और कनाडा कल से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकतदारी के अपने मुजव्वजा मुआहदे CEPA के बारे में 5वीं दौर की मुदाकरात शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तजारती मुआहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरातों की क्यादत में ये 5 रोज़ा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़िश्ता दौर की बातचीत नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी, जिसके तहत अफसरान ने कतई मुआहदे की जानिब तेज तर पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस साल मार्च में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हममनसब मार्क कार्नी ने तय किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान CEPA के मुजाकरात साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान तवानाई और अहम मैदानियात के शोबों में 2 तरफा तालमेल में गहराई लाने से इत्तफाक किया था। अशिया के शोबे में भारत कनाडा की 2 तरफा तजारत 2024-25 के दौरान 8.66 अरब अमरीकी डॉलर थी, जबकि इससे मुल्क के लिए भारत की बरामदात 4.22 अरब अमरीकी डॉलर थी। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुरमुज उस वक्त तक दोबारा नहीं खोली जाएगी जब तक अमरीका उन 7 शर्तों को पूरा नहीं कर देता जो जून के एक अबूरी मुआहदे में पेश की गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने आज पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने पर ईरान का मौकिफ पूरी तरह वाज़ह और मुसम्मम है। उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं हो जाएंगी। ये शर्तें इस्लामाबाद मुफाहमतनामे पर मबनी हैं। इसके अलावा ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रामीनिया ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ अपनी हालिया जंग के बाद अपने मिजाइलों की तादाद में इजाफा करेगा। एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तनाजे से ईरान की यह जरूरत उजागर हो गई है कि वो तवील दूरी की मिजाइल तैयार करे और मुल्क ने इस तरह के इकदाम शुरू कर दिए हैं। स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमिलिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। वह आला सतही वफ्त सीनियर सरकार

0: अफसरान और कारोबारी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम मोदी और सद परमलिन मुख्तलिफ मामला समेत दो तरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाहमी बातचीत करेंगे। जापान के आइची नागोए में मुनाकदा शानदार तकरीब के साथ एशियन गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए। इस दौरान 43 खेलों के लिए दो हफ्तों से ज्यादा जारी रहने वाले सनसनीखेज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इख्तितामी प्रोग्राम में रवायती तौर पर खिलाड़ियों की परेड, एशियन गेम्स के परचम को उतारने और 2030 के मेजबान शहर दोहा को बाजाब्ता तौर पर मेजबानी सौंपने की तकरीब शामिल थी। एशियन गेम्स की अलामत समझे जाने वाली मशाल और परचम कतर के नुमाइंदों के हवाले किए गए, जिसके साथ अगले एशियाई खेलों की मेजबानी की बाजाब्ता तौर पर मुंतकली अमल में आई। इख्तितामी तकरीब में भारतीय तिरंगा उठाने का एजाज शूटिंग की उभरती हुई भारतीय खातून खिलाड़ी नीरो धांडा को हासिल हुआ। सोने के दो तमगे जीतने वाली नीरो ने इस काबिले फख्र लम्हे में भारतीय दस्ते की कयादत की। भारत मजमूई तमगों की फहरिस्त में चीन, जापान और जनूबी कोरिया के बाद चौथे मकाम पर रहा। भारतीय दस्ता 85 तमगों के साथ वतन वापस लौटा, जिनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। ये एशियन गेम्स की तारीख में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तमगों की तादाद है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए, जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपये है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आदमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई तकरीब के दौरान अपने इख्तिताम को पहुंचे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम कहकशा। आज के कहकशा कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर के आए हैं चंद फिल्मी गजलें। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं पाकीज़ा फिल्म के गाने के साथ। पाकीज़ा फिल्म की ये गज़ल, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, रचना कैफे आज़मी की है और धुन है गुलाम मोहम्मद की।

अब आपको सुनवाते हैं तुम बिन फिल्म की गजल, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने। कलाम फैज़ अनवर का है और धुन है निखिल विनय की।

आज के कहकशा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्मी गज़लें। अब जो गज़ल आप सुनेंगे उससे हमने लिया है फिल्म अलग अलग से। कई कलाकार हैं किशोर कुमार, शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन है आर डी बर्मन की।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनाते हैं लैला मजनू फिल्म से ये गजल जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, रचना साहिर की है और संगीत है जयदेव का।

लैला मजनू फिल्म की गाई इस गजल के साथ ही आज का कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर बाद।

0: आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस सभा में प्रस्तुत है हिंडोल पेंटसे का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी नाउ ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय हिंडोल पेंटसे।
0: श्री हिंडोल पेंटसे का जन्म सांगीतिक परिवार में हुआ। उन्होंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा घर के संगीतमय वातावरण में अपने पिता एवं गुरु श्री सदानंद पेंटसे से प्राप्त की। आपके गायन की विशेषता राग की सिलसिलेवार सौंदर्यपूर्ण एवं लय के साथ खूबसूरत बढ़त है। इसके अलावा आप सुगम गायन जैसे भावगीत भक्ति गीत नाट्य गीत में भी निपुण है। आपने अनेक फिल्मों धारावाहिकों एवं महानाट्यों में गायन और पार्श्व संगीत का सृजन किया है। आपने देश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपना सफल गायन प्रस्तुत किया है। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री हिंडोल पेंट से अपने कार्यक्रम का आरंभ राग बिहाग से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है कवन ढंग तोरा। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल है बाजे रे मोरी पायल। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अजिंक्य गलांडे तथा हारमोनियम पर नारायण दरेकर। लीजिए सुनते हैं राग बिहाग। कलाकार है हिंडोल पेंटसे।
1: हिंडोल पेंटसे बोर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस ही हैड हिज म्यूजिकल ट्रेनिंग इन रिच म्यूजिकल एनवायरमेंट एट होम फ्रॉम हिज फादर एंड गुरु श्री सदानंद पेंटसे। हिज सिंगिंग इज कैरेक्टराइज बाय द डीप कमिटमेंट टू रागदारी विद अ पर्टिकुलर एम्फसिस ऑन हिज ट्रेडिशनल फॉर्म एंड एस्थेटिक ब्यूटी। ही हैज परफॉर्म्ड एट नंबर ऑफ प्रेस्टिजियस म्यूजिकल एंड कल्चरल इवेंट्स। He is also known for background music for films, serials and Mahanatya. Hindol Pense begins his vocal recital with Raag Bihag. Vilambit Khayal, Kavana Dhanga Tora is set to Ektaal and Drut Khayal, Bajere Mori Payal is set to Teentaal. Accompanied him on tabla is Ajinkya Galande and on harmonium

0: अभी आप राग बिहाग सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन श्री हिंडोल पेंट से राग मधु कौन से कर रहे हैं। मध्य लय ख्याल झपताल में निबद्ध है, बोल है देहो दरस मोहराम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है आजा रे आजा पथिकवा।
1: That was राग बिहाग। हिंडोल पेंट से कंक्लूड हिज वोकल रिसाइटल विथ राग मधुकॉन्स। मध्यलय ख्याल देहो दरस मोहराम इज सेट टू झपताल फॉलोड बाय द्रुत ख्याल आ जा रे पथिकवा इन तीन ताल।

0: ये था राग मधुकोंस। इसी के साथ ही आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम समाप्त होता है, जिसमें आपने श्री हिंडोल पेंडसे का शास्त्रीय गायन सुना। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री अजिंक्य गलांडे और हारमोनियम पर श्री नारायण दरेकर। आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Rag Madhukons. With this, tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha comes to an end. You have been listening to the classical vocal recital by Sri Hindol Pendse. He was accompanied on tabla by Ajinkya Galande and on harmonium by Narayan Darekar. This program was recorded in the studio of Akashwani Nagpur and broadcast came to you from Akashwani Delhi.
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3 लाख

0: घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मिथ मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मिथ तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said, it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China, and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology, comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was present on the occasion. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to polls are Madurandagam and Tharapuram in Tamil Nadu, Tattanjavadi in Puducherry and Rijinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut Bordoloi. Indian Ambassador to UAE Deepak Mittal has said prayers continue to flow in for good health of Captain Smith Mashar in